0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। संसद का मानसून अधिवेशन आज से शुरू हो रहा है। ये 13 अगस्त तक चलेगा। 25 दिन के अधिवेशन में सदन की 19 बैठक होंगी। इस दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयक चर्चा और पारित करने के लिए सूचीबद्ध हैं। इससे पहले सरकार ने कल संसद भवन में सर्वदलीय बैठक बुलाई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बैठक की अध्यक्षता की। 40 राजनीतिक दलों के 50 से अधिक नेता बैठक में शामिल हुए। बैठक के पश्चात संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने सभी राजनीतिक दलों से महत्वपूर्ण मुद्दों पर सकारात्मक चर्चा करने का आग्रह किया।
1: कोई पार्टी या कोई मेंबर अपना जो भी बात रखना चाहता है पार्लियामेंट में पूरा रख सकते हैं। मैं विपक्ष के साथियों को कहना चाहता हूं कि पहले में भी पार्लियामेंट को चलाने में दिक्कत आई थी क्योंकि हंगामा बहुत ज्यादा हुआ था। लोग चाहते हैं कि पार्लियामेंट सुचारू रूप से चले, इसलिए मैं फिर से सब पार्टी के नेताओं को मैं अनुरोध करता हूं कि पार्लियामेंट अच्छी तरह से चले, इसमें सब लोग योगदान करें।
0: लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कल कार्य मंत्रणा समिति की बैठक बुलाई। इस दौरान सरकार और विभिन्न राजनीतिक दलों के सदस्यों ने सत्र में उठाए जाने वाले विधायी और अन्य मुद्दों पर चर्चा की। सदस्यों ने जनहित और राष्ट्रीय महत्व के कई मुद्दों पर चर्चा का सुझाव दिया। श्री बिरला ने रचनात्मक चर्चा, सार्थक सहयोग और संसदीय परंपराओं के उच्च मानदंडों का पालन करने के महत्व पर बल दिया। उन्होंने सभी दलों से अपील की कि वे कार्यवाही को सुचारू और व्यवस्थित ढंग से चलाने में पूरा सहयोग दें। दिल्ली पुलिस ने स्पष्ट किया है कि आज से शुरू हो रहे संसद अधिवेशन के मद्देनजर नई दिल्ली जिले में किसी भी विरोध मार्च या जुलूस के लिए किसी ने कोई अनुमति नहीं मांगी है और ना ही दी गई है। पुलिस ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि क्षेत्र में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 लागू है, इसीलिए जंतर मंतर को छोड़कर क्षेत्र में विरोध मार्च, जुलूस, प्रदर्शन और 5 या अधिक व्यक्तियों के जमावड़े पर सख्त प्रतिबंध है। मध्य प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र आज से शुरू हो रहा है। इस सत्र में समान नागरिक संहिता UCC विधेयक पेश किया जाएगा। मंत्रिमंडल ने कल इस विधेयक के मसौदे को सर्वसम्मति से मंजूरी दी। भोपाल में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में ये फैसला किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि समान नागरिक संहिता से राज्य में सभी को समान दर्जा मिलेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 3 देशों मोल्दोवा, उत्तरी मैसेडोनिया और रोमानिया की यात्रा पर हैं। इस यात्रा का उद्देश्य व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी, नवाचार, शिक्षा तथा जनसंपर्क क्षेत्र में सहयोग बढ़ाना है। इन 3 देशों की यात्रा द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ावा देने की दृष्टि से महत्वपूर्ण मानी जा रही है। रोमानिया और मोल्दोवा में भारत के राजदूत डॉक्टर मनोज कुमार महापात्रा ने राष्ट्रपति की यात्रा को ऐतिहासिक बताया। उन्होंने कहा कि भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते के संपन्न होने से आने वाले वर्षों में इन देशों के साथ द्विपक्षीय आर्थिक साझेदारी और मजबूत होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 58वें अंतर्राष्ट्रीय रसायन विज्ञान ओलंपियाड में 4 स्वर्ण पदक जीतने पर भारतीय टीम को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि ये प्रतिष्ठित वैश्विक प्रतियोगिता में भारत का अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। श्री मोदी ने लिथुआनिया में 37वें अंतर्राष्ट्रीय जीव विज्ञान ओलंपियाड में स्वर्ण सहित सभी 4 पदक जीतने पर भारतीय टीम के सभी सदस्यों को भी बधाई दी। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये उपलब्धि अनगिनत युवाओं को विज्ञान का अध्ययन करने और उसमें उत्कृष्टता प्रदान करने के लिए प्राप्त करने के लिए प्रेरित करेगी। स्पेन ने अतिरिक्त में मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना

आर डी बर्मन के संगीत से सजा ये गीत आप सुन रहे थे फिल्म आपकी कसम से, आवाज़ लता मंगेशकर किशोर कुमार की। और इसी के साथ शुरू हो जाता है सुबह का ये खूबसूरत कार्यक्रम जिसे आप सुनते हैं हर रोज इसी जगह इसी चैनल पर 100.1 FM गोल्ड पर। आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है। आज आप सुन रहे हैं आपकी रेडियो दोस्त शर्मिष्ठा को और लेकर हाजिर हो चुकी है आपका अपना पसंदीदा कार्यक्रम, जी हाँ, जिसका नाम है सुहानी सुबह। और इस कार्यक्रम को सुनने के लिए आपने 100.1 FM गोल्ड चैनल तो ट्यून कर ही

लिया है। इसी के साथ न्यूज़ ऑन एयर ऐप पर भी हमारी ये प्रसारण इस वक्त आप सुन पा रहे हैं। तो चलिए मैं और आप मिलकर शुरुआत करते हैं इस कार्यक्रम की। वैसे तो शिव का नाम लेकर इस कार्यक्रम की शुरुआत हो ही चुकी है और भी बहुत से सुमधुर गीत संगीत रहेंगे आप सभी के लिए इस कार्यक्रम में। लेकिन साथ ही साथ सिर्फ और सिर्फ गीत संगीत ही नहीं है ना, क्योंकि सुबह का कार्यक्रम है तो बहुत सारी जानकारी युक्त बातें भी होंगी इसी कार्यक्रम में। इसीलिए आपको जुड़े रहना है इस कार्यक्रम के साथ। समय रहेगा 7 से 8 बजे तक का। सुन रहे हैं कार्यक्रम सुहानी सुबह, जिसमें होती रहेंगी बहुत सी बातें। जी हाँ, आज के खास दिन को लेकर भी बात होगी इसी कार्यक्रम में। इसके अलावा स्पेशल वाले पार्टी को लेकर भी बात करूंगी यहीं पर, इसी जगह पर, इस कार्यक्रम के अंतर्गत। इसके अलावा इतिहास के पन्नों को भी थोड़ा सा उल्टा जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इस कार्यक्रम में और इस वक्त सुनवाऊं आपको एक बहुत ही प्यारा सा गीत। जी हाँ, भीनी भीनी सुबह है तो सुबह भीनी भीनी खूबसूरत सुबह की शुरुआत एक अच्छे से कार्यक्रम के साथ। तो चलिए अच्छे से कार्यक्रम में एक और प्यार भरा गीत आप सभी सुनने वालों के लिए, जिसमें आवाज़ है आशा भोंसले की।

7:15 है इस चुड़ी घड़ी का समय और फिर एक बार शर्मिष्ठा करती है बहुत बहुत स्वागत आप सभी श्रोताओं का जो आज मेरे साथ जुड़े हैं इस कार्यक्रम के साथ जुड़े हैं और सुन रहे हैं कार्यक्रम सुहानी सुबह को। और चलिए कार्यक्रम के अंतर्गत अब आपको बताऊं कि आज के मौसम का हाल आखिर क्या रहेगा और मौसम विभाग की ओर से आखिर क्या कहा जा रहा है आज के मौसम के मिजाज को लेकर। तो कहा यह जा रहा है कि आमतौर पर आसमान में बादल छाए रहेंगे, हल्की से मध्यम बारिश या फिर गरज के साथ बौछारें पड़ने की भी संभावना दी जा रही है। तो दूसरी ओर अगले 24 घंटों के लिए अधिकतम और न्यूनतम तापमान आखिर कितना रहेगा इसके बारे में भी तो बताना जरूरी है ना। तो चलिए अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है और इसके अलावा न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना जताई जा रही है। पिछले 24 घंटों में अधिकतम तापमान रिकॉर्ड किया गया था 29.2 डिग्री सेल्सियस यानी कि सामान्य से 3.6 डिग्री कम। इसके अलावा न्यूनतम तापमान रिकॉर्ड किया गया था 27.6 डिग्री सेल्सियस यानी कि सामान्य से 1.1 डिग्री अधिक। अधिकतम आर्द्रता की अगर बात करें तो 95% रिकॉर्ड किया गया था। इसके अलावा न्यूनतम आर्द्रता रिकॉर्ड किया गया था 89%। पिछले 24 घंटों में बरसात बिल्कुल भी नहीं हुई और एक अच्छी बात मछुआरे भाइयों के लिए ये है कि आज के दिन के लिए या फिर आने वाले समय के लिए अब तक कोई भी सतर्क वार्ता जारी नहीं की गई है। तो ये तो थी मौसम विभाग की ओर से दी गई जानकारी आज के मौसम के मिजाज को लेकर। और जहां तक मौसम विभाग की बात है, कहा तो ये जा रहा है कि आसमान में बादल छाए रहेंगे और कभी कभार हल्की फुल्की बारिश होने की संभावना है। और भाई बरसात का मौसम है और कभी कभार बरसात का होना तो काफ़ी लाजमी सी बात है।

है ना, और बरसात के समय भला बरसात ना हो ऐसा हो सकता है क्या, है ना। और बिन बादल अगर बरसात हो जाए तो ये अलग बात है, लेकिन बरसात के समय बादलों के साथ बरसात होने का जो आनंद है, जो खुशी है, उसका जो लेवल है वो अलग ही है। तो चलिए, मौसम खूबसूरत है और खूबसूरत मौसम में एक मज़ेदार सा गीत न सुने न सुनवाएं तो कैसे हो सकता है, है ना। तो चलिए, सुहानी सुबह कार्यक्रम में अगला गीत लता मंगेशकर की आवाज़ में, बहुत ही प्यारा सा गीत आप सभी सुनने वालों के लिए।

मौसम भले ही आशिकाना हो लेकिन समय जो है वो भोर का है, सुबह का है, और इस समय मिजाज जो है वो थोड़ी सी नींद भरी होती है, और नींद भरे मौसम में, नींद भरे मिजाज में आशिकाना मूड आए ना आए लेकिन नींद बड़ी ज़बरदस्त आती है, ये तो बात आपको माननी ही होगी, है ना। और इस बात से आप भी वाकिफ होंगे कि भाई ठंड मौसम है, बिल्कुल अच्छा सा वातावरण है, और ऐसे में भाई मौसम भले ही आशिकाना हो लेकिन प्यार जताने का मौका आपको मिले ना मिले लेकिन अच्छी सी नींद लेने का मौका ज़रूर ये खूबसूरत मौसम आपको देता है। हाँ, लेकिन इसी के साथ ये भी कहा जा सकता है कि भाई भोर हो चुकी है और ऐसे में अगर आप थोड़ा सा जल्दी उठते हैं और ऐसे में आप थोड़ा सा टहल कर बाहर आ जाते हैं, ताज़ी हवा अगर आप लेकर आ जाते हैं, तो इससे लाभ आखिर आपका और हमारा ही होता है ना। भले ही नींद जो है हम सबको बहुत ज़्यादा प्यारी होती है, खासकर भोर के समय में नींद जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छी आती है, लेकिन इसके बावजूद थोड़ा सा उठने की कोशिश अगर हम करें भोर के समय, जल्दी जल्दी उठ जाएं और फ्रेश होकर बाहर की ताज़ी हवा अगर हम लेकर आते हैं, तो इससे फ़ायदा जो है वो हम ही को मिलता है। खैर, अच्छा सा मौसम है, नींद भी इस मौसम में बड़ी अच्छी आती है, और साथ ही साथ सेहत का भी ध्यान रखना होता है, तो हर चीज़ का ध्यान रखते हुए चलिए आप तो ध्यान रखेंगे ही, लेकिन साथ ही साथ कार्यक्रम चल रहा है सुहानी सुबह, और इस कार्यक्रम में अब मैं बात करूंगी एक बड़े ही खूबसूरत सी चीज़ के बारे में जिसको लेकर आज पूरी दुनिया बात कर रही है। जी हाँ, और एक ऐसी चीज़ है जिसके बारे में हमने बचपन से इतनी सारी कहानियाँ, इतनी सारी बातें, बल्कि लोरियाँ तक सुन सुनकर हम बड़े हुए हैं, और बॉलीवुड की दुनिया में मैं क्या ही कहूँ, बॉलीवुड की दुनिया में, खासकर संगीत की दुनिया में इस चीज़ का बड़ा ही इम्पोर्टेंस रहा है, और इस चीज़ को लेकर न जाने कितने ही गीत बन चुके हैं। एक ऐसी चीज़ जिसकी खूबसूरती की बातें लोग करते रहते हैं, और ख़ासकर प्यार को लेकर अगर बात हो रही हो तो इस चीज़ की मिसाल दी जाती है, इसकी खूबसूरती की बात की जा रही है, और बात कर रही हूँ एक ऐसी चीज़ के बारे में जिसको छूना एक समय असंभव सा कहा जाता था, लेकिन इसी मानव जाति ने इस असंभव सी चीज़ को संभव करके दिखाया है। जी हाँ, बात कर रही हूँ चंद्रमा के बारे में, मून के बारे में, चंदा के बारे में, जिसे छूना एक समय इंसान के लिए काफ़ी इम्पॉसिबल सा था, नामुमकिन सा था, लेकिन इस असंभव सी बात को संभव करके हमने दिखा दिया है। तो इंटरनेशनल मून डे के तौर पर आज के दिन को मनाया जाता है, यानी कि चांद, चंद्रमा, चंदा के नाम आज के दिन को डेडिकेट किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय चंद्रमा या फिर चांद दिवस हर साल आज के दिन मनाया जाता है। ये दिन मानव इतिहास की सबसे बड़ी वैज्ञानिक उपलब्धियों में से एक अपोलो 11 मिशन की याद दिलाता है। 20 जुलाई 1969 को ही अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री नील आर्मस्ट्रांग और बज एल्ड्रिन ने पहली बार चंद्रमा की सतह पर कदम रखा था। ये घटना विज्ञान, तकनीकी और मानव साहस की ऐतिहासिक विजय का प्रतीक मानी जाती है। इसके अलावा ये जो खास दिन है, आज का जो खास दिन है, खासकर युवाओं और विद्यार्थियों में स्टेम अर्थात विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग के साथ गणित के प्रति रुचि जागृत करने का भी एक महत्वपूर्ण माध्यम है। साथ ही ये अंतरिक्ष अन्वेषण के क्षेत्र में भविष्य की संभावनाओं और मानवता के साझा प्रयासों को रेखांकित भी तो करता है। तो चलिए एक खूबसूरत सी

चीज के नाम आज का दिन डेडिकेटेड है, खासकर अनगिनत गीत बन चुके हैं इस चीज को लेकर, और प्यार की मिसाल भी तो दी जाती है इसी चीज को ध्यान में रखते हुए। तो चलिए, जब बात होती है चांद की, चंद्रमा की, चंदा की, जिसकी हजारों कहानियां हमने बचपन में सुनी थी और आज भी अनगिनत मिसालें दी जाती है चांद को लेकर, चंद्रमा को लेकर, चंदा को लेकर, तो एक प्यार भरा गीत हो जाए उसी चीज को लेकर, उसी खूबसूरती को लेकर जिसकी मिसालें हम देते फिरते हैं।

सात बज गए 37 मिनट है। स्टूडियो घड़ी का समय संघ आप शर्मिष्ठा के सुन रहे हैं कार्यक्रम सुहानी सुबह, और इस कार्यक्रम को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। और इस वक्त

लिए मैं और आप मिलकर इतिहास के पन्नों को थोड़ा सा उलटते हैं और जानते हैं कि इतिहास के पन्नों में आखिर आज के दिन के लिए क्या दर्ज है, कौन सी ऐसी घटनाएं घटी थी आज ही के दिन जो कि दर्ज होकर रह गई इतिहास के पन्नों में, और फिर एक बार आज ही के दिन उन्हीं पुराने ऐतिहासिक पन्नों को आज फिर से हम खोलने जा रहे हैं, उलटने जा रहे हैं। तो इतिहास के पन्नों को जैसे ही हम खोलते हैं तो पता ये चलता है कि इतिहास के पन्नों में हर तारीख का अपना एक अलग ही महत्व है। इसी कड़ी में 20 जुलाई की तारीख भी इतिहास की कई घटनाओं को समेटे हुए है। 20 जुलाई के दिन नील आर्मस्ट्रांग के रूप में किसी इंसान ने पहली बार चंद्रमा की सतह पर कदम रखा था। जी हाँ, एक ऐसी चीज़ जिसे छूना, जिस छूना तो काफ़ी दूर की बात थी, तो वहाँ पर पहुँचने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता था, लेकिन इंसान रूपी एक व्यक्ति ने उस असंभव से काम को करके दिखाया। दरअसल ये वही तारीख थी जब नील आर्मस्ट्रांग के रूप में किसी इंसान ने पहली बार चंद्रमा की सतह पर कदम रखा था। 16 जुलाई को अमेरिका के फ्लोरिडा प्रांत में स्थित जॉन एफ कैनेडी अंतरिक्ष केंद्र से उड़ा नासा का अंतरिक्ष यान अपोलो 11 चार दिन का सफर पूरा करके 20 जुलाई 1969 को इंसान को धरती के प्राकृतिक उपग्रह चांद पर लेकर पहुंचा। ये यान 21 घंटे 31 मिनट तक चंद्रमा की सतह पर रहा। तो ये असंभव सी बात आखिर संभव करके दिखाई इंसान के तौर पर हमने, और असंभव सी जो चीज़ थी, असंभव सी जो बात थी जिसे छूना तो दूर की बात, उस पर कदम रखने के बारे में भी कोई सोच नहीं सकता था, लेकिन यही असंभव सी बात आखिर संभव होकर आज इतिहास बनी। और फिर एक बार उस इतिहास को हम के बारे में हम बात कर रहे हैं। इसके अलावा और भी बहुत सी घटनाएं हैं जो कि घटी थी आज ही के दिन, बात करूंगी उन ऐतिहासिक घटनाओं के बारे में भी, लेकिन फिलहाल एक फिल्मी गीत की ओर रुख करें और उस गीत को सुनते सुनते फिर एक बार रुख करेंगे इतिहास के पन्नों की ओर, उलटेंगे उन्हीं पन्नों को जिनमें दर्ज है आज के दिन के कुछ

हाँ, तो मैं बात कर रही थी कुछ ऐसी ऐतिहासिक घटनाओं के बारे में जो कि घटी थी आज के दिन। और फिर से वही दिन आ चुका है जिस दिन हम उन्हीं पुरानी घटनाओं को लेकर बात कर रहे हैं। तो चलिए सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और इस वक्त बात कर लेते हैं कि 1761 में आखिर क्या हुआ था। माधवराव 1761 में प्रथम बार पेशवा बने थे। इसके अलावा 1810 की अगर बात करें तो कोलंबिया ने 1810 में स्पेन से आज़ाद होने की घोषणा की थी। दिन था आज ही का। इसके अलावा 1919 की अगर बात करें तो माउंट एवरेस्ट को सबसे पहले जीतने वाले सर एडमंड हिलेरी का जन्म हुआ था आज ही के दिन। इसके अलावा 1951 में जॉर्डन की शाह अब्दुल्ला प्रथम हमले में उन्हें मारा गया था। इसके अलावा 1956 की अगर बात करें तो फ्रांस ने ट्यूनिशिया को स्वतंत्र देश घोषित किया था आज ही के दिन। नील आर्मस्ट्रांग के रूप में मानव ने चंद्रमा की सतह पर पहला कदम रखा था। 1969 था साल, दिन आज ही का। 1997 में तिस्ता नदी जल बंटवारे पर भारत बांग्लादेश में समझौता किया गया था। साल 2002 में उत्तर और दक्षिण कोरिया के बीच विमान सेवा की शुरुआत की गई थी। दिन था फिर एक बार आज ही का। प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय संगीतकार तथा तबला वादक श्यामता प्रसाद का जन्म हुआ था 1921 में। दिन आज ही का।

ये तो थी कुछ ऐतिहासिक घटनाएं जिनके बारे में मैं आप सभी श्रोताओं को बता रही थी। तो चलिए ऐतिहासिक घटनाओं के बाद बात करूंगी आज के खास जन्मदिन को लेकर, लेकिन उससे पहले रुक करते हैं एक फिल्मी गीत की ओर और उसके बाद बात करूंगी आज के खास जन्मदिन को लेकर और बताऊंगी आपको कि बॉलीवुड की दुनिया में आखिर किन्हें याद किया जाता है आज ही के दिन।

शुरू की घड़ी बता रही है कि 7:50 हो चला है समय, और इस वक्त संज्ञा आप शर्मिशा के सुन रहे हैं कार्यक्रम सुहानी सुबह। और इस कार्यक्रम में वैसे तो मैं बात करूंगी आज के खास जन्मदिन को लेकर, लेकिन इसके अलावा एक और नाम से भी आज के दिन को मनाया जाता है। जी हाँ, जान चंद्रमा से तो आज के दिन को पूरी दुनिया याद कर रही है। इसके अलावा एक और चीज़ है जिसके नाम आज के दिन को डेडिकेट किया गया है, जिसे नाम दिया गया वर्ल्ड चेस डे, विश्व शतरंज दिवस के तौर पर आज के दिन को मनाया जाता है। और ये दिन 1924 में पेरिस में अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ की स्थापना की याद दिलाता है। इसे 1966 से मनाया जा रहा है और 2019 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इसे आधिकारिक मान्यता दी थी। और इस दिन को मनाने के पीछे का उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ यही है कि इस दिन का मुख्य उद्देश्य शतरंज के खेल को बढ़ावा देना, विश्व स्तर पर लोगों को जोड़ना, रणनीतिक सोच को प्रोत्साहित करना। इसके अलावा ये जो दिमाग लगाने वाला जो खेल है ना, जी हाँ, इस खेल का जो मज़ा है, इस खेल का जो अंदाज है, इसे लोगों तक पहुंचाना, यही इस दिन को मनाने का एक खास उद्देश्य बनकर सामने आया। ये तो है शतरंज का खेल जिसको लेकर आज के दिन को मनाया जाता है। तो इसके अलावा बात कर रही थी आज की हैप्पी वाले बर्थडे को लेकर, यानी कि बात करूंगी आज के दिन बॉलीवुड की दुनिया में आखिर हम किन्हें याद करते हैं। एक ऐसे अभिनेता, एक ऐसे स्टार, एक ऐसे कलाकार की बात करने जा रही हूँ जिन्हें हम उनके अनगिनत फिल्मों के जरिए, अनगिनत गीतों के जरिए उन्हें हम आज के दिन याद करते हैं। अभिनेता का नाम राजेंद्र कुमार। राजेंद्र कुमार 60 के दशक के सबसे सफल एक्टर्स में से एक माने जाते हैं। अपने पूरे जीवन में 80 से ज़्यादा फिल्मों में काम करने वाले एक्टर ने पहली फिल्म दिलीप कुमार के साथ की थी, और राजेंद्र कुमार ने काफ़ी संघर्ष के बाद सफलता हासिल की थी। राजेंद्र कुमार की जयंती के तौर पर आज हम उन्हें याद करते हैं उनकी फिल्मों के ज़रिए, उनके फिल्मों के गीतों के ज़रिए। जी हाँ, अनगिनत गीत ऐसे हैं जिन्हें हम दिन में शायद कई बार सुनते हैं, कई बार ना सही तो एक बार ना एक बार तो हम अलग अलग कार्यक्रमों के माध्यम से राजेंद्र कुमार से जुड़े गीतों को सुन ही लेते हैं। तो इस तरीके से अनगिनत गीत, अनगिनत फिल्मों के बारे में बात होती है, और उन फिल्मों के ज़रिए, उन गीतों के ज़रिए महान कलाकार राजेंद्र कुमार को हम याद करते हैं। और ख़ासकर आज के दिन जब उनकी जयंती है तो उन्हें ख़ासकर उनकी बढ़िया टैलेंट की वजह से हम उन्हें याद करते हैं। तो चलिए इसी के साथ आज के इस कार्यक्रम को करेंगे समाप्त, लेकिन जाने से पहले राजेंद्र कुमार से जुड़ा एक बेहद ही प्यारा सा गीत आप सभी के लिए छोड़े जाना चाहूँगी, और इस गीत को सुनते सुनते शर्मिशा को दीजिएगा इजाज़त आज के इस कार्यक्रम को समाप्त करने की। फिलहाल के लिए जा रही हूँ, लेकिन अभी बहुत से कार्यक्रम ऐसे हैं जिन्हें साझा करूंगी आप सभी के साथ, और अलग अलग कार्यक्रमों के जरिए, अलग अलग विषयों के जरिए आज आपका मनोरंजन करती रहूंगी। अलग अलग कार्यक्रमों के जरिए आपसे बात होगी। अगला कार्यक्रम इसी चैनल पर दोबारा लेकर आऊंगी। समय रहेगा 11:10। दोबारा ट्यून करिएगा 100.1 FM गोल्ड, और इसके अलावा 9:10 पर फिर से आपसे बात होगी। इसके अलावा 10:02 पर भी फिर से आपके साथ जुड़ेगी आपकी रेडियो दोस्त शर्मिशा। तो तब तक के लिए ट्यून रहेगा 100.1 FM गोल्ड के साथ, और सुनते रहिएगा मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में ये बहुत ही प्यारा सा गीत।

क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। संसद का मॉनसून अधिवेशन आज से शुरू हो रहा है। सरकार ने सदन के सुचारू कामकाज के लिए सभी राजनीतिक दलों से सहयोग का आग्रह किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज चिसिनाओ में मोल्दोवा की राष्ट्रपति माइया संधू के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता करेंगी। मध्य प्रदेश मंत्रिमंडल ने समान नागरिक संहिता विधेयक को मंजूरी दी। जनजातीय समुदायों को इसके दायरे से बाहर रखा जाएगा। जम्मू कश्मीर के राजौरी और पुंछ जिलों में अचानक बाढ़ और भूस्खलन से 11 लोगों की मृत्यु, 8 लोग लापता। अमरीका ने 9वीं रात भी ईरान पर हमले किए। हॉर्मुज जलडमरू मध्य में तनाव गहराया और स्पेन ने फीफा विश्व कप जीता। खिताब का बचाव करने उत्तरी अर्जेंटीना को 1-0 से हराया। और अब समाचार विस्तार से। संसद का मॉनसून अधिवेशन आज से शुरू हो रहा है। ये 13 अगस्त तक चलेगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि 25 दिन के अधिवेशन में सदन की 19 बैठकें होंगी।
1: संसद के मानसून सत्र के दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा किया जाएगा। आज लोकसभा में सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीश संख्या संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा निर्धारित है, जबकि राज्यसभा में राष्ट्र गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा सूचीबद्ध है। इसके अलावा मानसून सत्र के दौरान जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक, आयकर संशोधन विधेयक और सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक पर भी चर्चा किए जाने की संभावना है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: इससे पहले सरकार ने कल संसद भवन में एक सर्वदलीय बैठक बुलाई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बैठक की अध्यक्षता की। 40 राजनीतिक दलों के 50 से अधिक नेता इस बैठक में शामिल हुए। बैठक के पश्चात संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने सभी राजनीतिक दलों से महत्वपूर्ण मुद्दों पर सकारात्मक चर्चा करने का आग्रह किया।
2: कोई पार्टी या कोई मेंबर अपना जो भी बात रखना चाहता है पार्लियामेंट में पूरा रख सकते हैं। मैं विपक्ष के साथियों को कहना चाहता हूं कि पहले में भी पार्लियामेंट को चलाने में दिक्कत आई थी, क्योंकि हंगामा बहुत ज्यादा हुआ था। लोग चाहते हैं कि पार्लियामेंट सुचारू रूप से चले, इसलिए मैं फिर से सब पार्टी के नेताओं को मैं अनुरोध करता हूं कि पार्लियामेंट अच्छी तरह से चले, इसमें सब लोग योगदान करें।
0: लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कल कार्य मंत्रणा समिति की बैठक बुलाई। इस दौरान सरकार और विभिन्न राजनीतिक दलों के सदस्यों ने सत्र में उठाए जाने वाले विधायी और अन्य मुद्दों पर चर्चा की। सदस्यों ने जनहित और राष्ट्रीय महत्व के कई मुद्दों पर चर्चा का सुझाव दिया। श्री बिरला ने सभी दलों से यह अपील की कि वे कार्यवाही को सुचारू और व्यवस्थित ढंग से चलाने में पूरा सहयोग करें। दिल्ली पुलिस ने स्पष्ट किया है कि आज से शुरू हो रहे संसद अधिवेशन के मद्देनजर नई दिल्ली जिले में किसी भी विरोध मार्च या जुलूस के लिए किसी ने कोई अनुमति नहीं मांगी है और न ही दी गई है। पुलिस ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि क्षेत्र में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 लागू है, इसलिए जंतर मंतर को छोड़कर क्षेत्र में विरोध मार्च, जुलूस, प्रदर्शन और 5 या अधिक व्यक्तियों के जमावड़े पर सख्त प्रतिबंध है। मध्य प्रदेश विधानसभा का मॉनसून अधिवेशन आज से शुरू हो रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस अधिवेशन में समान नागरिक संहिता यूसीसी विधेयक पेश किया जाएगा।
3: मध्य प्रदेश में समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी लागू करने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया गया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में कल भोपाल जिले के जगदीशपुर में कैबिनेट बैठक हुई। इस बैठक में यूसीसी विधेयक 2026 के प्रारूप को सर्वसम्मति से मंजूरी दे दी गई। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कैबिनेट बैठक के बाद प्रेस ब्रीफिंग में कहा,
4: विवाह एक ही लागू होगा, दूसरा विवाह निषेध माना जाएगा। जब तक कि कानून सम्मत रूप से विवाह विच्छेद नहीं हो, तब तक दूसरे विवाह की परमिशन उसको नहीं रहेगी। उत्तराधिकारी का चयन भी उसी प्रकार से रहेगा। इस कानून के बाद सबको समान रूप से उत्तराधिकारी एक कानून से चलने के लिए बाध्यता रहेगी, और एक उत्तराधिकारी में महिला पुरुष का भी अधिकार कम ज्यादा नहीं होगा, दोनों को समान होगा।
3: यूसीसी विधेयक के मुताबिक लिव इन में रहने वालों को 1 महीने के भीतर पंजीकरण करवाना अनिवार्य होगा, साथ ही गांव स्तर तक शादी का रजिस्ट्रेशन जरूरी किया जाएगा। हालांकि आदिवासी समाज को इससे बाहर रखा गया है। अभिनव गोयल, आकाशवाणी।

0: समाचार भोपाल।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
2: एक प्रकार से PM जय अब गरीबों की जय।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज चिशिनाव में मोल्दोवा की राष्ट्रपति माइया संडू के साथ शिष्टमंडल स्तर की वार्ता करेंगी। राष्ट्रपति मुर्मू मोल्दोवा संसद के अध्यक्ष इगोर ग्रोसू से भी मिलेंगी और मोल्दोवा भारत संसदीय मैत्री समूह के सदस्यों से बातचीत करेंगी। इसके बाद वे एक व्यापार फोरम को संबोधित करेंगी। मोल्दोवा यात्रा के दौरान राष्ट्रपति मुर्मू भारतवंशियों से भी मिलेंगी। किसी भी भारतीय राष्ट्रपति की यह मोल्दोवा की पहली यात्रा है। श्रीमती मुर्मू इन तीन देशों मोल्दोवा, नॉर्थ मैसिडोनिया और रोमानिया की यात्रा पर हैं। यात्रा के दूसरे चरण में राष्ट्रपति कल नॉर्थ मैसिडोनिया पहुंचेंगी। अमरीका ने लगातार नवी रात भी ईरान पर हमले किए। अमरीकी सेंट्रल कमांड ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि ये हमले ईरान की उन सैन्य क्षमताओं को कमजोर करने के लिए जारी रहेंगे जिनका इस्तेमाल होर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरने वाले वाणिज्यिक जहाजों और नाविकों पर हमले के लिए किया जाता है।
2: अमरीकी हमलों से पश्चिमी एशिया में तनाव और गहरा गया है। इससे पहले लगातार 8वीं रात हमलों के दौरान अमरीकी सेना ने ईरान के कई सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया था, जिनमें तटीय निगरानी और एयर डिफेंस सुविधाएं, समुद्री क्षमताओं और मिसाइल व ड्रोन स्टोरेज स्थल शामिल थे। अमरीकी सेना ने इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर के उन ठिकानों को भी निशाना बनाया जहां से 17 जुलाई को जॉर्डन में अमरीकी सैनिकों पर हमले किए गए थे। पश्चिमी एशिया में 50,000 से अधिक अमरीकी सैनिक तैनात हैं। पिछले हफ्ते अमरीका ने ईरान के दक्षिणी प्रांतों में सैन्य ठिकानों और बुनियादी ढांचे पर कई हमले किए हैं। अमरीका का कहना है कि इन हमलों का उद्देश्य ईरान की उस क्षमता को कमजोर करना था जिससे वे होर्मुज जलडमरू मध्य में वाणिज्यिक जलपोतों के लिए खतरा पैदा करता है। समाचार कक्ष से अमीशा।
1: जम्मू कश्मीर के राजौरी और पुंछ जिले में कल बाढ़ और चट्टाने खिसकने से 11 लोगों की मौत हो गई। 8 लोग लापता हैं। कई लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। गृहमंत्री अमित शाह ने स्थिति की समीक्षा की है और केंद्र की ओर से हर संभव सहायता का आश्वासन दिया है। हिमाचल प्रदेश में दक्षिण पश्चिमी मानसून एक बार फिर सक्रिय हो गया है। हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि राज्य के अधिकांश हिस्सों में चेतावनी जारी की गई है।
3: हिमाचल प्रदेश में मानसून की बारिश का दौर लगातार जारी है। बीते 24 घंटों के दौरान सबसे अधिक 82.2 मिलीमीटर वर्षा जिला कांगड़ा के धर्मशाला में दर्ज की गई। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने आज चंबा, कांगड़ा, मंडी और सिरमौर जिलों में भारी से अत्यधिक भारी वर्षा के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। वहीं ऊना, हमीरपुर, कुल्लू, शिमला और सोलन जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट तथा बिलासपुर, किन्नौर और लाहौल स्पीति जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। विभाग ने चेतावनी दी है कि इस दौरान भूस्खलन, अचानक बाढ़ आने और बादल फटने जैसी घटनाएं हो सकती हैं। आज सभी शिक्षण संस्थानों को बंद रखने के निर्देश जारी किए हैं। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला।
1: उत्तराखंड में रविवार सुबह से लगातार बारिश हो रही है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि बारिश से मैदानी और पहाड़ी दोनों इलाकों में जनजीवन पर असर पड़ा है।
4: भारतीय मौसम विभाग ने देहरादून, टिहरी, गढ़वाल और हरिद्वार जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। वहीं उत्तरकाशी, नैनीताल, चंपावत, पौड़ी और उधम सिंह नगर के लिए ऑरेंज अलर्ट और रुद्रप्रयाग, चमोली, अल्मोड़ा, बागेश्वर और पिथौरागढ़ में येलो अलर्ट जारी किया है। बारिश के अलर्ट के मद्देनजर आज ज्यादातर जिलों में सभी सरकारी और निजी विद्यालय तथा आंगनवाड़ी केंद्रों में अवकाश घोषित किया गया है। भारतीय मौसम विभाग के अलर्ट को देखते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी विभागों को सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं। साक्षी सिंह, आकाशवाणी न्यूज, देहरादून।
1: उत्तर प्रदेश के लगभग सभी जिलों में मध्यम से भारी बारिश हो रही है। हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि राज्य भर में जनजीवन अस्त व्यस्त है।
5: मुजफ्फरनगर जिले में भारी बारिश के कारण एक पुरानी इमारत गिरने से 4 बच्चों समेत 5 लोगों की मौत हो गई, 5 अन्य लोग घायल हो गए। भारी बारिश ने राज्य की राजधानी लखनऊ समेत कई जिलों में आम जनजीवन को

0: प्रभावित किया है। मौसम विभाग ने राज्य के कई जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है और कहा है कि मौजूदा मौसम की स्थिति अगले 3 दिनों तक बनी रहने की संभावना है। अगले 24 घंटों में तराई के इलाके और बुंदेलखंड के कुछ हिस्सों में भारी बारिश होने की उम्मीद है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: स्पेन ने फीफा विश्व कप जीत लिया है। न्यूयॉर्क न्यूजर्सी स्टेडियम में फाइनल में 90 मिनट तक संघर्षपूर्ण और रोमांचक मैच में कोई गोल नहीं हो पाया। स्पेन के फेरान टोरेस ने अतिरिक्त समय में गोल करके अपनी टीम को 1-0 से जीत दिला दी।
2: फीफा फुटबॉल विश्व कप का इतिहास लिखा जा चुका है। स्पेन ने दूसरी बार पुरुष फीफा विश्व कप अपने नाम कर लिया है। इससे पहले स्पेन ने 2010 में खिताब जीता था। इस जीत के साथ स्पेन एक ही समय में पुरुष और महिला फुटबॉल विश्व कप विजेता पहला देश बन गया है। इस हार ने अर्जेंटीना और लियोनेल मेसी के शानदार दौर का भी अंत कर दिया है। मेसी ने अपनी टीम को 2022 फीफा वर्ल्ड कप और 2021 तथा 2024 में कोपा अमेरिका का खिताब जिताया था। टोरेस फीफा विश्व कप फाइनल में गोल करने वाले 5वें ऐसे खिलाड़ी बने जो मैच के अंतिम समय में किसी अन्य खिलाड़ी के स्थान पर टीम में खेले। 48 टीमों के साथ ये अब तक का सबसे बड़ा फीफा विश्व कप था। ये टूर्नामेंट अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको में खेला गया। और अगर बात करें पुरुष क्रिकेट की तो इंग्लैंड ने लंदन के लॉर्ड्स में तीसरे और निर्णायक एक दिवसीय मैच में भारत को 27 रन से हराकर श्रृंखला 2-1 से जीत ली है। इंग्लैंड ने निर्धारित 50 ओवर में 3 विकेट पर 387 रन बनाए। भारतीय टीम 7 विकेट पर 360 रन ही बना सकी। इससे पहले भारतीय टीम ने साउथहैम्पटन के रोज बाउल में पहला मैच जीता था। दूसरा मैच कार्डिफ में मेजबान टीम ने जीता।
1: ये समाचार हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
3: धन्यवाद मुनीश। देश की राजधानी से प्रकाशित सभी हिंदी अखबारों के मुख्य पृष्ठ पर सबसे ऊपर आज से शुरू हो रहे संसद के मॉनसून सत्र और तेज बारिश के कारण जम्मू कश्मीर और लद्दाख में प्रभावित जनजीवन को पटरी पर लाने के लिए जारी बचाव और राहत अभियान की खबरें दिखाई देती हैं। जनसत्ता ने जम्मू कश्मीर के साथ उत्तराखंड और नागालैंड में भारी बारिश से मची तबाही का समाचार सचित्र प्रकाशित किया है। साथ ही आज से शुरू हो रहे मॉनसून सत्र से पहले आयोजित सर्वदलीय बैठक को शीर्ष समाचार बनाते हुए लिखा है, सर्वदलीय बैठक में राम मंदिर चढ़ावा चोरी, पेपर लीक और एथेनॉल जैसे मुद्दों पर चर्चा। जापान ओपन जीतने वाली पीवी सिंधु की तस्वीर भी कई अखबारों ने पहले पन्ने पर छापी है। दैनिक ट्रिब्यून ने खबर को शीर्षक दिया है, पीवी सिंधु ने जापान ओपन जीतकर रचा इतिहास। राजस्थान पत्रिका ने इस खबर को शीर्षक दिया है, पीवी सिंधु ने बैडमिंटन में खत्म किया खिताबी सूखा। लोकसत्ता ने भारत के पहले शब्द संग्रहालय का कोलकाता स्थित राष्ट्रीय पुस्तकालय परिसर में उद्घाटन करते केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह का चित्र प्रमुखता से छापा है। पत्र ने दिल्ली हाईकोर्ट की इस टिप्पणी को भी खबर बनाया है, सोनम वांगचुक को इलाज के लिए उठाना गलत नहीं। दैनिक भास्कर का शीर्ष समाचार है, वांगचुक को सरकारी अस्पताल ले जाना मनमानी नहीं हाईकोर्ट। हिंदुस्तान के ने निजी क्षेत्र के रॉकेट विक्रम 1 के सफल प्रक्षेपण को अपने संपादकीय लेख का विषय बनाया है। शीर्षक दिया है, वैज्ञानिकों को बधाई।
1: और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद का मॉनसून अधिवेशन आज से शुरू हो रहा है। सरकार ने सदन के सुचारू कामकाज के लिए सभी राजनीतिक दलों से सहयोग का आग्रह किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज चिसिनाओ में मोल्दोवा की राष्ट्रपति माया संडू के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता करेंगी। मध्य प्रदेश मंत्रिमंडल ने समान नागरिक संहिता विधेयक को मंजूरी दे दी है। जनजातीय समुदायों को इसके दायरे से बाहर रखा जाएगा। जम्मू कश्मीर के राजौरी और पुंछ जिलों में अचानक बाढ़ और भूस्खलन से 11 लोगों की मृत्यु, 8 लोग लापता। अमेरिका ने नवी रात भी ईरान पर हमले किए और स्पेन ने फीफा विश्व कप जीत लिया है। खिताब का बचाव करने उतरी अर्जेंटीना को 1-0 से हराया। और इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम शगुन चोपड़ा। द हेडलाइंस। Monsoon session of parliament begins today. Government's

0: 통상 통상 통상 줄일 딸래 터이터이 분나나지리.
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। संसद का मानसून अधिवेशन आज से शुरू हो रहा है। ये 13 अगस्त तक चलेगा। 25 दिन के अधिवेशन में सदन की 19 बैठकें होंगी। इससे पहले सरकार ने कल संसद भवन में एक सर्वदलीय बैठक बुलाई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बैठक की अध्यक्षता की। 40 राजनीतिक दलों के 50 से ज्यादा नेता इस बैठक में शामिल हुए। बैठक के बाद संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने सभी राजनीतिक दलों से महत्वपूर्ण मुद्दों पर सकारात्मक चर्चा का आग्रह किया।
2: कोई पार्टी या कोई मेंबर अपना जो भी बात रखना चाहता है पार्लियामेंट में पूरा रख सकते हैं। मैं विपक्ष के साथियों को कहना चाहता हूं कि पहले में भी पार्लियामेंट को चलाने में दिक्कत आई थी क्योंकि हंगामा बहुत ज्यादा हुआ।

0: लोग चाहते हैं कि पार्लियामेंट सुचारू रूप से चले, इसलिए मैं फिर से सब पार्टी के नेताओं को मैं अनुरोध करता हूं कि पार्लियामेंट अच्छी तरह से चले, इसमें सब लोग योगदान करें।
1: लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कल कार्य मंत्रणा समिति की बैठक बुलाई। इस दौरान सरकार और विभिन्न राजनीतिक दलों के सदस्यों ने सत्र में उठाए जाने वाले विधायी और अन्य मुद्दों पर भी चर्चा की। सदस्यों ने जनहित और राष्ट्रीय महत्व के कई मुद्दों पर चर्चा का सुझाव दिया। श्री बिरला ने सभी दलों से अपील की कि वे कार्यवाही को सुचारू और व्यवस्थित ढंग से चलाने में अपना सहयोग दें। दिल्ली पुलिस ने स्पष्ट किया है कि आज से शुरू हो रहे संसद अधिवेशन के मद्देनजर नई दिल्ली जिले में किसी भी विरोध मार्च या जुलूस के लिए किसी ने कोई अनुमति न तो मांगी है और न ही दी गई है। पुलिस ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि क्षेत्र में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 लागू है, इसलिए जंतर मंतर को छोड़कर क्षेत्र में विरोध मार्च, जुलूस, प्रदर्शन और 5 या ज्यादा व्यक्तियों के जमावड़े पर सख्त प्रतिबंध है। मध्य प्रदेश मंत्रिमंडल ने समान नागरिक संहिता यूसीसी विधेयक को अपनी मंजूरी दे दी है। कल भोपाल के निकट जगदीशपुर में हुई विशेष बैठक के बाद मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बताया कि समान नागरिक संहिता सभी समुदायों को समान अवसर और अधिकार उपलब्ध कराएगा। उन्होंने कहा कि यूसीसी विधेयक से किसी भी नागरिक के मौलिक अधिकार का उल्लंघन नहीं होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि विधेयक का मसौदा तैयार करने से पहले सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजना प्रसाद काश देसाई की अध्यक्षता में गठित की गई समिति ने राज्य के सभी जिलों और संभागों के साथ व्यापक परामर्श किया था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज चिशिनाव में मोल्दोवा की राष्ट्रपति माइया सैंडू के साथ शिष्टमंडल स्तर की वार्ता करेंगी। राष्ट्रपति मुर्मू मोल्दोवा संसद के अध्यक्ष इगोर ग्रोसू से भी मिलेंगी और मोल्दोवो भारत संसदीय मैत्री समूह के सदस्यों से बातचीत करेंगी। इसके बाद वे एक व्यापार फोरम को संबोधित करेंगी। मोल्दोवा यात्रा के दौरान राष्ट्रपति मुर्मू भारतवंशियों से भी मिलेंगी। किसी भी भारतीय राष्ट्रपति की ये मोल्दोवा की पहली यात्रा है। श्रीमती मुर्मू तीन देशों मोल्दोवा, नॉर्थ मैसेडोनिया और रोमानिया की यात्रा पर हैं। अमरीका ने लगातार 9वीं रात ईरान पर हमले किए। अमरीकी सेंट्रल कमांड ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि ये हमले ईरान की उन सैन्य क्षमताओं को कमजोर करने के लिए जारी रहेंगे जिनका इस्तेमाल होर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरने वाले वाणिज्यिक जहाजों और नाविकों पर हमले के लिए किया जाता रहा है। अमरीकी हमलों से पश्चिम एशिया में तनाव और गहरा गया है। इससे पहले लगातार 8वीं रात हमलों के दौरान अमरीकी सेना ने ईरान के कई सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया था। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में आयकर रिटर्न भरना, जागरूकता, सुविधा और समय से अनुपालन विषय पर एक परिचर्चा प्रकाशित करेगा। सनदी लेखाकार और कर विशेषज्ञ शरद कोहली तथा बैंकिंग विशेषज्ञ अश्विनी राणा इस परिचर्चा में भाग लेंगे। श्रोता स्टूडियो में उपस्थित विशेषज्ञों से इस विषय से संबंधित सवाल पूछ सकते हैं। सवाल पूछने के लिए टेलीफोन नंबर हैं 0112331048 और 0112371717। स्पेन ने फीफा विश्व कप जीत लिया है। न्यूयॉर्क न्यूजर्सी स्टेडियम में फाइनल में 90 मिनट तक संघर्षपूर्ण और रोमांचक मैच में कोई गोल नहीं हो पाया। स्पेन के फेरान टोरेस ने अतिरिक्त समय में गोल करके अपनी टीम को 1-0 से जीत दिला दी। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय नीना ओरेकल। The monsoon session of Parliament will begin today. It will continue till 13th of August. The 25-day session will have 19 sittings, a report.
3: During the session, several important bills are expected to be taken up for discussion and passage. Today, the Lok Sabha is scheduled to take up the Supreme Court Number of Judges Amendment Bill 2026, and the Rajya Sabha is scheduled to discuss the Prevention of Insults to National Honour Amendment Bill 2026. Apart from these bills, Registration of Births and Deaths Amendment Bill, Income Tax Amendment Bill, Micro, Small and Medium Enterprises Development Amendment Bill 2026 are also expected to be discussed during the monsoon session.

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। संसद का मॉनसून अधिवेशन आज से शुरू हो रहा है। ये 13 अगस्त तक चलेगा। 25 दिन के अधिवेशन में संसद की 19 बैठक होंगी। इससे पहले सरकार ने कल संसद भवन में सर्वदलीय बैठक बुलाई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बैठक की अध्यक्षता की। 40 राजनीतिक दलों के 50 से अधिक नेता बैठक में शामिल हुए। बैठक के बाद संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने सभी राजनीतिक दलों से महत्वपूर्ण मुद्दों पर सकारात्मक चर्चा करने का आग्रह किया।
1: कोई पार्टी या कोई मेंबर अपना जो भी बात रखना चाहता है पार्लियामेंट में पूरा रख सकते हैं। मैं विपक्ष के साथियों को कहना चाहता हूं कि पहले में भी पार्लियामेंट को चलाने में दिक्कत आई थी क्योंकि हंगामा बहुत ज्यादा हुआ था। लोग चाहते हैं कि पार्लियामेंट सुचारू रूप से चले, इसलिए मैं फिर से सब पार्टी के नेताओं को मैं अनुरोध करता हूं कि पार्लियामेंट अच्छी तरह से चले, इसमें सब लोग योगदान करें।
0: लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कल कार्य मंत्रणा समिति की बैठक बुलाई। इस दौरान सरकार और विभिन्न राजनीतिक दलों के सदस्यों ने सत्र में उठाए जाने वाले विधायी और अन्य मुद्दों पर चर्चा की। सदस्यों ने जनहित और राष्ट्रीय महत्व के कई मुद्दों पर चर्चा का सुझाव दिया। श्री बिरला ने आशा व्यक्त की है कि संसद सदस्य संविधान की गरिमा और संसदीय परंपराओं और मर्यादाओं का पालन करते हुए सहयोग की भावना से कार्यवाही में भाग लेंगे। दिल्ली पुलिस ने स्पष्ट किया है कि आज से शुरू हो रहे संसद अधिवेशन के मद्देनजर नई दिल्ली जिले में किसी भी विरोध मार्च या जुलूस के लिए किसी ने कोई अनुमति नहीं मांगी है और ना ही दी गई है। पुलिस ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि क्षेत्र में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 लागू है, इसलिए जंतर मंतर को छोड़कर क्षेत्र में विरोध मार्च, जुलूस, प्रदर्शन और 5 या अधिक व्यक्तियों के जमावड़े पर सख्त प्रतिबंध है। इस बीच दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने सूचित किया है कि सुरक्षा कारणों से जनपथ राजीव चौक, पटेल चौक, केंद्रीय सचिवालय और सेवा तीर्थ मेट्रो स्टेशन अगले आदेश तक बंद रहेंगे। मध्य प्रदेश मंत्रिमंडल ने समान नागरिक संहिता यूसीसी विधेयक को मंजूरी दे दी है। कल भोपाल के निकट जगदीशपुर में हुई विशेष बैठक के बाद मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बताया कि समान नागरिक संहिता सभी समुदायों को समान अवसर और अधिकार उपलब्ध कराएगा। उन्होंने कहा कि यूसीसी विधेयक से किसी भी नागरिक के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं होगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज चिशिनाऊ में मालडोवा की राष्ट्रपति माइया संडू के साथ शिष्टमंडल स्तर की वार्ता करेंगी। राष्ट्रपति मुर्मू मालडोवा संसद के अध्यक्ष इगोर ग्रोसू से भी मिलेंगी और मालडोवा भारत संसदीय मैत्री समूह के सदस्यों से बातचीत करेंगी। इसके बाद वे एक व्यापार फोरम को संबोधित करेंगी। मालडोवा यात्रा के दौरान राष्ट्रपति मुर्मू भरतवंशियों से भी मुलाकात करेंगी। किसी भी भारतीय राष्ट्रपति की ये मालडोवा की पहली यात्रा है। श्रीमती मुर्मू 3 देशों मालदोवा, नॉर्थ मैसेडोनिया और रोमानिया की यात्रा पर हैं। गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज स्वतंत्रता सेनानी बटुकेश्वर दत्त की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि बटुकेश्वर दत्त ने अंग्रेजों के खिलाफ समूचे देश में स्वतंत्रता की अलख जगाई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बटुकेश्वर दत्त को एक राष्ट्रवादी साहसी व्यक्तित्व बताया जिन्होंने अन्याय और औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध संघर्ष किया। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में आयकर रिटर्न भरना, जागरूकता, सुविधा और समय से अनुपालन विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। सनदी लेखाकार और कर विशेषज्ञ शरद कोहली तथा बैंकिंग विशेषज्ञ अश्विनी राणा परिचर्चा में भाग लेंगे। श्रोता स्टूडियो में उपस्थित विशेषज्ञों से विषय से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। स्पेन ने फीफा विश्व कप जीत लिया है। न्यूयॉर्क न्यूजर्सी स्टेडियम में फाइनल में 90 मिनट तक संघर्षपूर्ण और रोमांचक मैच में कोई गोल नहीं हो पाया। स्पेन के फेरान टोरेस ने अतिरिक्त समय में गोल करके अपनी टीम को 1-0 से जीत दिलाई। मौसम विभाग ने हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड में अगले 2 दिन में अत्यधिक तेज बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। इधर दिल्ली में आज सुबह से ही रुक रुक कर बारिश हो रही है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Nina Arakel. The monsoon session of Parliament will begin today. It will continue till 13th of August. The 25-day session will have 19 sittings. A report.
3: During the session, several important bills are expected to be taken up for discussion and passage. Today, the Lok Sabha is scheduled to take up the Supreme Court Number of Judges Amendment Bill 2026, and the Rajya Sabha is scheduled to discuss the Prevention of Insults to National Honour Amendment Bill 2026. Apart from these bills, Registration of Births and Deaths Amendment Bill, Income Tax Amendment Bill, Micro, Small and Medium Enterprises Development Amendment Bill 2026 are also expected to be discussed during the monsoon session. Anupam Mishra, Akashvani News, Delhi.
2: On the eve of the monsoon session, government yesterday convened an all-party meeting at Parliament House. The meeting was chaired by Defence Minister Rajnath Singh. Over 50 leaders from 40 political parties attended the meeting. Speaking to media after the meeting, Parliamentary Affairs Minister Kiran Rijiju urged all political parties to ensure the smooth functioning of Parliament and engage in constructive discussions on key issues.

0: There are various demands by various political parties for discussion. We have said that let parliament function smoothly. Exactly what are the issues to be discussed? That has to be decided in the Business Advisory Committee.
1: Lok Sabha Speaker Om Birla has expressed hope that members of Parliament will participate in the proceedings with a spirit of cooperation while upholding the dignity of the Constitution as well as parliamentary traditions and decorum. In a social media post, Mr. Birla said that the smooth conduct and maximum disposal of legislative and other parliamentary business is a collective responsibility. President Draupadi Murmu will hold delegation-level talks with her Moldovan counterpart Maia Sandu in Chisinau today. President Murmu will also meet the President of the Parliament of Moldova, Igor Grosu, and will interact with members of the Moldova-India Parliamentary Friendship Group. Further, the President will address a business forum and interact with the members of the Indian community. This is the first ever visit by an Indian President to Moldova. The President is on a three-nation state visit to Moldova, North Macedonia and Romania. After concluding a visit to Moldova, the President in the second leg of a visit will reach North Macedonia tomorrow. Madhya Pradesh Cabinet has approved the Uniform Civil Code UCC bill during a special meeting held at Jagdishpur, a historic town near Bhopal. Addressing a press conference, Chief Minister Mohan Yadav said that the UCC will provide equal opportunities and rights to all communities, and this law is a major step in that direction. He said the UCC bill does not violate the fundamental rights of the citizens. The bill will now be tabled in the monsoon session of State Assembly beginning today. In Jammu and Kashmir, 11 persons were killed and 8 are missing as rains triggered flash floods and landslides in the twin border districts of Rajouri and Poonch yesterday. Hundreds of people were rescued and shifted to safer places in multi-agency relief and rescue operations. Union Home Minister Amit Shah reviewed the situation following the incident. He assured of all help from the centre to J&K. The Indian Embassy in Tehran has issued a revised advisory for internationals in view of recent increase in levels of instability and conflict in Iran. It has advised internationals intending to travel to Iran for any purpose to postpone travel for time being until the security environment improves. It said Indians already in Iran should consider temporarily exiting Iran using available flight options. Spain beat defending champions Argentina 1-0 in an extra time to become FIFA World Cup 2026 champions. Spain substitute Ferran Torres scored in the 106th minute to give his team a 1-0 win over Argentina in the final at New York, New Jersey Stadium last night. The victory secured Spain's second men's FIFA World Cup title and their first since lifting the trophy in 2010. French striker Kylian Mbappe gets Golden Boots award in FIFA World Cup 2026. And that is the end of this news bulletin.
2: नमस्कार आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं मुनीश शर्मा मुख्य समाचार राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज चिसिनाऊ में मोल्डोवा की राष्ट्रपति माइया संडू के साथ प्रतिनिधि मंडल स्तर की वार्ता करेंगी अमेरिका ने नवी रात भी ईरान पर हमले किए और उस जलडमरू मध्य में तनाव और गहराया भारत ने बढ़ती अस्थिरता के बीच नागरिकों को ईरान यात्रा स्थगित करने का परामर्श दिया स्पेन ने अर्जेंटीना को 1-0 से हराकर फीफा विश्व कप जीत लिया है और क्रिकेट में लंदन के लॉर्ड्स में भारत को 27 रन से हराकर इंग्लैंड ने 3 एकदिवसीय मैचों की श्रृंखला 2-1 से जीती और अब समाचार विस्तार से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज चिशिनाव में मोल्डोवा की राष्ट्रपति माइया संडू के साथ शिष्टमंडल स्तर की वार्ता करेंगी राष्ट्रपति मुर्मू मोल्डोवा संसद के अध्यक्ष इगोर ग्रोसू से भी मिलेंगी और मोल्डोवा भारत संसदीय मैत्री समूह के सदस्यों से बात करेंगी इसके बाद वे एक व्यापार फोरम को संबोधित करेंगी
3: मोल्डोवा यात्रा के दौरान राष्ट्रपति मुर्मू भारतवंशियों से भी मिलेंगे। किसी भी भारतीय राष्ट्रपति की ये मोल्डोवा की पहली यात्रा है। राष्ट्रपति तीन देशों मोल्डोवा, नॉर्थ मैसेडोनिया और रोमानिया की यात्रा पर हैं। यात्रा के दूसरे चरण में राष्ट्रपति कल नॉर्थ मैसेडोनिया पहुंचेंगे। वहां वे राष्ट्रपति गोर्डाना सिल्जानोवस्का दाबुकोवा के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। वे मोल्डोवा के प्रधानमंत्री रिस्ट्रिजन मिकोस्की से भी मिलेंगे और नॉर्थ मैसेडोनिया के असेंबली को संबोधित करेंगे। इसके बाद राष्ट्रपति मुर्मू भारत नॉर्थ मैसेडोनिया व्यापार फोरम को भी संबोधित करेंगे। यात्रा के अंतिम चरण में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बृहस्पतिवार को रोमानिया पहुंचेंगी। रोमानिया के दो दिन की यात्रा में वे वहां के राष्ट्रपति, अंतरिम प्रधानमंत्री और सीनेट अध्यक्ष से मिलेंगे। विश्व दर्पण के लिए मैं आशा निवेदी।
2: ईरान में अस्थिरता और हाल में संघर्ष तेज होने को ध्यान में रखते हुए तेहरान में भारतीय दूतावास ने भारतीय नागरिकों के लिए एक परामर्श जारी किया है। दूतावास ने सुरक्षा हालात में सुधार आने तक किसी भी उद्देश्य के लिए ईरान की यात्रा करने के इच्छुक भारतीय नागरिकों को फिलहाल यात्रा टालने की सलाह दी है। ईरान में पहले से रह रहे भारतीय नागरिकों को उपलब्ध उड़ान विकल्पों के जरिए अंशकालिक तौर पर ईरान से बाहर निकलने पर विचार करना चाहिए।
4: ईरान में रहने पर विचार करने वाले भारतीय नागरिकों को अधिक सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। भारतीय नागरिकों को स्थिति से पूरी तरह अवगत रहने के लिए समाचारों पर ध्यान देने का आग्रह किया गया है। भारतीय नागरिकों को सैन्य गतिविधियों की अधिकता वाले ईरान के दक्षिणी तटीय इलाकों में जाने से बचना चाहिए। नागरिकों से स्थानीय अधिकारियों को निर्देशों का सावधानी से अनुपालन करने को भी कहा गया है। दूतावास ने ईरान में रह रहे सभी भारतीय नागरिकों को तत्काल दूतावास में अपने ब्यूरो का पंजीकरण कराने की सलाह दी है। आपातकालीन हेल्पलाइन नंबर +98912810915 +98912810909 +98912810902 और +98993217935 जारी किए गए हैं। विश्व दर्पण के लिए मैं इशिका।
2: अमेरिका ने लगातार नवी रात ईरान पर हमले किए। अमरीकी सेंट्रल कमांड ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि ये हमले ईरान की उन सैन्य क्षमताओं को कमजोर करने के लिए जारी रहेंगे जिनका इस्तेमाल होर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरने वाले वाणिज्यिक जहाजों और नाविकों पर हमले के लिए किया जाता है।
5: अमरीकी हमलों से पश्चिमी एशिया में तनाव और गहरा गया है। इससे पहले लगातार आठवीं रात हमलों के दौरान अमरीकी सेना ने ईरान के कई सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया था, जिनमें तटीय निगरानी और एयर डिफेंस सुविधाएं, समुद्री क्षमताओं और मिसाइल व ड्रोन स्टोरेज स्थल शामिल थे। अमरीकी सेना ने इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर के उन ठिकानों को भी निशाना बनाया जहां से 17 जुलाई को जॉर्डन में अमरीकी सैनिकों पर हमले किए गए थे। पश्चिमी एशिया में 50,000 से अधिक अमरीकी सैनिक तैनात हैं। पिछले हफ्ते अमरीका ने ईरान के दक्षिणी प्रांतों में सैन्य ठिकानों और बुनियादी ढांचे पर कई हमले किए हैं। अमरीका का कहना है कि इन हमलों का उद्देश्य ईरान की उस क्षमता को कमजोर करना था जिससे वे होर्मुज जलडमरू मध्य में वाणिज्यिक जलपोतों के लिए खतरा पैदा करता है। समाचार कक्ष से अमीशा।
2: उत्तरी इराक में ईरानी ड्रोन को नष्ट करने के दौरान तीसरे अमरीकी सैनिक की मौत हो गई। इससे पहले अमरीकी केंद्रीय कमान ने जॉर्डन में अज्ञात शवों का पता लगाने की बात कही थी, जहां ईरानी हमले में दो अमरीकी सैनिक मारे गए और एक लापता था, लेकिन अब मृतकों की संख्या 3 हो गई है। विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। अमेरिका में भारतीय समुदाय के एडवोकेसी ग्रुप ने अमेरिकी कांग्रेस और संयुक्त राज्य अमेरिका की नागरिक और आवर्जन सेवा से यह अपील की है कि वे विद्यार्थियों और एक्सचेंज विजिटर्स के लिए वीजा पाबंदियों पर नई 4 साल की सीमा लागू न करें। फाउंडेशन फॉर इंडिया एंड इंडियन डायस्पोरा स्टडीज में नीति और रणनीति की प्रमुख खांडे राव कांड ने कहा कि अमेरिका की प्रतिस्पर्धा क्षमता को खुद नुकसान पहुंचाने जैसा है। उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों को प्रोग्राम या रिसर्च के बीच में ही बाहर जाना पड़ सकता है, लैब्स को जरूरी प्रतिभा को खोना पड़ सकता है और अमरीका अपनी नवाचार पाइपलाइन इस तरह प्रतिस्पर्धियों को सौंप देगा।
6: ये बयान ऐसे समय आया है जब अमेरिका ने विदेशी विद्यार्थियों, एक्सचेंज विजिटर्स और पत्रकारों के लिए वीजा नियमों को सख्त कर दिया है। इससे वो पुरानी व्यवस्था खत्म हो गई है जिसके तहत वे बिना सरकारी निगरानी के देश में अनिश्चित काल तक रह सकते थे। समूह ने प्रशासन से अपील की।

0: की है कि वे इसे लागू करने की प्रक्रिया टाल दें, विद्यार्थियों की सुरक्षा करें और अमेरिका के अनुसंधान और नवाचार को बचाए रखें। 2025 में नए अंतर्राष्ट्रीय विद्यार्थी नामांकन में पहले ही 17% की गिरावट आ चुकी है। ये महामारी के बाद से सबसे बड़ी गिरावट है। विश्व दर्पण के लिए मैं मनोज।
1: गुयाना नौका दुर्घटना में अब तक 67 लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया है। कल गुयाना में 116 यात्रियों और चालक दल के 17 सदस्यों को लेकर जा रही एक बड़ी नौका समुद्र में डूब गई थी। कई लोग अब भी लापता हैं। गुयाना के प्रधानमंत्री मार्क फिलिप्स ने मीडिया को बताया कि इस नौका की क्षमता 300 से ज्यादा यात्रियों को ले जाने की थी। लोक निर्माण मंत्री जुआन एडगिल ने कहा कि कल स्थानीय समयानुसार रात 11:01 पर नौका के संकटग्रस्त होने की सूचना मिली और इसके बाद व्यापक बचाव अभियान चलाया गया। आपात टीमें अब भी लोगों की तलाश कर रही हैं। स्पेन ने फीफा विश्व कप जीत लिया है। न्यूयॉर्क न्यूजर्सी स्टेडियम में फाइनल में 90 मिनट तक संघर्षपूर्ण और रोमांचक मैच में कोई गोल नहीं हो पाया था। स्पेन के फेरान टोरेस ने अतिरिक्त समय में गोल करके अपनी टीम को 1-0 से जीत दिला दी।
2: One final act on this incredible summer of soccer for Rodri to lift the trophy and for the celebrations to begin both here and overseas. And when Rodri's ready, here we go.
3: फीफा फुटबॉल विश्व कप का इतिहास लिखा जा चुका है। स्पेन ने दूसरी बार पुरुष फीफा विश्व कप अपने नाम कर लिया है। इससे पहले स्पेन ने 2010 में खिताब जीता था। इस जीत के साथ स्पेन एक ही समय में पुरुष और महिला फुटबॉल विश्व कप विजेता पहला देश बन गया है। इस हार ने अर्जेंटीना और लियोनेल मेसी के शानदार दौर का भी अंत कर दिया है। मेसी ने अपनी टीम को 2022 फीफा वर्ल्ड कप और 2021 तथा 2024 में कोपा अमेरिका का खिताब जिताया था। टोरेस फीफा विश्व कप फाइनल में गोल करने वाले पांचवे ऐसे खिलाड़ी बने जो मैच के अंतिम समय में किसी अन्य खिलाड़ी के स्थान पर टीम में खेले। 48 टीमों के साथ ये अब तक का सबसे बड़ा फीफा विश्व कप था। ये टूर्नामेंट अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको में खेला गया। और अगर बात करें पुरुष क्रिकेट की तो इंग्लैंड ने लंदन के लॉर्ड्स में तीसरे और निर्णायक एक दिवसीय मैच में भारत को 27 रन से हराकर श्रृंखला 2-1 से जीत ली है। इंग्लैंड ने निर्धारित 50 ओवर में 3 विकेट पर 387 रन बनाए। भारतीय टीम 7 विकेट पर 360 रन ही बना सकी। इससे पहले भारतीय टीम ने साउथहैम्पटन के रोज बाउल में पहला मैच जीता था। दूसरा मैच कार्डिफ में मेजबान टीम ने जीता। विश्व दर्पण के लिए मैं मुकेश कुमार बल।
1: और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। एक बार फिर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज चिसिनाव में मोल्डोवा की राष्ट्रपति माइया सांडू के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता करेंगी। अमेरिका ने नवी रात भी ईरान पर हमले किए और हॉर्मुज जलजमरू मध्य में तनाव और गहराया। भारत ने बढ़ती अस्थिरता के बीच नागरिकों को ईरान यात्रा स्थगित करने का परामर्श दिया। स्पेन ने अर्जेंटीना को 1-0 से हराकर फीफा विश्व कप जीता। और इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: गुड मॉर्निंग, दिस इज आकाशवाणी। आई एम शगुन चोपड़ा विद द वर्ल्ड न्यूज। The headlines. President Draupadi Murmu to hold delegation-level talks with her Moldovan counterpart Maia Sandu in Chisinau today. US strikes Iran for 9th night as Strait of Hormuz tension deepens. India advises its citizens to postpone travel to Iran amid rising instability. Spain beat defending champions Argentina 1-0 in extra time to win FIFA World Cup 2026. And in men's cricket, England beat India by 27 runs in third ODI to seal 3-match series 2-1. And now the news in detail. President Draupadi Murmu will hold delegation-level talks with her Moldovan counterpart Maia Sandu in Chisinau today. More from our correspondent. President Murmu will also meet the President of the Parliament of Moldova, Igor Grosu, and will interact with members of the Moldova-India Parliamentary Friendship Group. Further, the President will address a business forum and interact with the members of the Indian community. This is the first ever visit by an Indian President to Moldova. After concluding her visit to Moldova, the President in the second leg of her visit will reach North Macedonia on Tuesday. This will also be the first ever visit by an Indian President to North Macedonia. During the visit, the President will hold bilateral talks with her counterpart Gordana Slijanovska Davkova and also meet the Prime Minister Hristijan Mikoski and the President of the Assembly. The President is also scheduled to address the Assembly of North Macedonia. Further, the President will address India-North Macedonia Business Forum. On the final leg of her visit, President Murmu will reach Romania on Thursday. During her two-day visit to Romania, the President will meet Romanian President Nicos Ordan, Interim Prime Minister Ili Bolian, President of the Senate Mircea Abrudien, and President of the Chamber of Deputies Sorin Grindeanu. She is also scheduled to meet the members of the Romania-India Parliamentary Friendship Group. Later, the President will address India-Romania Business Forum and have interactions with the members of the Indian community. The External Affairs Ministry said that the state visit to three countries by President Murmu reflects India's commitment of strengthening its bilateral ties with these countries along with engagement with the wider Eastern European region. With Sakhalin's report, this is Saira Mujtaba, Akashwani News, Delhi.
5: The U.S. Central Command said it has launched a new wave of military strikes against Iran, marking the ninth consecutive night of operations. In a social media post, the U.S. Central Command said a new wave of strikes against Iran began last night and will continue degrading Iranian military capabilities used to attack commercial vessels and civilian mariners transiting the Strait of Hormuz, thus deepening tensions at the strait further. Earlier, during the eighth consecutive night of strikes, U.S. forces targeted a range of Iranian military assets, including coastal surveillance and air defense facilities, maritime capabilities, and missile and drone storage sites. American military also targeted Islamic Revolutionary Guard Corps forces that launched attacks against U.S. service members in Jordan on July 17th. More than 50,000 U.S. men and women in uniform are operating across the West Asia. United States has launched waves of strikes and military strikes and infrastructure in Iran's southern provinces in the past week, claiming they were aimed at degrading Iran's ability to threaten commercial shipping in the Strait of Hormuz. The Indian Embassy in Tehran has issued a revised advisory for Indian nationals in view of recent increase in levels of instability and conflict in Iran. It has advised Indian nationals intending to travel to Iran for any purpose to postpone travel for the time being until the security environment improves. It said Indians already in Iran should consider temporarily exiting Iran using available flight options. It further said that Indian nationals who choose to remain in Iran should exercise the highest possible level of caution. It urged them to carefully monitor news to maintain full situational awareness and avoid locations seeing higher levels of military activity, such as those along the southern coast of the country. It has also asked citizens to comply with instructions issued by local authorities carefully. The embassy further advised all Indian nationals currently in Iran to register their particulars with the embassy at the earliest opportunity. It also urged them to regularly monitor the embassy's official website and social media platforms for updates and further advisories. Indian nationals can contact the embassy through email at cons.tehran@mea.gov.in. An Indian diaspora advocacy group has urged U.S. Congress and the U.S. Citizenship and Immigration Services to halt the implementation of the new four-year cap on visa restrictions for students and exchange visitors. Chief of Policy and Strategy at the Foundation for India and Indian Diaspora Studies, Khande Rav Kand, said that this is a self-inflicted wound on U.S. competitiveness. Students can be forced out mid-program or mid-research, labs will lose critical talent, and America will hand its innovation pipeline to competitors, she added. This is Akashwani. You're listening to World News. We bring you the top international news and updates from around the globe. Senegal's president, Bassirou Faye, has been elected as the new chairman of the Economic Community of West African State, succeeding Sierra Leone's president, Julius Maada Bio.
4: Fai emerged as the new chairman during the 69th ordinary session of the Authority of Heads of State and Government of the Economic Community of West African States in Sierra Leone yesterday. He succeeds Bayo at a particularly challenging period for Economic Community of West African States with security threats, democratic setbacks and withdrawal of Mali, Burkina Faso and Niger still dominating the regional agenda. On to sports. Spain beat defending champions Argentina 1-0 in extra time.

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। संसद का मॉनसून सत्र आज से शुरू हो गया है। यह 13 अगस्त तक चलेगा। 25 दिन के सत्र में सदन की 19 बैठकें होंगी। संसद सत्र से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी राजनीतिक दलों से सकारात्मक और सार्थक चर्चा का आग्रह किया। संसद परिसर में श्री मोदी ने मॉनसून सत्र को उत्पादक बनाने पर बल दिया।
1: मॉनसून हो या मॉनसून सत्र, अगर दोनों प्रोएक्टिव हो तो बहुत ही प्रोडक्टिव होते हैं, और दोनों को प्रोडक्टिव होते हैं तो देश का कल्याण होता है, जीव मात्र का कल्याण होता है। साथियों, पिछले एक महीने में देश ने अनेक सिद्धियां प्राप्त की है, और देशवासी गर्व से भर जाए इस प्रकार की सिद्धियों का सिलसिला चला है, चाहे राष्ट्रीय हो, अंतर्राष्ट्रीय हो, और अब तो अंतरिक्ष भी हो, भारत के लिए गर्व के पल रहे हैं।
0: लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आशा व्यक्त की है कि संसद सदस्य संविधान की गरिमा और संसदीय परंपराओं तथा मर्यादा का पालन करते हुए सहयोग की भावना से कार्यवाही में भाग लेंगे। सोशल मीडिया पर श्री बिरला ने कहा कि विधायी और अन्य संसदीय कार्यों का सुचारू संचालन और अधिकतम कार्य निष्पादन सामूहिक जिम्मेदारी है। श्री बिरला ने कहा कि इससे जनता का विश्वास और मजबूत होगा तथा लोकतांत्रिक संस्थाओं का कद बढ़ेगा। श्री बिरला ने कल कार्य मंत्रणा समिति की बैठक बुलाई। इस दौरान सरकार और विभिन्न राजनीतिक दलों के सदस्यों ने सत्र में उठाए जाने वाले विधायी और अन्य मुद्दों पर चर्चा की। दिल्ली पुलिस ने स्पष्ट किया है कि संसद सत्र के मद्देनजर नई दिल्ली जिले में किसी भी विरोध

0: मार्च या जुलूस के लिए किसी ने कोई अनुमति नहीं मांगी है और न ही दी गई है। पुलिस ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि क्षेत्र में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 लागू है, इसलिए जंतर मंतर को छोड़कर क्षेत्र में विरोध मार्च, जुलूस, प्रदर्शन और 5 या अधिक व्यक्तियों के जमावड़े पर सख्त प्रतिबंध है। इस बीच दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने जानकारी दी है कि राजीव चौक और केंद्रीय सचिवालय मेट्रो स्टेशन पर अब इंटरचेंज सुविधाएं चालू हैं और गेट खुल गए हैं। इससे पहले दिल्ली मेट्रो ने बताया था कि सुरक्षा कारणों से जनपथ राजीव चौक, पटेल चौक, केंद्रीय सचिवालय और सेवा तीर्थ मेट्रो स्टेशन को अगले आदेश तक बंद कर दिया गया था। जम्मू कश्मीर के राजौरी और पुंछ जिले में कल बाढ़ और चट्टाने खिसकने से 11 लोगों की मौत हो गई, 8 लोग लापता हैं। कई लोगों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाया गया है। गृह मंत्री अमित शाह ने स्थिति की समीक्षा की है और केंद्र की ओर से हर संभव सहायता का आश्वासन दिया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज चिशिनो में मोल्दोवा की राष्ट्रपति माइया सांदू के साथ शिष्टमंडल स्तर की वार्ता करेंगी। राष्ट्रपति मुर्मू मोल्दोवा संसद के अध्यक्ष इगोर ग्रोसू से भी मिलेंगी और मोल्दोवा भारत संसदीय मैत्री समूह के सदस्यों से बातचीत करेंगी। इसके बाद वे एक व्यापार मंच को संबोधित करेंगी। मोल्दोवा यात्रा के दौरान राष्ट्रपति मुर्मू प्रवासी भारतीयों से भी मिलेंगी। किसी भी भारतीय राष्ट्रपति की ये मोल्दोवा की पहली यात्रा है। श्रीमती मुर्मू 3 देशों मोल्दोवा, उत्तरी मैसेडोनिया और रोमानिया की यात्रा पर हैं। अमरीका ने लगातार 9वीं रात ईरान पर हमले किए। अमरीकी सेंट्रल कमांड ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि ये हमले ईरान की उन सैन्य क्षमताओं को कमजोर करने के लिए जारी रहेंगे जिनका इस्तेमाल होर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरने वाले वाणिज्यिक जहाजों और नाविकों पर हमले के लिए किया जाता है। अमरीकी हमलों से पश्चिम एशिया में तनाव और बढ़ गया है। पश्चिम एशिया में 50,000 से अधिक अमरीकी सैनिक तैनात हैं। पंजाब सरकार ने मनरेगा से विकसित भारत जी रामजी योजना में सुचारू परिवर्तन सुनिश्चित करने के लिए व्यापक व्यवस्था की है। ग्रामीण श्रमिकों के रोजगार के अवसरों की सुरक्षा और राज्यों में विकास कार्यों के निर्बाध निष्पादन को भी सुनिश्चित किया गया है। 1 जुलाई से पंजाब में लागू हुई विकसित भारत जी रामजी योजना के अंतर्गत वेतन के लिए 50 करोड़ रूपये की स्वीकृत राशि पहले ही प्राप्त हो चुकी है। स्पेन ने फीफा विश्व कप जीत लिया है। न्यूयॉर्क न्यूजर्सी स्टेडियम में फाइनल में 90 मिनट तक संघर्षपूर्ण और रोमांचक मैच में कोई गोल नहीं हो पाया। अतिरिक्त समय में गोल करके फेरान टेरिस ने अपनी टीम को 1-0 से जीत दिलाई। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय शगुन चोपड़ा। The monsoon session of Parliament has begun. It will continue till 13th of August. The 25-day session will have 19 sittings. Now, we'll take you live to the session.
2: Kulam, Kerala mein hua. Sri Pyarelal Sangwar, Uttar Pradesh ke Ghatampur Sansadiy Nirvachan Kshetra se 13vi Lok Sabha ke sadasya the. Isse purve do karyakaron ke liye Uttar Pradesh Vidhan Sabha ke sadasya bhi rahe. श्री प्यारे लाल संगवार का निधन 71 वर्ष की आयु में 8 जुलाई 2026 को दिल्ली में हुआ। सभा अपने 6 पूर्व साथियों के निधन पर गहरा शोक व्यक्त करती है।
1: Prime Minister Narendra Modi has said that be it the monsoon or the monsoon session, if both are proactive, they prove to be highly productive. Speaking to the media before beginning of the monsoon session of Parliament, he said when both are productive, it leads to the welfare of the nation and the well-being of all living beings.
3: Monsoon ho ya monsoon satra, agar dono proactive ho, to bahut hi productive hote hain. और दोनों को प्रोडक्टिव होते हैं तो देश का कल्याण होता है, जीव मात्र का कल्याण होता है। साथियों, पिछले 1 महीने में देश ने अनेक सिद्धियां प्राप्त की है और देशवासी गर्व से भर जाएं, इस प्रकार की सिद्धियों का सिलसिला चला है, चाहे राष्ट्रीय हो, अंतर्राष्ट्रीय हो और अब तो अंतरिक्ष भी हो, भारत के लिए गर्व के पल रहे हैं।
1: The Prime Minister expressed hope that the monsoon remains both proactive and productive, and the monsoon session also proves to be productive.

0: बीते हुए पल लेके आए हैं यादों की बारात। आप सुन रहे हैं लो आ गई उनकी याद, लो आ गई उनकी याद 100.1 FM गोल्ड पर। लो आ गई उनकी याद, लो आ गई उनकी याद 100.1 FM गोल्ड पर।
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात।
0: बीते हुए पल लेके आए हैं यादों की बारात। आप सुन रहे हैं लो आ गई उनकी याद, लो आ गई उनकी याद 100.1 FM गोल्ड पर। लो आ गई उनकी याद, लो आ गई उनकी याद 100.1 FM गोल्ड पर।

शंकर जयकिशन के संगीत से सजा ये बहुत ही प्यारा सा गीत आप सुन रहे थे, गायक कलाकार मोहम्मद रफी की आवाज़ में फिल्म झुक गया आसमान से, जिसमें बोल थे हसरत जयपुरी के। और फिलहाल संग आप शर्मिष्ठा के सुन रहे हैं कार्यक्रम लो आ गई उनकी याद। और इस कार्यक्रम को सुनने के लिए आपने ट्यून किया है 100.1 FM गोल्ड के अलावा न्यूज़ ऑन एयर ऐप पर भी हमारे ये प्रसारण इस वक्त आप सुन पा रहे हैं। फिर एक बार एक नया विषय लेकर हाजिर हो चुके हैं हम, जिसका नाम है कार्यक्रम लो आ गई उनकी याद। और बात करूंगी आज किसी खास को लेकर। जी हाँ, एक ऐसे शख्स, एक ऐसे कलाकार, एक ऐसे अभिनेता जिनके अनगिनत फिल्में, जिनके अनगिनत फिल्मों के गीतों के जरिए हम उन्हें याद करते हैं। वैसे तो हर रोज़ किसी न किसी कार्यक्रम में उनसे जुड़े फिल्म, उनसे जुड़े गीत हम सुन ही लेते हैं, लेकिन खासकर आज के दिन जब उनकी जयंती के तौर पर आज के दिन को मनाया जाता है, तो ऐसे में इस कलाकार के बारे में कैसे बात ना हो। बात कर रही हूँ अभिनेता राजेंद्र कुमार को लेकर, और उनसे जुड़ी फिल्मों को लेकर भी बहुत सी बातें होंगी इसी कार्यक्रम में। लेकिन उससे पहले मौसम विभाग की ओर से दी जा रही है एक सतर्क वार्ता, वही सतर्क वार्ता साझा करूंगी आप सभी श्रोताओं के साथ इस कार्यक्रम के माध्यम से। और कहा यह जा रहा है कि 10:25 से लेकर 2 से 3 घंटे, अगले 2 से 3 घंटों के दौरान अलीपुरद्वार और कुछ बिहार के कुछ हिस्सों में बिजली कड़कने के साथ साथ तेज बरसात की संभावना दी जा रही है। तो अब तक सतर्क वार्ता यहीं तक है, जो कि लागू होगी अलीपुरद्वार और कुछ बिहार के कुछ हिस्सों के लिए। तो चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। और फिलहाल संघ शर्मिष्ठा के कार्यक्रम चल रहा है लो आ गई उनकी याद, और आज के इस कार्यक्रम में बात हो रही है अभिनेता राजेंद्र कुमार को लेकर।

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबंधित प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात।
1: बीते हुए पल लेके आए हैं यादों की बारात। आप सुन रहे हैं लो आ गई उनकी याद, लो आ गई उनकी याद 100.1 FM गोल्ड पर। लो आ गई उनकी याद, लो आ गई उनकी याद 100.1 FM गोल्ड पर।

11:26 संख्या आप शर्मिशा के सुन रहे हैं कार्यक्रम लो आ गई उनकी याद। और आज के इस कार्यक्रम में जाने माने अभिनेता जाने माने कलाकार राजेंद्र कुमार को लेकर हो रही है बात। 60 के दशक के सबसे सफल एक्टर्स में से एक माने जाते हैं अभिनेता राजेंद्र कुमार। अपने पूरे जीवन में 80 से अधिक फिल्मों में उन्होंने काम किया है और एक ऐसे अभिनेता जिन्होंने अपनी पहली फिल्म दिलीप कुमार के साथ की थी और जिस कामयाबी की बात उनसे जुड़ रही है, उनके साथ जोड़ी जा रही है और जिस कामयाबी के बदौलत उन्होंने अपनी एक अलग पहचान बनाई बॉलीवुड की दुनिया में, वो कामयाबी उन्हें एक दिन में नहीं मिली थी। बल्कि राजेंद्र कुमार ने

और फिर संघर्ष के बाद उस सफलता को हासिल किया था। राजेंद्र कुमार की जयंती के अवसर पर उनके फिल्मी करियर को लेकर बहुत सी बातें आज के इस कार्यक्रम में साझा करूंगी। कहते हैं कि राजेंद्र कुमार जब अपनी आंखों में हीरो बनने का ख्वाब सजाए माया नगरी पहुंचे थे तो उनके पास सिर्फ और सिर्फ 50 रुपए ही थे। जाहिर सी बात है कि ऐसे इंसान के लिए सफलता की राह आसान तो नहीं रही होगी। तो अगर आसान नहीं रही होगी तो किस तरह की समस्या का सामना उन्हें करना पड़ा होगा और उसके बाद बॉलीवुड की दुनिया में आखिर उन्होंने अपनी एक अलग छाप, अपनी एक अलग पहचान किस तरीके से बनाई, बात होगी उसके बारे में भी। लेकिन फिलहाल एक प्यारा सा गीत।

लो आ गई उनकी याद कार्यक्रम में एक से बढ़कर एक गीतों का सिलसिला तो चल ही रहा है, साथ ही साथ बात हो रही है जाने माने अभिनेता राजेंद्र कुमार को लेकर। आज उनकी जयंती के अवसर पर उनकी फिल्मों से जुड़ी कुछ छोटी छोटी मगर रोचक बातें आप सभी श्रोताओं के साथ साझा कर रही है आपकी रेडियो दोस्त शर्मिशा। 1960 और 70 के दशक के मशहूर बॉलीवुड एक्टर राजेंद्र कुमार का जन्म आज ही के दिन 1929 को सियालकोट में हुआ था। राजेंद्र कुमार अपने फिल्मी करियर की शुरुआत उन्होंने की थी साल 1950 में फिल्म जोगन के साथ। इस फिल्म में उनके ऑपोजिट दिलीप कुमार और नरगिस थे, लेकिन असली पहचान उन्हें मिली साल 1957 में। और ये जो फिल्म थी मदर इंडिया से उन्हें पहचान मिली थी, जिसमें उन्हें नरगिस के बेटी का किरदार उन्होंने निभाया था। करीब 7 साल अपनी जगह बनाने की जद्दोजहद में जूझते हुए आखिरकार 1957 में आई फिल्म मदर इंडिया में एक छोटा सा रोल उन्हें मिला था। उनकी पहली सबसे बड़ी हिट फिल्म गूंज उठी शहनाई, जो कि रिलीज हुई थी 1959 थी। इसी फिल्म में उन्हें रोमांटिक एक्टर की पहचान मिली थी। इस फिल्म को करने के बाद लेजेंडरी एक्टर को पीछे मुड़कर नहीं देखना पड़ा था। धूल का फूल, मेरे महबूब, आई मिलन की बेला के अलावा संगम, आरजू जैसी फिल्मों की जबरदस्त कामयाबी की वजह से उन्हें जुबली कुमार के नाम से बुलाया जाने लगा। कहते हैं पॉपुलैरिटी का आलम ये था कि राजेंद्र कुमार की फिल्में 25 हफ्ते तक लगातार सिनेमाघरों में चलती रहती थी। 1960 के दशक में एक दौर ऐसा आया जब राजेंद्र कुमार की 6 से 7 फिल्में एक साथ सिनेमाघरों में हिट साबित हुई थी।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 24 जुलाई तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे

बीते हुए पल लेके आई है यादों की बारात। आप सुन रहे हैं लो आ गई उनकी याद, लो आ गई उनकी याद 100.1 FM गोल्ड पर। लो आ गई उनकी याद, लो आ गई उनकी याद 100.1 FM गोल्ड पर। FM

लो आ गई उनकी याद। कार्यक्रम में आज बात हो रही थी अभिनेता राजेंद्र कुमार को लेकर, और चलिए इस वक्त उनसे जुड़े कुछ सुपरहिट फिल्मों के बारे में बात कर लेते हैं। तो साल 1957 में रिलीज हुई थी फिल्म मदर इंडिया, और इस ऐतिहासिक फिल्म में उन्होंने नरगिस के बेटे रामू की शानदार भूमिका निभाई थी। उसके बाद फिल्म आई गूंज उठी शहनाई, जो कि रिलीज हुई थी साल 1959 में। संगीत प्रधान इस फिल्म में उनका किरदार एक शहनाई वादक का था, और ये एक ब्लॉकबस्टर फिल्म साबित हुई थी। उसके बाद 1960 में फिल्म आई थी कानून, बी.आर. चोपड़ा द्वारा निर्देशित। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट साबित हुई थी। इसके बाद फिल्म बनी थी मेरे महबूब, साल 1963।

साधना के साथ उनकी ये रोमांटिक फिल्म ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी। उसी साल यानी ये 1963 में एक और फिल्म आई थी। फिल्म का नाम था दिल एक मंदिर। मीना कुमारी और राजकुमार के साथ उनकी ये फिल्म एक बड़ी संगीतमय हिट साबित हुई थी। जिंदगी फिल्म में भी हमने राजेंद्र कुमार के बेहतरीन अभिनय को देखा था साल 1964 में। इस फिल्म को दर्शकों का बहुत ज़्यादा प्यार मिला था और ये एक बड़ी हिट साबित हुई थी। इसके बाद ठीक उसके बाद वाले साल यानी कि 1965 में फिल्म आई थी आरजू। साधना और फिरोज खान के साथ इस रोमांटिक फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर धमाल ही मचा दी थी। उसके बाद ठीक उसके बाद वाले साल में यानी कि साल 1966 में फिल्म आई थी सूरज। वैजयंती माला के साथ उनकी ये फिल्म उस समय की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्मों में से एक थी। और उसके बाद आखिर में 1968 में उन्हें फिर एक बार देखा गया था फिल्म झुक गया आसमान में। सायरा बानो के साथ उनकी ये रोमांटिक कॉमेडी फिल्म हिट साबित हुई थी। साल 1969 में उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। राजेंद्र आखिरी बार दीपा मेहता की फिल्म अर्थ जो कि रिलीज हुई थी 1998 में एक छोटे से रोल में उन्हें हमने देखा था। साल 1980 के दशक में अपने बेटे कुमार गौरव को स्टार बनाने के लिए उन्होंने कुछ फिल्मों का निर्माण भी किया था, लेकिन किस्मत ने साथ नहीं दिया और कुमार गौरव अपने पिता जैसे मुकाम हासिल नहीं कर पाए। कुमार गौरव ने लव स्टोरी, तेरी कसम के अलावा, इंद्रजीत के अलावा कांटे जैसे फिल्मों में उन्होंने काम किया था, लेकिन दर्शकों के दिलों पर कोई खास जगह वे नहीं बना पाए थे। खैर, अभिनेता चाहे कोई भी हो, काफ़ी सफल अभिनेता हो या फिर सफलता कुछ खास हासिल नहीं की हो, खैर कम फिल्में ही सही, लेकिन कुमार गौरव में एक कलाकार था। जी हाँ, कम फिल्मों के ज़रिए भी उन्होंने कई सारे लोगों को अपना दीवाना, अपने अभिनय का दीवाना बना दिया था। तो चलिए फिर एक बार रुख करते हैं फिल्मी गीत की ओर। कार्यक्रम चल रहा है लो आ गई उनकी याद, और आज के इस कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं अभिनेता राजेंद्र कुमार को लेकर।

इसी के साथ आज के इस कार्यक्रम को करना होगा समाप्त, क्योंकि स्टूडियो की घड़ी बता रही है कि 11:55 है स्टूडियो की घड़ी का समय। और आज के इस कार्यक्रम में हम बात कर रहे थे अभिनेता राजेंद्र कुमार को लेकर, उनकी जयंती के अवसर पर उनकी फिल्मों के जरिए उन्हें फिर एक बार हम याद कर रहे थे। तो जाने से पहले लता मंगेशकर महेंद्र कपूर की आवाज़ में धूल का फूल फिल्म से कार्यक्रम का अगला और आखिरी गीत आप सभी सुनने वालों के लिए। इस गीत को सुनते सुनते शर्मिष्ठा को दीजिएगा इजाज़त, आज के इस कार्यक्रम को समाप्त करूंगी। कल फिर से इसी जगह इसी चैनल पर दोबारा बात होगी आप सभी सुनने वालों के लिए। लेकिन फिलहाल अगर आप दोबारा मुझे सुनना चाहते हैं तो ट्यून करना है आपने आकाशवाणी कोलकाता का संचयिता चैनल, और ठीक 12 बजे लेकर आऊंगी आप सभी श्रोताओं के लिए दैनिक हिंदी पत्रिका कार्यक्रम सुरभि। तब तक के लिए ट्यून रहिएगा चैनल 100.1 FM गोल्ड चैनल पर। सुन रहे थे कार्यक्रम लो आ गई उनकी याद।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। संसद के मॉनसून सत्र के पहले दिन आज दोनों सदनों की कार्यवाही 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। आज सवेरे लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान विपक्षी सदस्यों ने नीट पेपर लीक मामले में सत्ता पक्ष के खिलाफ नारेबाजी शुरू की। हंगामा जारी रहने पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी। इससे पहले सदस्यों ने दिवंगत नेताओं को श्रद्धांजलि अर्पित की। उधर राज्यसभा में भी ऐसी ही स्थिति रहने के कारण सदन की बैठक 12 बजे तक स्थगित कर दी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि चाहे मॉनसून हो या मॉनसून सत्र, दोनों के सक्रिय रहने पर वे अत्यंत उत्पादक सिद्ध होते हैं। संसद के मॉनसून सत्र से पूर्व संवाददाताओं से बातचीत में श्री मोदी ने कहा कि जब दोनों उत्पादक होते हैं तो इससे राष्ट्र का कल्याण और सभी जीवों की सुख शांति सुनिश्चित होती है।
1: मॉनसून हो या मॉनसून सत्र, अगर दोनों प्रोएक्टिव हो तो बहुत ही प्रोडक्टिव होते हैं, और दोनों को प्रोडक्टिव होते हैं तो देश का कल्याण होता है, जीव मात्र का कल्याण होता है। साथियों, पिछले एक महीने में देश ने अनेक सिद्धियां प्राप्त की है, और देशवासी गर्व से भर जाएं, इस प्रकार की सिद्धियों का सिलसिला चला है, चाहे राष्ट्रीय हो, अंतर्राष्ट्रीय हो, और अब तो अंतरिक्ष भी हो, भारत के लिए गर्व के पल रहे हैं।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत की वैश्विक छवि को सार्वभौमिक मान्यता और स्वीकृति मिल रही है। दिल्ली पुलिस ने स्पष्ट किया है कि संसद सत्र के मद्देनजर नई दिल्ली जिले में किसी भी विरोध मार्च या जुलूस के लिए किसी ने कोई अनुमति नहीं मांगी है और न ही दी गई है। पुलिस ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि क्षेत्र में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 लागू है, इसलिए जंतर मंतर को छोड़कर क्षेत्र में विरोध मार्च, जुलूस, प्रदर्शन और 5 या उससे अधिक व्यक्तियों के जमावड़े पर सख्त प्रतिबंध है। इस बीच दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने जानकारी दी है कि राजीव चौक और केंद्रीय सचिवालय मेट्रो स्टेशन पर अब इंटरचेंज सुविधाएं चालू हैं और गेट खुल गए हैं। उत्तर प्रदेश सरकार की गठित विशेष जांच दल एसआईटी ने राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत की है।

0: रिपोर्ट मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली तीन न्यायाधीशों की पीठ के समक्ष सील बंद लिफाफे में प्रस्तुत की गई। मामले की सुनवाई आज सर्वोच्च न्यायालय में होनी है। पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने आज नई दिल्ली में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क कन्वेंशन के कार्यकारी सचिव साइमन स्टिल से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री यादव ने बताया कि बैठक में अनुकूलन, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, जलवायु वित्त, वैश्विक मूल्यांकन और न्याय संगत परिवर्तन जैसे विषयों पर चर्चा हुई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज चिशिनो में मोल्दोवा की राष्ट्रपति माया सांदू के साथ शिष्टमंडल स्तर की वार्ता करेंगी। राष्ट्रपति मुर्मू मोल्दोवा संसद के अध्यक्ष इगोर ग्रोसू से मिलेंगी और मोल्दोवा भारत संसदीय मैत्री समूह के सदस्यों से बातचीत करेंगी। इसके बाद वे एक व्यापार मंच को संबोधित करेंगी। मोल्दोवा यात्रा के दौरान राष्ट्रपति प्रवासी भारतीयों से भी मुलाकात करेंगी। किसी भी भारतीय राष्ट्रपति की ये मोल्दोवा की पहली यात्रा है। श्रीमती मुर्मू तीन देशों मोल्दोवा, उत्तरी मैसेडोनिया और रोमानिया की यात्रा पर हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के युवाओं के साहस और दृढ़ता की सराहना की है। सोशल मीडिया पोस्ट पर एक संस्कृत उद्धरण साझा करते हुए श्री मोदी ने कहा कि देश के युवा अपने साहस, आत्मविश्वास और अथक परिश्रम के बल पर ऐतिहासिक सफलता प्राप्त कर रहे हैं और यही विकासशील भारत की सबसे बड़ी ताकत है। मौसम विभाग ने हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड में अगले दो दिन अत्यधिक तेज वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई वाले क्षेत्रों और सिक्किम में आज बहुत तेज वर्षा होने की संभावना है। स्पेन ने फीफा विश्व कप जीत लिया है। फाइनल में 90 मिनट तक संघर्षपूर्ण और रोमांचक मैच में कोई गोल नहीं हो पाया। इसके बाद स्पेन के फेरन टोरेस ने गोल कर अपनी टीम को 1-0 की जीत दिलाई। और घरेलू शेयर बाजार सूचकांक लगभग 0.7% की गिरावट के साथ आज कारोबार कर रहे थे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय शगुन चोपड़ा। The monsoon session of Parliament began today when the Lok Sabha met at 11 a.m. The House paid tributes to six of its former members who passed away recently. The House also paid tributes to Father Amir of Qatar, Sheikh Hamad bin Khalifa Al Thani. When the Speaker tried to take up the question hour, the opposition members, including from Congress and Samajwadi Party, raised the issue of paper leak of NEET examination. Mr. Birla urged the opposition to cooperate in running the House and maintain decorum, but the opposition members continued their protest, which led to adjournment of the Lok Sabha till 12 noon. In the Rajya Sabha, the proceedings began with the oath of the newly elected and re-elected members. During the proceedings, Leader of the Opposition Mallikarjun Kharge tried to raise the issue of NEET examination paper leak. However, due to uproar, Rajya Sabha Chairman C.P. Radhakrishnan adjourned the House till 12 noon. When the House met after the first adjournment at the noon, the opposition members continued their protests against NEET paper leak. The Rajya Sabha adjourned till 12:30 p.m. Prime Minister Narendra Modi has said that be it the monsoon or the monsoon session, if both are proactive, they prove to be highly productive. Speaking to the media before beginning of the monsoon session of Parliament, he said when both are productive, it leads to the welfare of the nation and the well-being of all living beings. Mr. Modi said it is a powerful message that the potential and aspirations of the country's youth are boundless as space itself.
2: मॉनसून हो या मॉनसून सत्र, अगर दोनों प्रोएक्टिव हो तो बहुत ही प्रोडक्टिव होते हैं, और दोनों को प्रोडक्टिव होते हैं तो देश का कल्याण होता है, जीव मात्र का कल्याण होता है। और इसलिए हम यही प्रार्थना करते हैं कि मॉनसून भी प्रोएक्टिव रहे, मॉनसून सत्र भी प्रोडक्टिव रहे।
1: President Draupadi Murmu will hold delegation-level talks with their Maldivian counterpart Maya Sandhu in Chisinau today. President Murmu will also meet the President of the Parliament of Moldova, Igor Grosu, and will interact with members of the Moldova-India Parliamentary Friendship Group. Further, the President will address a business forum and interact with the members of the Indian community. Delhi Metro Rail Corporation, DMRC, has informed that the interchange facilities and gates are now open at Rajiv Chowk and Central Secretariat Metro stations.

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। संसद का मॉनसून सत्र आज से शुरू। विपक्ष के हंगामे के कारण दोनों सदनों की कार्यवाही कई बार स्थगित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद के मॉनसून सत्र के सार्थक होने की उम्मीद जताई, कहा इससे देश का कल्याण होगा। सर्वोच्च न्यायालय में आज राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले की निष्पक्ष जांच की मांग करने वाली याचिकाओं पर सुनवाई होगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किशिनो में मोल्दोवा के राष्ट्रपति माया सांदू के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत की और मौसम विभाग ने उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश तथा जम्मू कश्मीर के कुछ हिस्सों में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया। अब समाचार विस्तार से। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट परीक्षा पेपर लीक मामले पर विपक्ष के हंगामे के कारण लगातार बाधित हो रही है। दोनों सदनों की कार्यवाही दोपहर 2 बजे चौथे स्थगन के बाद फिर शुरू होने पर विपक्षी सदस्यों का नीट मुद्दे पर हंगामा जारी रहा। शोर शराबे के बीच दोनों सदनों की कार्यवाही दोपहर 2:30 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। आज सवेरे सत्र की कार्यवाही शुरू होते ही सदस्यों ने हाल ही में दिवंगत हुए 6 पूर्व सदस्यों को श्रद्धांजलि अर्पित की। सदन ने कतर के अमीर शेख हमद बिन खलीफा अस्सानी को श्रद्धांजलि दी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि श्री अस्सानी ने भारत कतर संबंधों को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
1: मुझे अत्यंत दुख के साथ सभा को कतर के फादर अमीर महामहिम शेख अहमद बिन खलीफा अल थानी के निधन के बारे में भी सूचित करना है। महामहिम शेख अहमद बिन खलीफा अल थानी ने जून 1995 से

0: जून 2013 तक 18 वर्षों तक कतर के अमीर के रूप में कार्य किया। उन्होंने आधुनिक कतर की नींव रखी। उन्होंने भारत कतर संबंधों के संवर्धन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
1: लोकसभा की कार्यवाही विपक्ष के हंगामे के कारण लगातार बाधित हुई। सवेरे प्रश्नकाल शुरू होते ही कांग्रेस, समाजवादी पार्टी सहित विपक्षी सदस्यों ने नीट परीक्षा पेपर लीक मुद्दा उठाया। अध्यक्ष ने विपक्ष से सदन की कार्यवाही चलने देने और सदन की मर्यादा बनाए रखने का आग्रह किया।
0: मेरा आग्रह है कि सदन का प्रथम दिन है और इस परंपरा को तोड़ना चाहिए कि प्रथम दिन सदन नहीं चलेगा। मैं हमेशा आपसे आग्रह कहता हूं कि आपको पर्याप्त अवसर, पर्याप्त समय मिलेगा। नियमों के तहत नोटिस दीजिए, सदन नियमों प्रक्रियाओं से चलता है।
1: पीठासीन अधिकारी दिलीप सैकिया ने शून्यकाल चलाने की कोशिश की, लेकिन विपक्ष का हंगामा जारी रहा, जिसके बाद सदन की कार्यवाही 1 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। 1 बजे कार्यवाही शुरू होने पर भी विपक्ष का हंगामा जारी रहा, जिसके कारण कार्यवाही दोपहर 2 बजे और इसके बाद 2:30 बजे तक स्थगित कर दी गई। उधर राज्यसभा की कार्यवाही शुरू होते ही नवनियुक्त और पुनर्नियुक्त सदस्यों को शपथ दिलाई गई। बाद में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने नीट परीक्षा पेपर लीक मामला उठाने की कोशिश की।
2: टू पुट फोर्थ माय व्यूज अबाउट दिस पेपर लीक एंड नीट एग्जामिनेशन घोटाला, जो लाखों बच्चों की भविष्य है, उनके भविष्य के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। और उसके लिए आज यहाँ जंतर मंतर पे हजारों बच्चे आए हैं।
1: सभापति सीपी राधाकृष्णन ने सदस्यों से सदन की मर्यादा बनाए रखने की अपील की।
3: आई अपील टू मेंबर्स अक्रॉस ऑल साइड्स ऑफ द हाउस टू अपहोल्ड द डिग्निटी, डिसिप्लिन एंड डेकोरम ऑफ दिस ऑगस्ट इंस्टीट्यूशन। व्हाइल डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन आर इंटीग्रल टू पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, दे मस्ट बी एक्सप्रेस्ड इन अ मैनर दैट प्रिजर्व्स द सैंक्टिटी ऑफ द हाउस।
1: शोर शराबा जारी रहने पर सदन की कार्रवाई कई बार बाधित हुई और अब सदन की कार्रवाई 2:30 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। केंद्रीय विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने आज लोकसभा में सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या संशोधन विधेयक 2026 पेश किया। इस विधेयक का उद्देश्य सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या अधिनियम 1956 में संशोधन करके सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या भारत के मुख्य न्यायाधीश को छोड़कर वर्तमान में 33 से बढ़ाकर 37 करना है। केंद्रीय मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने कहा है कि ज्ञान भारतम मिशन के अंतर्गत 8 करोड़ से अधिक पांडुलिपियों का डिजिटलीकरण किया गया है। लोकसभा में आज पूरक प्रश्नों का उत्तर देते हुए उन्होंने कहा कि इसके अंतर्गत देश भर में 1 करोड़ से अधिक पांडुलिपियों का सर्वेक्षण किया गया है। जनता दल यूनाइटेड के नेता संजय झा ने आज कहा कि विपक्ष को संसद में रचनात्मक मुद्दे उठाने चाहिए। मॉनसून सत्र के पहले दिन संसद के बाहर आकाशवाणी से बातचीत में श्री झा ने कहा कि सरकार ने एलपीजी, पेट्रोल और डीजल की निर्बाध उपलब्धता सुनिश्चित करते हुए कीमतों को नियंत्रण में रखकर सराहनीय काम किया है। केंद्रीय राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार में स्टार्टअप्स की संख्या में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि चाहे मॉनसून हो या मॉनसून सत्र, दोनों के सक्रिय रहने पर वे अत्यंत उत्पादक सिद्ध होते हैं। संसद के मॉनसून सत्र से पूर्व संवाददाताओं से बातचीत में श्री मोदी ने कहा कि महज 1 महीने में देश ने अनेक उपलब्धियां हासिल की हैं, जो प्रत्येक नागरिक को गौरवान्वित करती हैं।
4: मानसून हो या मानसून सत्र, अगर दोनों प्रोएक्टिव हो तो देश का कल्याण होता है, जीव मात्र का कल्याण होता है। साथियों, पिछले 1 महीने में देश ने अनेक सिद्धियां प्राप्त की है और देशवासी गर्व से भर जाएं, इस प्रकार की सिद्धियों का सिलसिला चला है, चाहे राष्ट्रीय हो, अंतर्राष्ट्रीय हो और अब तो अंतरिक्ष भी हो, भारत के लिए गर्व के पल रहे हैं।
1: श्री मोदी ने सभी राजनीतिक दलों से सकारात्मक और सार्थक चर्चा का आग्रह किया। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है।

0: सर्वोच्च न्यायालय आज अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले की निष्पक्ष और समयबद्ध जांच की मांग करने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करेगा। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जयमाल्या बागची तथा वी मोहन की पीठ इस मामले से संबंधित चार अलग अलग याचिकाओं पर सुनवाई करेगी। इससे पहले उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गठित विशेष जांच दल एसआईटी ने राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में न्यायालय के समक्ष अपनी स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत की। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने आज ममता बनर्जी के नेतृत्व वाले तृणमूल कांग्रेस गुट को पार्टी के 3 बैंक खातों को संचालित करने की अंतरिम अनुमति देने से इनकार कर दिया है। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने इन 3 बैंक खातों को फ्रीज कर दिया था। इनमें 440,42,00,000 रुपए जमा थे। ये कार्रवाई राज्य पुलिस द्वारा दर्ज FIR के आधार पर की गई जांच के सिलसिले में की गई थी। संसद के मॉनसून सत्र के मद्देनजर नई दिल्ली में यातायात प्रतिबंध लागू किए गए हैं। दिल्ली यातायात पुलिस ने लोगों को रफी मार्ग, मोतीलाल नेहरू मार्ग, मौलाना आजाद रोड, संसद मार्ग, अशोका रोड, तालकटोरा रोड, राजेंद्र प्रसाद रोड, जनपथ तथा आसपास के मार्गों से बचने की सलाह दी है। इस बीच दिल्ली पुलिस ने कुछ मीडिया चैनलों पर प्रसारित उन दावों का खंडन किया है जिनमें नई दिल्ली के जंतर मंतर पर कथित तौर पर बल प्रयोग और गिरफ्तारियों की बात कही गई है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में दिल्ली पुलिस ने स्पष्ट किया कि विरोध प्रदर्शन पर पूरी तरह से शांतिपूर्ण तरीके से चलाने की कोशिश की जा रही है। दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने जानकारी दी है कि सेवा तीर्थ, राजीव चौक और केंद्रीय सचिवालय मेट्रो स्टेशनों पर अब इंटरचेंज सुविधाएं और गेट खुल गए हैं। त्रिपुरा के पुलिस महानिदेशक अनुराग धनखड़ आज अगरतला पुलिस मुख्यालय में मृत पाए गए। उनके निधन का कारण अभी तक आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं हुई है। अधिक जानकारी की प्रतीक्षा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपने 3 देशों के दौरे के पहले चरण के अंतर्गत मोल्दोवा गणराज्य में अपने कार्यक्रमों की शुरुआत की। उनको किशिनाव स्थित राष्ट्रपति भवन में औपचारिक गार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया। राष्ट्रपति मुर्मू ने मोल्दोवा की राष्ट्रपति माई सांदू के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। इसका उद्देश्य द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करना और आपसी हित के क्षेत्रों में सहयोग का विस्तार करना था। इस अवसर पर राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि इस यात्रा से दोनों देशों के बीच संबंध और मजबूत हुए हैं।
1: मोल्दोवा की पहली राज्य की यात्रा है। ये हमारे द्विपक्षीय संबंधों में एक ऐतिहासिक उपलब्धि है और हमारे दोनों देशों के बीच बढ़ती मित्रता और आपसी विश्वास को दर्शाती है। भारत और मोल्दोवा 3 दशकों से मधुर और मैत्रीपूर्ण संबंध साझा करते आ रहे हैं। भौगोलिक रूप से दूर होने के बावजूद शांति, विकास और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के प्रति हमारे साझा प्रतिबद्धता के अनुरूप हमारी साझेदारी निरंतर बढ़ती रही है।
0: अमरीका ने लगातार 9वें दिन भी ईरान पर हमले जारी रखे जिसके कारण होर्मुज जल डमरू मध्य को लेकर तनाव और बढ़ गया है। अमरीका ने दक्षिण पश्चिम ईरान के होर्मुज शहर को निशाना बनाया। वहीं जॉर्डन, कुवैत और बहरीन ने ईरान के नए हमलों की सूचना दी है। अमरीका ईरान के बीच का टकराव पड़ोसी देशों तक फैल गया है। इस बीच जॉर्डन के सरकारी प्रसारक ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा कि देश के वायु रक्षा प्रणालियों ने ईरान से जॉर्डन की ओर दागी गई 3 मिसाइलों को बीच में ही रोक दिया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। उत्तराखंड में सुरक्षा कारणों को देखते हुए एहतियात के तौर पर आज 4 धाम यात्रा कुछ समय के लिए स्थगित कर दी गई है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि बारिश से मैदानी और पहाड़ी दोनों इलाकों में जनजीवन पर असर पड़ा है।
2: उत्तराखंड के कई जिलों में तेज बारिश की चेतावनी और 4 धाम यात्रा मार्ग पर कई स्थानों पर भूस्खलन की खबरों के मद्देनजर तीर्थ यात्रा को अस्थायी रूप से रोकने का निर्णय लिया गया है। गढ़वाल आयुक्त आनंद स्वरूप ने संबंधित जिला मजिस्ट्रेटों को निर्देश दिया है कि जहां भी सड़कें अवरुद्ध हो वहां तीर्थ यात्रियों के लिए सुरक्षित व्यवस्था की जाए और यात्रा तभी दोबारा शुरू की जाए जब मार्ग पूरी तरह से सुरक्षित घोषित कर दिए जाए। मौसम विभाग ने देहरादून, टिहरी, गढ़वाल और हरिद्वार जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। उत्तरकाशी, नैनीताल, चंपावत, पौड़ी और उधम सिंह नगर के लिए ऑरेंज अलर्ट और रुद्रप्रयाग

0: चमोली, अल्मोड़ा, बागेश्वर और पिथौरागढ़ में येलो अलर्ट जारी किया है। साक्षी सिंह की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
1: उधर असम में लगातार हो रही बारिश के कारण बाढ़ की स्थिति और खराब हो गई है। ऊपरी असम के कई जिलों में हजारों लोग प्रभावित हैं। शिवसागर, चराईदेव और जोरहाट बाढ़ से सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। सेना, राष्ट्रीय और राज्य आपदा मोचन बल को राहत और बचाव कार्यों के लिए तैनात किया गया है। उधर पंजाब और हरियाणा के कई हिस्सों में भी तेज बारिश हो रही है। आज हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख तथा उत्तराखंड में तेज बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। असम, मेघालय, बिहार, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, सिक्किम और उत्तर प्रदेश में आज तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट है। छत्तीसगढ़, पूर्वी राजस्थान, गुजरात, झारखंड, केरल, माहे, कुंकड़, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, ओडिशा और उत्तर पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों में अगले तीन दिन तक ऐसी ही स्थिति रहने की संभावना है। विभाग ने कहा है कि पश्चिम मध्य अरब सागर के अधिकांश हिस्सों और दक्षिण पश्चिम तथा पश्चिम मध्य बंगाल की खाड़ी के कुछ हिस्सों, उत्तरी तमिलनाडु तट के आसपास और उससे दूर अगले दो दिन के दौरान तूफानी मौसम रहने की संभावना है। और अब खेल खबरों के साथ हैं मुकेश।
2: फीफा फुटबॉल विश्व कप का इतिहास लिखा जा चुका है। स्पेन ने दूसरी बार पुरुष फीफा विश्व कप अपने नाम कर लिया है। इस जीत के साथ स्पेन एक ही समय में पुरुष और महिला फुटबॉल विश्व कप विजेता पहला देश बन गया है। इस हार ने अर्जेंटीना और लियोनेल मेसी के शानदार दौर का भी अंत कर दिया है। 48 टीमों के साथ ये अब तक का सबसे बड़ा फीफा विश्व कप था। ये टूर्नामेंट अमरीका, कनाडा और मैक्सिको में खेला गया। और अगर बात करें पुरुष क्रिकेट की तो इंग्लैंड ने लंदन के लॉर्ड्स तीसरे और निर्णायक एक दिवसीय मैच में भारत को 27 रन से हराकर श्रृंखला 2-1 से जीत ली है। इंग्लैंड ने निर्धारित 50 ओवर में 3 विकेट पर 387 रन बनाए। भारतीय टीम 7 विकेट पर 360 रन ही बना सकी।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद का मॉनसून सत्र आज से शुरू। विपक्ष के हंगामे के कारण दोनों सदनों की कार्यवाही कई बार स्थगित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद के मॉनसून सत्र के सार्थक होने की उम्मीद जताई। सर्वोच्च न्यायालय में आज राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले की निष्पक्ष जांच की मांग करने वाली याचिकाओं पर सुनवाई होगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किशनौ में मोल्दोवा की राष्ट्रपति माया संधू के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत की। और मौसम विभाग ने उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश तथा जम्मू कश्मीर के कुछ हिस्सों में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। संसद का मॉनसून सत्र आज से शुरू हो गया है। सत्र के पहले दिन दोनों सदनों की कार्यवाही नीट परीक्षा पेपर लीक मामले पर विपक्ष के हंगामे के कारण लगातार बाधित हुई। राज्यसभा की कार्यवाही दिन भर के लिए जबकि लोकसभा की कार्यवाही 3 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। इससे पहले लोकसभा में विपक्षी सदस्य नीट परीक्षा पेपर लीक मामले पर लगातार अपना विरोध जताते रहे। पीठासीन अधिकारी दिलीप साइकिया ने निर्धारित कार्यसूची को आगे बढ़ाने का प्रयास किया, लेकिन विपक्षी सदस्यों ने अध्यक्ष की बात पर ध्यान न देते हुए अपना विरोध जारी रखा। आज सवेरे सदन की कार्यवाही शुरू होते ही सदस्यों ने हाल ही में दिवंगत हुए अपने 6 पूर्व सदस्यों को श्रद्धांजलि अर्पित की। सदन ने कतर के पूर्व अमीर शेख हमद बिन खलीफा अस्सानी को श्रद्धांजलि दी। प्रश्नकाल के दौरान कांग्रेस, समाजवादी पार्टी सहित विपक्षी सदस्यों ने नीट परीक्षा पेपर लीक का मुद्दा उठाया। अध्यक्ष ने विपक्ष से सदन की कार्रवाई चलने देने और सदन की मर्यादा बनाए रखने का आग्रह किया। राज्यसभा में भी ऐसी ही स्थिति देखने को मिली। नीट मुद्दे पर हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही लगातार बाधित हुई। विपक्षी सांसदों ने नीट पेपर लीक मामले को लेकर नारेबाजी की। सभापति सीपी राधाकृष्णन ने सदस्यों से गरिमा बनाए रखने और सदन की कार्यवाही चलने देने का आग्रह किया। हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि चाहे मॉनसून हो या मॉनसून सत्र, दोनों के सक्रिय रहने पर वे अत्यंत उत्पादक सिद्ध होते हैं। संसद के मॉनसून सत्र से पूर्व संवाददाताओं से बातचीत में श्री मोदी ने कहा कि महज एक महीने में देश ने अनेक उपलब्धियां हासिल की हैं जो प्रत्येक नागरिक को गौरवान्वित करती हैं। श्री मोदी ने सभी राजनीतिक दलों से सकारात्मक और सार्थक चर्चा का आग्रह किया।
1: हमारे सदन में बहुत अनुभवी सांसद भी हैं, दल उनका कोई भी हो, उनके पास एक लंबा अनुभव है। ऐसे समय में उनके अनुभव की, उनके ज्ञान की संसद को भी जरूरत है, देश को भी जरूरत है, और इसके लिए संसद का चलना, सार्थक चर्चा होना, ये मैं समझता हूँ कि बहुत ही समय की मांग है। एस्पिरेशन से भरे हुए देश के युवाओं की मांग है कि हम आगे बढ़े, राष्ट्रभक्ति के लिए जी रहे आवाज को सदन में उचित मंच मिलता रहे।
0: जनता दल यूनाइटेड के नेता संजय झा ने कहा कि विपक्ष को संसद में रचनात्मक मुद्दे उठाने चाहिए। विपक्ष को संसद को सुचारू रूप से चलने देना चाहिए। मॉनसून सत्र के पहले दिन संसद के बाहर आकाशवाणी से बातचीत में उन्होंने कहा कि सरकार ने एलपीजी, पेट्रोल और डीजल की निर्बाध उपलब्धता सुनिश्चित करते हुए कीमतों को नियंत्रण में रखकर सराहनीय काम किया है। संसद के मॉनसून सत्र के मद्देनजर नई दिल्ली में यातायात प्रतिबंध लागू किए गए हैं। सोशल मीडिया पर दिल्ली यातायात पुलिस ने कहा कि संसद परिसर और उसके आसपास भारी वाहनों की आवाजाही प्रतिबंधित रहने की संभावना है। लोगों को रफी मार्ग, मोतीलाल नेहरू मार्ग, मौलाना आजाद रोड, संसद मार्ग, अशोका रोड, तालकटोरा रोड, राजेंद्र प्रसाद रोड, जनपथ तथा आसपास के मार्गों से बचने की सलाह दी गई है। इस बीच दिल्ली पुलिस ने कुछ मीडिया चैनलों पर प्रसारित उन दावों का खंडन किया है जिनमें नई दिल्ली के जंतर मंतर पर कथित तौर पर बल प्रयोग और गिरफ्तारियों की बात कही गई है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में दिल्ली पुलिस ने स्पष्ट किया कि ऐसी कोई घटना नहीं हुई है और विरोध प्रदर्शन पूरी तरह से शांतिपूर्ण चलाने की कोशिश की जा रही है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपने 3 देशों के दौरे के पहले चरण के अंतर्गत मोल्दोवा गणराज्य में अपने कार्यक्रमों की शुरुआत की। उनको किशिनाव में स्थित राष्ट्रपति भवन में औपचारिक गार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया। राष्ट्रपति मुर्मू ने मोल्दोवा के राष्ट्रपति माया सांदू के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और राष्ट्रपति माया सांदू ने संयुक्त वक्तव्य जारी किया। इस अवसर पर राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि इस यात्रा से दोनों देशों के बीच संबंध और मजबूत हुए हैं। मौसम विभाग ने आज हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख और उत्तराखंड में तेज बारिश का रेड अलर्ट जारी

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। संसद का मॉनसून सत्र आज से शुरू हो गया है। सत्र के पहले दिन आज नीट परीक्षा के पेपर लीक मामले पर विपक्ष के विरोध के बीच दोनों सदनों की कार्यवाही कई बार स्थगित किए जाने के बाद कल तक के लिए स्थगित कर दी गई। राज्यसभा को आज के लिए स्थगित कर दिया गया। दोपहर 2:30 बजे पांचवीं बार स्थगन के बाद जब सदन की कार्यवाही फिर से शुरू हुई तो उपसभापति हरिवंश ने निर्धारित कार्यसूची को आगे बढ़ाने का प्रयास किया, लेकिन विपक्षी सदस्यों ने नारेबाजी की और अपना विरोध जारी रखा। हंगामे के बीच राज्यसभा को कल तक के लिए स्थगित कर दिया गया। आज सदन में नीट मुद्दे पर 6 बार स्थगन हुआ। निर्वाचित सदस्यों के शपथ ग्रहण के साथ शुरू हुई। बाद में सदन ने अपने पूर्व सदस्यों बलबीर के पुंज, स्वप्न दास साधन बोस, रंगसाई रामकृष्ण और एच हनुमंथप्पा को श्रद्धांजलि अर्पित की, जिनका अंतर सत्र के दौरान निधन हो गया था। विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने नीट परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक का मुद्दा उठाने का प्रयास किया, हालांकि हंगामे के कारण राज्यसभा सभापति सीपी राधाकृष्णन ने सदन को दोपहर 12 बजे तक, फिर 12:30 बजे तक और फिर 12:50 पर स्थगित कर दिया। दोपहर 2 बजे सदन की बैठक शुरू होने पर उपसभापति हरवंश ने सदन चलाने का प्रयास किया, लेकिन हंगामे के बीच सदन को पहले 2:30 बजे तक और फिर कल दिन में 11 बजे तक स्थगित कर दिया गया। इसी मुद्दे पर लोकसभा की बैठक भी दोपहर 3 बजे तक स्थगित कर दी गई। पांचवीं बार स्थगन के बाद दोपहर 2:30 बजे सदन की बैठक शुरू होने पर विपक्षी सदस्यों ने नीट मुद्दे पर अपना विरोध फिर से जारी रखा। हंगामे के बीच पीठासीन अधिकारी जगदम्बिका पाल ने सदन को दोपहर 3 बजे तक स्थगित कर दिया। दोपहर 1 बजे जब सदन फिर से शुरू हुआ तो विपक्षी सदस्यों ने इस मुद्दे पर अपना विरोध जारी रखा। पीठासीन अधिकारी दिलीप सैकिया ने निर्धारित कार्यवाही शुरू करने का प्रयास किया, लेकिन विपक्षी सदस्यों ने अध्यक्ष की सलाह नहीं मानी और अपना विरोध जारी रखा। हंगामे के बीच लोकसभा को दोपहर 2 बजे तक स्थगित कर दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि चाहे मॉनसून हो या मॉनसून सत्र, दोनों के सक्रिय रहने पर वे अत्यंत उत्पादक सिद्ध होते हैं। संसद के मॉनसून सत्र से पूर्व संवाददाताओं से बातचीत में श्री मोदी ने कहा कि महज 1 महीने में देश ने अनेक उपलब्धियां हासिल की हैं जो प्रत्येक नागरिक को गौरवान्वित करती हैं। श्री मोदी ने सभी राजनीतिक दलों से सकारात्मक और सार्थक चर्चा का आग्रह किया।
1: हमारे सदन में बहुत अनुभवी सांसद भी, दल उनका कोई भी हो, उनके पास एक लंबा अनुभव है। ऐसे समय में उनके अनुभव की, उनके ज्ञान की संसद को भी जरूरत है, देश को भी जरूरत है, और इसके लिए संसद का चलना, सार्थक चर्चा होना, ये मैं समझता हूँ कि बहुत ही समय की मांग है। एस्पिरेशन से भरे हुए देश के युवाओं की मांग है कि हम आगे बढ़े, राष्ट्रभक्ति के लिए जी रहे, आवाज को सदन में उचित मंच मिलता रहे।
0: सर्वोच्च न्यायालय आज अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले की निष्पक्ष और समयबद्ध जांच की मांग करने वाली याचिकाओं की सुनवाई करेगा। संसद के मॉनसून सत्र के मद्देनजर नई दिल्ली में यातायात प्रतिबंध लागू कर दिए गए हैं। सोशल मीडिया पर दिल्ली यातायात पुलिस ने कहा कि संसद परिसर और उसके आसपास भारी वाहनों की आवाजाही प्रतिबंधित रहने की संभावना है। लोगों को रफी मार्ग, मोतीलाल नेहरू मार्ग, मौलाना आजाद रोड, संसद मार्ग, अशोका रोड, तालकटोरा रोड, राजेंद्र प्रसाद रोड, जनपथ तथा आसपास के मार्गों से बचने की सलाह दी गई है। दिल्ली पुलिस ने विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर चल रही उन खबरों का खंडन किया है जिनमें दावा किया जा रहा है कि प्रदर्शनकारी अभिजीत दिपके को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। पुलिस ने सोशल मीडिया पोस्ट में स्पष्ट किया है कि आरोप पूरी तरह झूठे हैं। दिल्ली पुलिस ने कुछ मीडिया चैनलों पर प्रसारित उन दावों का खंडन किया है जिनमें नई दिल्ली के जंतर मंतर पर कथित तौर पर बल प्रयोग और गिरफ्तारियों की बात कही गई है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में दिल्ली पुलिस ने स्पष्ट किया कि ऐसी कोई घटना नहीं हुई है और विरोध प्रदर्शन पूरी

तरह से शांतिपूर्ण तरीके से चलाने की कोशिश की जा रही है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपने तीन देशों के दौरे के पहले चरण के अंतर्गत मोल्दोवा गणराज्य में अपने कार्यक्रमों की शुरुआत की। उनका किशिनोव स्थित राष्ट्रपति भवन में औपचारिक गार्ड ऑफ ऑनर से सम्मान किया गया। राष्ट्रपति मुर्मू ने मोल्दोवा के राष्ट्रपति माया संधू के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। मौसम विभाग ने आज हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख और उत्तराखंड में तेज बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। असम, मेघालय, बिहार, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, सिक्किम और उत्तर प्रदेश में आज तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1455555 पर कॉल करें।

वाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। संसद के मानसून सत्र के पहले दिन आज नीट परीक्षा पेपर लीक मामले पर विपक्ष के विरोध के बीच दोनों सदनों की कार्यवाही कई बार स्थगित किए जाने के बाद कल तक के लिए स्थगित कर दी गई है। सुबह 11 बजे जब लोकसभा की बैठक शुरू हुई तो हाल ही में दिवंगत हुए

0: छह पूर्व सदस्यों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। सदन ने कतर के फादर अमीर शेख हमद बिन खलीफा अल थानी को भी श्रद्धांजलि दी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि शेख हमद बिन खलीफा अल थानी ने भारत कतर संबंधों को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अध्यक्ष ने प्रश्नकाल शुरू करने का प्रयास किया तो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी सहित विपक्षी सदस्यों ने नीट परीक्षा के पेपर लीक का मुद्दा उठाया। श्री बिरला ने विपक्ष से सदन के संचालन में सहयोग करने और मर्यादा बनाए रखने का आग्रह किया, लेकिन विपक्षी दलों के सदस्यों ने अपना विरोध जारी रखा। विपक्षी सदस्यों का हंगामा जारी रहने के कारण लोकसभा की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित करनी पड़ी। राज्यसभा की कार्यवाही भी दिन भर के लिए स्थगित किए जाने से पहले कई बार स्थगित की गई। दोपहर 2:30 बजे पांचवीं बार स्थगन के बाद जब सदन की कार्यवाही शुरू हुई तो उपसभापति हरिवंश ने निर्धारित कार्यसूची को आगे बढ़ाने का प्रयास किया, लेकिन विपक्षी सदस्यों ने नारेबाजी की और अपना विरोध जारी रखा। हंगामे के बीच राज्यसभा को कल तक के लिए स्थगित कर दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि चाहे मानसून हो या मानसून सत्र, दोनों के सक्रिय रहने पर वे अत्यंत उत्पादक सिद्ध होते हैं। संसद के मानसून सत्र से पूर्व संवाददाताओं से बातचीत में श्री मोदी ने कहा कि महज एक महीने में देश ने अनेक उपलब्धियां हासिल की हैं जो प्रत्येक नागरिक को गौरवान्वित करती हैं। श्री मोदी ने सभी राजनीतिक दलों से सकारात्मक और सार्थक चर्चा का आग्रह किया।
1: मानसून हो या मानसून सत्र, अगर दोनों प्रोएक्टिव हो तो देश का कल्याण होता है, जीव मात्र का कल्याण होता है। साथियों, पिछले एक महीने में देश ने अनेक सिद्धियां प्राप्त की है और देशवासी गर्व से भर जाएं, इस प्रकार की सिद्धियों का सिलसिला चला है, चाहे राष्ट्रीय हो, अंतर्राष्ट्रीय हो और अब तो अंतरिक्ष भी हो, भारत के लिए गर्व के पल रहे हैं।
0: केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज नई दिल्ली में प्रदर्शनकारियों के प्रतिनिधियों से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने बताया कि प्रदर्शनकारियों की ओर से सरकार से बातचीत का प्रस्ताव आया था और सुबह 11:50 से इस पर चर्चा जारी है। श्री नड्डा ने कहा कि बैठक सौहार्दपूर्ण माहौल में पूर्ण हुई और उनके प्रतिनिधि मंडल के साथ प्रारंभिक चर्चा से विस्तार हुआ। प्रदर्शनकारियों ने शाम करीब 4:00 सरकार को एक लिखित याचिका सौंपी। श्री नड्डा ने सभी प्रदर्शनकारियों से धरना समाप्त करने और स्थिति सामान्य करने में प्रशासन का सहयोग करने का आयोग किया है। सर्वोच्च न्यायालय ने सॉलिसिटर जनरल को इस बारे में निर्देश प्राप्त करने को कहा है कि क्या अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावा के कथित गबन की जांच के लिए विशेष जांच समिति SIT की गठित की जा सकती है। न्यायालय ने संबंधित पक्षों से राम मंदिर चढ़ावा विवाद का राजनीतिकरण न करने को भी कहा है। सॉलिसिटर जनरल ने न्यायालय को बताया कि आरोपों की जांच के लिए SIT का गठन किया गया था और अब राज्य पुलिस इसकी जांच कर रही है। सर्वोच्च न्यायालय ने इस याचिका पर 27 जुलाई को फिर से सुनवाई करेगा, जब उत्तर प्रदेश सरकार मामले में SIT जांच के बारे में जानकारी देगी। पूर्व मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची और वी मोहन्ना की पीठ ने अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावा के कथित गबन की निष्पक्ष और समयबद्ध जांच की मांग करने वाली कई याचिकाओं पर सुनवाई की। नागर विमानन मंत्री किंजराप्पू राममोहन नायडू ने आज नई दिल्ली में संयुक्त अरब अमीरात की अर्थव्यवस्था और पर्यटन मंत्री अब्दुल्ला बिन तौक अल मरी से मुलाकात की। श्री नायडू ने कहा कि श्री अब्दुल्ला ने भारत के तेजी से बढ़ते विमानन क्षेत्र में सहयोग पर चर्चा की। इसमें रखरखाव, मरम्मत और संचालन तथा विनिर्माण पर विशेष ध्यान दिया गया। उन्होंने कहा कि मजबूत हवाई संपर्क लंबे समय से दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय साझेदारी का मजबूत आधार रहा है। सुरक्षा कारणों को देखते हुए एहतियात के तौर पर आज चार धाम की यात्रा कुछ समय के लिए स्थगित कर दी गई है। उत्तराखंड के कई जिलों में तेज बारिश की चेतावनी और चार धाम यात्रा मार्ग पर कई स्थानों पर भूस्खलन की खबरों के मद्देनजर तीर्थयात्रा को अस्थिर रूप से रोकने का निर्णय लिया गया। प्रशासन ने स्पष्ट किया कि यह फैसला तीर्थयात्रियों की सुरक्षा को लेकर लिया गया है। मौसम विभाग ने आज हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख और उत्तराखंड में तेज बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। असम, मेघालय, बिहार, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब, पश्चिम बंगाल के गंगाई क्षेत्र, सिक्किम और उत्तर प्रदेश में आज तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट है। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय अनुजा कुमार। Both houses of parliament witnessed multiple adjournments amid uproar by opposition parties over various issues, including the NEET paper leak case, on the first day of the monsoon session today. Later, the Lok Sabha and the Rajya Sabha were adjourned for the day. When the Lok Sabha

खूबसूरत एक शाम जो है क्लासिक्स के नाम। आप सुन रहे हैं चाय और क्लासिक्स, चाय और क्लासिक्स 100.1 FM गोल्ड पर। चाय और क्लासिक्स, चाय और क्लासिक्स 100.1 FM गोल्ड पर।

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबंधित प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात।
1: खूबसूरत एक शाम जो है क्लासिक्स के नाम, आप सुन रहे हैं चाय और क्लासिक्स। चाय और क्लासिक्स 100.1 FM गोल्ड पर। चाय और क्लासिक्स। चाय और क्लासिक्स 100.1 FM गोल्ड पर। FM गोल्ड पर।
2: अड़तालीस देश 39 दिन, मेजबान कनाडा, मेक्सिको और यूनाइटेड स्टेट्स के 16 शहरों में खेले गए फीफा वर्ल्ड कप की मैचेस की श्रृंखला में कल रात फाइनल मैच खेला गया और इतने दिनों से लगातार अपने प्रिय खिलाड़ियों का मैदान पर जलवा देखने की हमें आदत सी पड़ गई थी, है ना। कई दिग्गज प्लेयर्स का ये आखिरी वर्ल्ड कप रहा, CR7, नेमर, मॉड्रिक और सबके चहेते मेसी 4 साल बाद के विश्व कप में हमें नहीं दिखेंगे। इसीलिए क्या शायद इसीलिए आज आसमान इतना रोया, सच में कसम से कितनी देर से रो रहा है और थमने का नाम ही नहीं लेता। इतना रोया कि बस चारों तरफ पानी ही मानी है हमारे शहर में। तो ये जो पानी है क्या ये बेमानी है? नहीं, बिल्कुल नहीं। वही मतलब कितने सारे फैंस का जो दुख दर्द है वो चला गया आसमान के, वो जो बड़े बड़े जो तालाब हैं वहाँ पे जाके भरा और वहाँ से बस एकदम उंडेल दिया आसमान ने। लेकिन ये पानी बेमानी न होने पर भी निशानी है सावन की। और इससे पहले कि मैं और इधर उधर की बातें करके आपको मैं भटकाऊं, क्या ही कहूं, सावन के इस महीने की एकदम ये जो शुरुआती जो बरखा बहार है इसका बस आनंद ही उठाएं, जमने दीजिए पानी, क्या ही किया जाए। बस अपने दिल को इसी तरह से समझा लेना है कि इतनी बारिश जो हो रही है आखिर क्यों हो रही है और इससे अल्टीमेटली हमें फायदा ही है। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका चाय और क्लासिक्स लेकर। जैनिका है हाजिर और एकदम कार्यक्रम की शुरुआत में थोड़ा सा मन दुखा क्योंकि बहुत लोग चाह रहे थे कि मेसी एक बार फिर से जीत जाए, क्या ही किया जाए, संभव नहीं था। इस बार स्पेन ने एकदम जबरदस्त खेल का प्रदर्शन किया है कल, जिन्होंने भी देखा है मैच वो अग्री करेंगे कि एकदम वेल डिजर्व्ड था ये जो वर्ल्ड कप था जो कि पहुंचा स्पेन की गोद में। लेकिन फिलहाल यहाँ पर मेरे पास ढेर सारे गाने आपके लिए और आज का जो मौसम है एकदम उपयुक्त मौसम है। चाय और क्लासिक्स की बात हम करते हैं तो आप चाय और कॉफ़ी जो भी है आपके हाथ में या प्लानिंग कर रहे हैं कि अभी आप बनाएंगे जाकर किचन में चाय, या फिर रास्ते में हैं, घर की तरफ हैं, ऑफिस में हैं, तो बस चुस्कियाँ लीजिए, सिप्स लीजिए, आपके हाथ में जो गर्माहट है चाय या कॉफ़ी के प्याले की उसको महसूस कीजिए और हमारे साथ

चाय और क्लासिक्स में चैनिका के साथ आप जुड़े हुए हैं ओनली ऑन 100.1 एफएम गोल्ड कोलकाता। सबसे पहले चलिए जान लें कि आज ऐसे कौन से खास लोग हैं जो मना रहे हैं अपना जन्मदिन। आज पंडित सामता प्रसाद की जयंती है। सामता प्रसाद जी भारतीय शास्त्रीय संगीत जगत में गुदई महाराज के नाम से भी प्रसिद्ध हैं। सामता प्रसाद मिश्र का जन्म भारत के सबसे प्राचीन सांस्कृतिक शहर बनारस में हुआ था 1920 ईस्वी में, और आपने फिल्मों में भी अपनी कला का योगदान दिया। झनक झनक पायल बाजे, मेरी सूरत तेरी आंखें, बसंत बहार, शूरेरो पियाशी, औषमाप्तो, जौल शघर और नवाब वाजिद अली शाह और विश्वविख्यात फिल्म शोले में भी आपका ही तबला हमें सुनने को मिला है। अपने जीवन में कई मान सम्मानों से आपको सम्मानित किया गया, आपको पुरस्कृत किया गया। तबला का जादूगर आपको कहा जाता था। ताल मारतंड संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, हाफिज अली खान सम्मान के साथ पद्मश्री और पद्म भूषण से भी आपको नवाजा गया था। भावभीनी श्रद्धांजलि। आज बेहद प्रिय अभिनेता है मेरे, नसीरुद्दीन शाह, दिग्गज कलाकार, आपका जन्मदिन है। और हिंदी सिनेमा, विशेष रूप से अगर हम

पैरेलल फिल्म्स की बात करें, समानांतर और जो आर्ट फिल्म्स की अगर हम बात करें, तो आपका योगदान उत्कृष्ट रहा है। यूं तो कमर्शियल फिल्म्स में भी हमने एक से बढ़कर एक किरदार आपको निभाते हुए देखा है, और अपने शानदार करियर की शुरुआत आपने 70 के दशक से की, और उस समय की जो फिल्में याद आती हैं, स्पर्श आक्रोश, निशांत, मिर्च मसाला, और जिस तरह से आपको क्रिटिक्स ने सराहा, उसी तरह आपको लोकप्रियता भी हासिल हुई, जनता का प्यार भी आपको मिला। 3 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, 3 फिल्म फेयर पुरस्कार और वेनिस फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार भी आपको मिल चुका है, और भारतीय सिनेमा में आपके योगदान के लिए 1987 में पद्मश्री और साल 2003 में पद्म भूषण से भी आपको सम्मानित किया गया। और कुछ दिनों पहले आया है रिलीज्ड मैं वापस आऊँगा, जिन्होंने भी देखी है, मैं क्या ही कहूँ, मैंने देखी, बहुत बाद में देखी, किसी ने मुझे रेकमेंड की ये फिल्म, तो मैं गई देखने, और इतनी खूबसूरत फिल्म और उतना दमदार जानदार आपका अभिनय, मुझे लगा ही नहीं कि मैं नसीरुद्दीन शाह को देख रही हूँ स्क्रीन पर। आपको जन्मदिन की ढेर सारी बधाइयाँ। इसके अलावा एक और अभिनेत्री हैं, शेफाली शाह, वो भी दमदार अभिनेत्री, सिनेमा और ओटीटी दोनों ही तरफ आपका नाम जो है बेहद बेहद ऊंचा नाम, बहुमुखी भारतीय अभिनेत्री हैं, आपका भी आज जन्मदिन है, और आपको बहुत ही रियलिस्टिक कैरेक्टर्स निभाते हुए हमने देखा है। सत्या में आपने भीखू मात्रे की वाइफ की भूमिका निभाई थी, उससे आपको बहुत बड़ी पहचान मिली, और उसके बाद द लास्ट लेयर में आपने सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता। इसके अलावा भी कितनी सारी फिल्में हैं, ओटीटी पे फिल्में हैं, शॉर्ट फिल्म्स हैं, और मेन स्ट्रिप सिनेमा तो है ही। खैर, तो शेफाली शाह को भी जन्मदिन की ढेर सारी बधाइयाँ। और आज जो है ना, आज लगता है अभिनेताओं का ही दिन है, जुबली कुमार का भी आज जन्मदिन है, जयंती है राजेंद्र कुमार की, हिंदी सिनेमा के महान अभिनेता, जिन्हें हम जुबली कुमार के नाम से भी जानते थे, क्योंकि उनकी फिल्में सिनेमाघरों में लगातार 25 या 50 हफ्ते सिल्वर या गोल्डन जुबली तक चलती थीं। 1960 के दशक में उन्होंने कई सुपरहिट फिल्में दी और आपको पद्मश्री से नवाजा गया था। मदर इंडिया, मेरे महबूब, संगम, आरजू, ये सारी फिल्में हमें याद आती हैं, यहाँ क्या बेमिसाल काम आपने किया, और वैसे ही गाने आपको मिला करते थे, बाय गॉड इतने अच्छे अच्छे गाने आपको मिले, उन गानों पर आपने परफॉर्म किया, एकदम जस्टिस किया, मैं ये कहना चाहूँगी। एक गाना अभी मेरी पसंद का मैं सुनवाऊँ मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में, फिल्म का नाम झुक गया आसमां, टाइटल ट्रैक फिल्म का आप सबके लिए।

100.1 FM गोल्ड प्रेजेंट्स परियोजना प्रस्तुति, परियोजना प्रस्तुति सरकारी उद्यम तरक्की समाज की परियोजना प्रस्तुति, परियोजना प्रस्तुति। परियोजना प्रस्तुति के अंतर्गत आज हम बात करेंगे पोषण अभियान की। पोषण अभियान का शुभारंभ माननीय प्रधानमंत्री द्वारा 8 मार्च 2018 को राजस्थान के झुंझुनू जिले में किया गया था। पोषण अभियान जन आंदोलन भारत सरकार की एक राष्ट्रीय योजना है, जिसका लक्ष्य बच्चों, किशोरियों, गर्भवती और स्तनपान कराने वाली माताओं में समग्र पोषण में सुधार करना है, जिसमें समुदाय की भागीदारी को बढ़ावा दिया जाता है। इस अभियान के तहत कुपोषण, एनीमिया, बौनापन और कम जन्म वजन जैसी समस्याओं को कम करने के लिए प्रौद्योगिकी, विभिन्न मंत्रालयों के बीच समन्वय और जन आंदोलन पर जोर दिया जाता है। समुदाय आधारित गतिविधियों और जागरूकता अभियानों के माध्यम से व्यवहार परिवर्तन लाकर लोगों को पोषण से जुड़े मुद्दों पर जागरूक किया जाता है। पिछले 8 वर्षों की अगर बात करें तो पोषण अभियान ने कोऑर्डिनेशन, डिजिटल निगरानी और सामुदायिक सहभागिता को देश के पोषण संबंधी ढांचे में शामिल किया है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के तहत ये जो अभियान है ये संचालित होता है और 26 से अधिक मंत्रालयों

0: और विभागों को एक एकीकृत पोषण ढांचे में साथ ले आता है। इस बात पर जोर डाला जाता है कि कुपोषण का समाधान केवल हेल्थ सेक्टर या खानपान में ही निहित नहीं है, इसके लिए स्वच्छता, शिक्षा, जल, महिला सशक्तिकरण और आय जैसे क्षेत्रों में भी कार्य करने की आवश्यकता है। प्रत्येक महीने आंगनवाड़ी केंद्रों पर पोषण और स्वास्थ्य से जुड़े संदेशों को लेकर सामुदायिक गतिविधियां आयोजित की जाती हैं। लोगों में अवेयरनेस बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय पोषण माह और पोषण पखवाड़ा जैसे विशेष अभियानों का आयोजन किया जाता है। सूचना, शिक्षा और संचार गतिविधियों के माध्यम से लोगों के व्यवहार में एक पॉजिटिव बदलाव लाने का प्रयास किया जाता है, जिससे पोषण संबंधी स्वास्थ्य व्यवहार को बढ़ावा मिल सके। जनसंवाद और सक्रिय सामुदायिक भागीदारी के माध्यम से पोषण संबंधी एजेंडे को लोगों के बीच लाना भी इस अभियान का उद्देश्य है। गर्भधारण से लेकर बच्चे के दूसरे जन्मदिन तक के शुरुआती 1000 दिन माता और शिशु दोनों के लिए पोषण और स्वास्थ्य देखभाल सुनिश्चित करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और दीर्घकालिक स्वास्थ्य और विकास की नींव रखते हैं। तो भारत सरकार पोषण और समग्र कल्याण में सुधार के लिए महत्वपूर्ण साक्ष्य आधारित हस्तक्षेपों की पहुंच का विस्तार और संवर्धन करने के लिए प्रतिबद्ध है। यह स्वास्थ्य, पोषण और समग्र विकास पर केंद्रित विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों के एकीकरण के माध्यम से प्राप्त किया जाता है। पोषण अभियान भारत में कुपोषण के विरुद्ध लड़ाई में एक ऐतिहासिक पहल है। मेरे प्यारे श्रोताओं, इस कार्यक्रम ने मातृ एवं शिशु पोषण में सुधार की दिशा में उल्लेखनीय प्रगति की है।
1: 100.1 FM गोल्ड प्रेजेंट्स परियोजना प्रस्तुति सरकारी उद्यम तरक्की समाज की परियोजना प्रस्तुति।
2: खूबसूरत एक शाम जो है क्लासिक्स के नाम। आप सुन रहे हैं चाय और क्लासिक्स 100.1 FM गोल्ड पर। चाय और क्लासिक्स 100.1 FM गोल्ड पर।

सुन रहे हैं आप चाय और क्लासिक्स, चयनिका के साथ ओनली ऑन एफएम गोल्ड कोलकाता। आज एक और बड़ा ही खास दिन है, लेकिन उससे पहले ये जो गाना हमने सुना इसके बारे में चंद बातें मैं जरूर आपसे शेयर करना चाहती हूँ। किनारा फिल्म का ये गीत राहुल देव बर्मन ने संगीत दिया था इस फिल्म के लिए, और गीत लिखे थे गुलजार ने, उन्हीं की निर्देशित ये फिल्म थी। और ये जो दूसरे अंतरे में ना, जब वो दिन ढल जाए रात ना जाए, वो वाला जो मतलब वो घूम कर वापस दिन ढल जाए बोलती हैं लता मंगेशकर, और इस गीत की यानी गाइड के इस गीत की याद आती है वहाँ पर ले जाके, आपको वो एक देजा वू वाला एक एहसास कराती है, फिर लौट कर ये जो ओरिजिनल कॉम्पोजिशन है वहाँ पर ये जो धुन है जो शब्द है वो लौट आते। इतनी खूबसूरती है इस दूसरे अंतरे में, मुझे लगता है मैं जितनी बार ये गाना सुनती हूँ लूप पर लगता है चलाऊं और ये दूसरा अंतरा बार बार ध्यान से सुनूं, और इतनी खूबसूरती से पंचम ने अपने पिता की कॉम्पोजिशन को यहाँ पर, क्योंकि वो शब्द जो है वो सिमिलर कॉमन है उस जगह का जो फ्रेज़ है, तो उसको कैसे उन्होंने इस्तेमाल किया है, इतनी बखूबी उसको समाहित किया है, सच में मैं जितनी बार सुनती हूँ मैं बस सुनती ही रह जाती हूँ, शब्द नहीं होते मेरे पास। पाँच बजकर 48 मिनट और 40 सेकंड से एकदम सही समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में। और हाँ, अब बताऊँ कौन सा खास दिन है आज। आज है अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस, इंटरनेशनल चेस डे, हर साल 20 जुलाई को मनाया जाता है, और 1924 में पेरिस में अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ यानी FIDE का हम जानते हैं नाम ये, तो इसकी स्थापना हुई थी। और ये जो दिन है ये इंटरनेशनल चेस डे, इसी दिन की याद दिलाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने 2019 में इस दिन को आधिकारिक मान्यता दी थी। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि शतरंज की शुरुआत तो हमारे देश में हुई थी, भारत में गुप्त काल के दौरान इसकी शुरुआत हुई, और प्राचीन काल में इसे क्या कहा जाता था, क्विज खेलें? नहीं, बता देती हूँ मैं, क्विज तो खेलेंगे नहीं अभी फिलहाल, चतुरंग कहा जाता था। और व्यापार और यात्रा के माध्यम से ये जो खेल है ये फारस और उसके बाद पूरे यूरोप में फैल गया। हमारे देश ने कितना कुछ दिया है ना दुनिया को, मतलब हम गिनकर ख़त्म नहीं कर सकते, इतनी सारी चीज़ें हमारा कंट्रीब्यूशन, मतलब सच में कहते ना वो गोट किस्म की फीलिंग आती है। भारत तो अपना जो है, हमारा जो इंडिया है ये तो अलग ही है, अलग ही है। तो शतरंज हमारे देश से पूरे विश्व में फैला, और अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ ने FIDE ने 20 जुलाई 1924 को काम करना शुरू किया था, और इसी की याद में 1966 से ये दिन जो है खास दिन मनाया जा रहा है पूरी दुनिया में, आज के दिन यानी 20 जुलाई को। अच्छा, क्या आप शतरंज खेलते हैं? फिर तो आपकी याददाश्त बहुत तेज़ है, याददाश्त तेज है, डिसीजन मेकिंग और स्ट्रेटेजी बनाने में आप माहिर हैं। मैं नहीं कह रही, ऐसा कहते हैं लोग जो चेस खेलते हैं उनके अंदर ये क्वालिटीज जो होती हैं ये कूट कूट कर भरी होती हैं, तो इसलिए आप खुद तक सीमित मत रखिए ये जो स्किल है, दूसरों को भी सिखाइए ये खेल, ताकि फोन से आंखें हटें, हर समय फोन की तरफ देखते हुए बस स्क्रोलिंग किए जाते हैं, चेस खेलिए। ज़्यादातर लोगों का जो पास टाइम है आज वो बदल जाना चाहिए, फ़ोन के बजाय गेम्स में खुद को एंगेज कीजिए। और चेस तो ऐसी चीज़ है, याद है ना शतरंज के खिलाड़ी, एक बार आपका मन अगर लग गया ना तो फिर आप कुछ भी हो जाए, भूकंप आ जाए, धरती जो है जलजला हो जाए, आसमान

गिर जाए जमीन पर, तब भी आप हटेंगे नहीं वहां से, चेसबोर्ड पर ही बैठे रहेंगे। फिलहाल आप सबके लिए एक और खूबसूरत सा गीत। क्लासिक्स की शाम होती है रोजाना एफएम गोल्ड पर, और आज भी वही शाम है। आज मौसम थोड़ा सा रुमानी सा, बारिश वाला, तो वहाँ पर कभी कभी ऐसे कुछ बरसेंगी अखियाँ जैसे गाने भी आएंगे और कुछ रुमानी गाने भी आएंगे। तो लता मंगेशकर की आवाज़ में आप सबके लिए ये वाला आए दिन बहार की फिल्म का मस्त गाना, बहुत खूबसूरत गीत है, सुनते रहें, साथ रहें।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 24 जुलाई तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात।

0: खूबसूरत एक शाम जो है क्लासिक्स के नाम। आप सुन रहे हैं चाय और क्लासिक्स, चाय और क्लासिक्स 100.1 FM गोल्ड पर। चाय और क्लासिक्स, चाय और क्लासिक्स 100.1 FM गोल्ड पर, FM गोल्ड पर।
1: चैनिका के साथ आप सुन रहे हैं चाय और क्लासिक्स, और एकदम पहले भाग के अंतिम पड़ाव पर हम पहुंच चुके हैं। शाम 6 बजे से आप सुन सकते हैं समाचार, जिसे हम दिल्ली से रिले करते हैं, आपको सुनवाते हैं, और मैं लौटूंगी लेकर कार्यक्रम चाय और क्लासिक्स का दूसरा भाग शाम 6:20 पर। 10 मिनट का रहेगा मेरा और आपका साथ, लेकिन फिर भी वहाँ ज़रूर बनेगी हमारी बात, क्योंकि होगा क्लासिक्स का खूबसूरत खूबसूरत साथ हमारे साथ। इसलिए आप लोग फिलहाल मेरे साथ बने रहिए FM गोल्ड कोलकाता पर। खबरों के बाद, विश्लेषण के बाद मैं लौटूंगी 6:20 पर। स्टे ट्यून्ड, सुनते रहें।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। संसद के मॉनसून सत्र के पहले दिन आज नीट परीक्षा पेपर लीक मामले पर विपक्ष के विरोध के बीच दोनों सदनों की कार्यवाही कई बार स्थगित किए जाने के बाद कल तक के लिए स्थगित कर दी गई। इससे पहले दिन में 11 बजे जब लोकसभा की बैठक शुरू हुई तो हाल ही में दिवंगत हुए 6 पूर्व सदस्यों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। सदन ने कतर के फादर अमीर शेख हमद बिन खलीफा अस्सानी को भी श्रद्धांजलि दी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि शेख हमद बिन खलीफा अस्सानी ने भारत कतर संबंधों को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अध्यक्ष ने प्रश्नकाल शुरू करने का प्रयास किया तो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी सहित सभी विपक्षी सदस्यों ने नीट परीक्षा के पेपर लीक का मुद्दा उठाया। श्री बिरला ने विपक्ष से सदन के संचालन में सहयोग करने और मर्यादा बनाए रखने का आग्रह किया, लेकिन विपक्षी सदस्यों ने अपना विरोध जारी रखा। पीठासीन अधिकारी दिलीप सैकिया ने सदन को सुचारू रूप से चलाने का प्रयास करते हुए कहा कि सदन में स्वस्थ बहस होनी चाहिए। विपक्षी सदस्यों ने अध्यक्ष की सलाह पर ध्यान नहीं दिया। विपक्ष के हंगामे के कारण लोकसभा की कार्यवाही दिनभर के लिए स्थगित कर दी गई। राज्यसभा की कार्यवाही भी दिनभर के लिए स्थगित किए जाने से पहले कई बार स्थगित की गई। दोपहर 2:30 बजे पांचवी बार स्थगन के बाद जब सदन की कार्यवाही फिर से शुरू हुई तो उपसभापति हरवंश ने निर्धारित कार्यसूची को आगे बढ़ाने का प्रयास किया, लेकिन विपक्षी सदस्यों ने नारेबाजी की और अपना विरोध जारी रखा। हंगामे के बीच राज्यसभा को कल तक के लिए स्थगित कर दिया गया। केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज नई दिल्ली में प्रदर्शनकारियों के प्रतिनिधियों से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने बताया कि बैठक में प्रतिनिधिमंडल के साथ विस्तार से चर्चा हुई। श्री नड्डा ने सभी प्रदर्शनकारियों से धरना समाप्त करने और स्थिति सामान्य करने में प्रशासन का सहयोग करने का आग्रह किया। इस बीच दिल्ली पुलिस ने सभी प्रदर्शनकारियों से शांति, संयम और सार्वजनिक व्यवस्था सुनिश्चित करने में पुलिस का सहयोग करने की अपील की है। वीडियो संदेश में दिल्ली पुलिस के अपर आयुक्त और जनसंपर्क अधिकारी राजीव रंजन ने प्रदर्शनकारियों से शांतिपूर्ण व्यवहार करने, किसी भी गैर कानूनी और हिंसक गतिविधियों में शामिल न होने और ड्यूटी पर तैनात पुलिस अधिकारियों तथा कर्मियों द्वारा जारी किए गए कानूनी निर्देशों का पालन करने का आग्रह किया। उन्होंने जनता को किसी भी मंच के माध्यम से अफवाहों, गलत सूचनाओं पर विश्वास न करने और न ही उन्हें फैलाने की सलाह दी। उच्चतम न्यायालय ने सॉलिसिटर जनरल को यह निर्देश प्राप्त करने को कहा है कि क्या अयोध्या राम मंदिर में दान के कथित गबन की जांच के लिए एक विशेष जांच दल का गठन किया जा सकता है। न्यायालय ने संबंधित पक्षों से राम मंदिर चढ़ावा विवाद का राजनीतिकरण न करने को भी कहा है। न्यायालय ने यह भी कहा कि उसका काम सिर्फ उचित जांच सुनिश्चित करना है। सॉलिसिटर जनरल ने न्यायालय को बताया कि आरोपों की जांच के लिए SIT का गठन किया गया था और अब राज्य पुलिस इसकी जांच कर रही है। सर्वोच्च न्यायालय इस याचिका पर 27 जुलाई को फिर से सुनवाई करेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और मोल्दोवा की राष्ट्रपति माया सांडू ने आज व्यापार, निवेश, कृषि, स्वास्थ्य, नवीकरणीय ऊर्जा, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और नवाचार सहित कई क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने पर सहमति जताई। राष्ट्रपति मुर्मू ने किशिनो में प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के बाद संयुक्त प्रेस वक्तव्य में कहा कि यह यात्रा ऐतिहासिक है क्योंकि किसी भारतीय राष्ट्रपति की मोल्दोवा की यह पहली राजकीय यात्रा है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि उनके इस यात्रा के दौरान आयोजित भारत मोल्दोवा बिजनेस फोरम आर्थिक सहयोग को नई दिशा देगा। विधि विभाग द्वारा आयोजित ब्रिक्स अभियोजन सेवा प्रमुखों की 8वीं बैठक आज से हो रही है। 2 दिन की वर्चुअल बैठक भारत के ब्रिक्स के व्यापक दृष्टिकोण, लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण को आगे बढ़ाती है। जम्मू कश्मीर में मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने राजौरी और पुंछ जिलों में बारिश की घटनाओं में मरने वालों के परिजनों को तत्काल सहायता के रूप में 6-6 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने अचानक आई बाढ़, भूस्खलन और बारिश की घटनाओं में हुई जानमाल की हानि पर गहरा शोक व्यक्त करते हुए कहा कि सरकार इस मुश्किल समय में लोगों के साथ है। सुरक्षा कारणों को देखते हुए एहतियात के तौर पर आज चार धाम यात्रा कुछ समय के लिए स्थगित कर दी गई है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashwani. The news read by Anuja Kumar. Both Houses of Parliament witnessed multiple adjournments on the first day of the monsoon session today, following uproar by opposition parties over various issues, including the NEET paper leak case. The Lok Sabha and the Rajya Sabha were later

0: जन आंदोलन बनाने के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने 4 जुलाई से 4 अगस्त 2026 तक कैच द रेन अभियान को नई गति दी।
1: जल संचय तो करना ही करना है, बारिश के पानी की एक एक बूंद को हमें बचाना है। कैच द रेन ये अभियान जरा भी ढीला नहीं होने देना है। तो मेरा खास आग्रह है, वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं।
0: जल संरक्षण को लेकर पिछले कुछ वर्षों में देश में लगातार व्यापक प्रयास किए गए हैं। कैच द रेन अभियान भी इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है, जिसके माध्यम से वर्षा जल संचयन को जन भागीदारी के साथ जोड़ते हुए जल सुरक्षा को और मजबूत बनाने का प्रयास किया जा रहा है। आज के कार्यक्रम में जानेंगे कि इस अभियान का उद्देश्य क्या है, ये समय के साथ किस तरह विकसित हुआ और देश में जल संरक्षण को नई गति देने में इसकी क्या भूमिका है। श्रोताओं, पिछले कुछ वर्षों में कैच द रेन अभियान ने जल संरक्षण को एक व्यापक जन आंदोलन का स्वरूप देने का प्रयास किया है। अब ये केवल वर्षा जल संचयन तक सीमित नहीं है, बल्कि भूजल पुनर्भरण, पारंपरिक जल स्रोतों के पुनर्जीवन और स्थानीय स्तर पर जन भागीदारी को भी इसके साथ जोड़ा गया है। आइए अब विस्तार से समझते हैं कि इस अभियान के अंतर्गत देश भर में किस तरह के कार्य किए जा रहे हैं और जल संरक्षण को मजबूत बनाने के लिए किन किन उपायों पर विशेष जोर दिया जा रहा है।
2: वर्षा जल संरक्षण के सोच के साथ 22 मार्च 2021 विश्व जल दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कैच द रेन अभियान की शुरुआत की थी। इसका संदेश था, कैच द रेन वेयर इट फॉल्स व्हेन इट फॉल्स, यानी जहां और जब भी बारिश हो उसे वहीं संजोएं। इस अभियान की शुरुआत वर्ष 2019 में शुरू किए गए जल शक्ति अभियान के अनुभवों के आधार पर की गई थी। उस समय देश के 256 जिलों के 1592 जल संकट ग्रस्त ब्लॉकों में वर्षा जल संरक्षण, भूजल पुनर्भरण, जलागम विकास, जलाशयों के पुनर्जीवन और वृक्षारोपण जैसे कार्यों पर विशेष ध्यान दिया गया था। इसके बाद हर वर्ष अभियान को नई थीम और नए फोकस के साथ आगे बढ़ाया गया। वर्ष 2021 में वर्षा जल संचयन और जल संरक्षण पर जोर दिया गया। जल स्रोतों की जियो टैगिंग, वैज्ञानिक योजना और जन जागरूकता अभियान चलाए गए। इसके बाद 2022 में पारंपरिक जल स्रोतों के पुनर्जीवन, भूजल पुनर्भरण, आर्द्र भूमि और नदियों के संरक्षण जैसे कार्यों को प्राथमिकता दी गई। साल 2023 में अभियान का मुख्य उद्देश्य पेयजल स्रोतों को टिकाऊ बनाना और जल संकट वाले 150 जिलों में भूजल संरक्षण को मजबूत करना रहा। वहीं 2024 में अभियान की थीम रही नारी शक्ति से जल शक्ति। इस दौरान महिलाओं की भागीदारी से जल स्रोतों की सफाई, तालाबों की गाद निकालने, बंद बड़े बोरवेलों को भूजल पुनर्भरण के लिए उपयोग में लाने और स्थानीय जल स्रोतों के संरक्षण जैसे अनेक कार्य किए गए। समय के साथ सरकार ने महसूस किया कि केवल सरकारी योजनाओं से जल संरक्षण का लक्ष्य पूरा नहीं किया जा सकता, इसके लिए समाज की भागीदारी भी उतनी ही जरूरी है। इसी सोच के साथ 6 सितंबर 2024 को गुजरात के सूरत से जल संचय जन भागीदारी 1.0 की शुरुआत की गई। इस पहल का आधार 3 महत्वपूर्ण सिद्धांत रखे गए, कम्युनिटी, CSR और कॉस्ट, यानी समुदाय की भागीदारी, संस्थागत सहयोग और कम लागत वाले स्थानीय समाधान। इस अभियान के तहत कम लागत वाले भूजल पुनर्भरण ढांचे तैयार किए गए, बंद पड़े बोरवेलों को फिर से उपयोग में लाया गया और स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार जल संरक्षण के उपाय अपनाए गए। इसका लक्ष्य कम से कम 10 लाख भूजल पुनर्भरण संरचनाओं का निर्माण करना था, लेकिन 1 अप्रैल 2024 से 31 मई 2025 के दौरान देश भर में 27 लाख से अधिक कृत्रिम भूजल पुनर्भरण संरचनाएं तैयार किए गए। इस सफलता के बाद 1 जून 2025 को जल संचय जन भागीदारी 2.0 शुरू किया गया। इस बार विशेष ध्यान उन जिलों पर दिया गया जहां भूजल का दोहन अधिक हो चुका है या जहां स्थिति गंभीर मानी जाती है। इस चरण में 31 मई 2026 तक कम से कम 1 करोड़ भूजल पुनर्भरण संरचनाएं बनाने का लक्ष्य रखा गया था। इसके मुकाबले देश भर में 1.5 करोड़ से अधिक संरचनाएं बनाए जाने की सूचना मिली है, जो निर्धारित लक्ष्य से 50% से अधिक है। हालांकि इन संरचनाओं का भौतिक सत्यापन और वैलिडेशन अभी किया जा रहा है। अब इसी अभियान को और व्यापक रूप देते हुए कैच द रेन की शुरुआत की गई। इसमें जल संचय जन भागीदारी और कैच द रेन को एक साथ जोड़ते हुए वर्षा जल संचयन, भूजल पुनर्भरण, जल संग्रहण और जन भागीदारी को मजबूत बनाने का प्रयास किया जा रहा है।
0: श्रोताओं, किसी भी अभियान की सफलता केवल उसके उद्देश्य से नहीं बल्कि उसके जमीनी प्रभाव और लोगों की भागीदारी से तय होती है। यही वजह है कि कैच द रेन अभियान को केवल सरकारी योजनाओं के रूप में नहीं बल्कि एक जन आंदोलन के रूप में आगे बढ़ाया जा रहा है। आइए अब समझते हैं कि कैच द रेन अभियान में जन भागीदारी की क्या भूमिका है और इसे प्रभावी बनाने

0: के लिए कौन कौन से प्रयास किए जा रहे हैं।
1: इस अभियान में पंचायती राज संस्थाओं, शहरी स्थानीय निकायों, महिला समूहों, युवा संगठनों, शैक्षणिक संस्थानों, स्वयंसेवी संगठनों और स्थानीय समुदाय को सक्रिय रूप से जोड़ा जा रहा है। इसका उद्देश्य यह है कि जल संरक्षण केवल सरकारी कार्यक्रम न रहकर समाज की साझा जिम्मेदारी बने। अभियान के तहत लोगों से अपने घरों, आवासीय परिसरों और कार्यस्थलों पर वर्षा जल संचयन प्रणाली अपनाने की अपील की गई है। साथ ही जहां संभव हो रिचार्ज पेट और रिचार्ज शाफ्ट बनाए जाएं, बंद पड़े वेलों को भूजल पुनर्भरण के लिए उपयोग में लाया जाए, तालाबों और जलाशयों से गाद हटाकर उनकी जल संग्रहण क्षमता बढ़ाई जाए तथा जल संरक्षण वाले क्षेत्रों में अधिक से अधिक वृक्षारोपण किया जाए। इन छोटे छोटे प्रयासों को मिलाकर बड़े स्तर पर जल संरक्षण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। इस अभियान का एक और महत्वपूर्ण पहलू यह है कि इसे केवल एक विभाग तक सीमित नहीं रखा गया है। जल संरक्षण से जुड़ी विभिन्न केंद्रीय और राज्य सरकार की योजनाओं को एक साथ जोड़कर काम किया जा रहा है। इससे उपलब्ध संसाधनों का बेहतर उपयोग हो सकेगा और अलग अलग योजनाओं के बीच बेहतर समन्वय भी स्थापित होगा। अभियान के तहत विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत पर ड्रॉप मोर क्रॉप तथा जलाशयों की मरम्मत, नवीनीकरण और पुनर्स्थापन कैंपा, वित्त आयोग अनुदान और विभिन्न राज्य सरकारों की योजनाओं को एक साथ जोड़ा गया है। इससे जल संरक्षण के कार्यों को व्यापक स्तर पर आगे बढ़ाने में मदद मिल रही है। अभियान को मजबूत बनाने में जल शक्ति केंद्रों की भी महत्वपूर्ण भूमिका है। देश के विभिन्न जिलों में स्थापित ये केंद्र जल संरक्षण से जुड़ी जानकारी उपलब्ध कराते हैं, स्थानीय प्रशासन और समुदायों को तकनीकी मार्गदर्शन देते हैं तथा जल संरक्षण गतिविधियों की योजना और क्रियान्वयन में सहयोग करते हैं। इससे लोगों तक वैज्ञानिक जानकारी पहुंचाने और स्थानीय स्तर पर बेहतर योजना बनाने में सहायता मिल रही है। समाचार कक्ष, विशेष शुक्ला।
0: श्रोताओं, कैच द रेन अभियान की एक महत्वपूर्ण विशेषता ये है कि इसमें सरकार और समाज दोनों की साझी भागीदारी पर विशेष जोर दिया गया है। जल संरक्षण को जन आंदोलन बनाने की इसी सोच के अंतर्गत विभिन्न विभागों, स्थानीय संस्थाओं और आम नागरिकों को एक साथ जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। इस विषय पर आकाशवाणी से साप्ताहिक कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में श्रोताओं के सवालों का जवाब देते हुए जल शक्ति मंत्रालय के राष्ट्रीय जल मिशन के संयुक्त सचिव सुमंत नारायण ने अभियान में जन भागीदारी और सरकार के दृष्टिकोण के महत्व पर विस्तार से चर्चा की। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा।
2: हमारे माननीय प्रधानमंत्री का ये मोटो है कि कैसे सरकार के सभी अंग होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच से अडॉप्ट करके बनाए, उसी के अंतर्गत अमृत सरोवर या अटल भूजल योजना, एक एक सरकार का अंग ये कंट्रीब्यूट कर रहा है कि बड़े सरोवर बने, कहीं पे भूजल डायरेक्ट इंजेक्शन वेल से चला जाए, किसी और स्कीम के अंतर्गत अगर रिचार्ज पिट बन जाए, या अगर मैं होल ऑफ सोसाइटी की बात करूं तो अगर मैं रायपुर का एग्जांपल दूं तो वहां पे इंडस्ट्री एसोसिएशन ने म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के साथ मिलकर रिचार्ज स्ट्रक्चर्स बनवाए। इस तरह में एग्जांपल्स देश भर में अनगिनत एग्जांपल्स हैं जो जन भागीदारी होती जा रही है, मगर अभी रास्ता लंबा है। हम सबको अपना और अपने बच्चों का भविष्य इस मिशन को सक्सेसफुल बनाने के लिए सुदृढ़ करना आवश्यक।
0: श्रोताओं, ये स्पष्ट है कि कैच द रेन अभियान केवल वर्षा जल संचयन का कार्यक्रम नहीं है, ये जल संरक्षण को जन आंदोलन बनाने का एक व्यापक प्रयास है। पिछले कुछ वर्षों में जल शक्ति अभियान से लेकर जल संचय, जन भागीदारी और अब कैच द रेन तक की यात्रा यह दिखाती है कि सरकार जल संरक्षण को लेकर एक योजना के रूप में नहीं बल्कि लोगों की भागीदारी से जुड़े राष्ट्रीय अभियान के रूप में आगे बढ़ रही है। इसके साथ ही आज के विश्लेषण में बस इतना ही। नमस्कार। इस कार्यक्रम को तैयार किया है हमारे सहयोगी अनिकेत ने, तकनीकी सहयोग अलका सिंह।

0: सुन रहे हैं आप चाय और क्लासिक्स, और देखते ही देखते कार्यक्रम एकदम अपनी समाप्ति की कगार पर पहुंच चुका है। बस एक और क्लासिक और मेरा और आपका साथ आज के लिए छूट जाएगा, लेकिन कोई बात नहीं, फिर दोबारा मिलने में तभी आ पाऊंगी जब आज जाऊंगी। जाते जाते आपको बताऊं कुछ लोकल इवेंट्स के बारे में, अगर आप चाहें तो इनका हिस्सा बन सकते हैं। 25 जुलाई को शेक्सपियर सरणी एल्गिन स्थित एक कैफे में शिबोरी आर्ट वर्कशॉप का आयोजन किया जाएगा। इसके अलावा 25 जुलाई से ही एरी ब्लॉक सॉल्ट लेक के एक कैफे में पॉटरी वर्कशॉप का आयोजन किया जा रहा है, जो मल्टीपल स्लॉट्स में आयोजित किया जाएगा और अलग अलग दिन, तो इसकी भी आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और अगर चाहें, अगर आपको इंटरेस्ट है, तो आप शिबोरी वर्कशॉप ज्वाइन कीजिए या फिर पॉटरी का अगर शौक रखते हैं तो यहाँ भी आप जा सकते हैं। तो चलिए फाइनली टाटा बाय बाय कहने का समय आ गया है, तो कह देते हैं ये वो चंद अल्फाज हैं जो अपने आप में बेहद खूबसूरत हैं, क्योंकि फिर से दोबारा मिलने का वादा जो है वो इन्हीं में छिपा हुआ है। आप सबके लिए एक युगल गाना मुकेश और लता मंगेशकर की आवाज में, सुनते रहे साथ रहे एफएम गोल्ड कोलकाता।
1: सावन का महीना पवन करे शोर,
2: सावन का महीना पवन करे शोर,
1: पवन करे शोर,
2: पवन करे शोर।
3: अरे बाबा, शोर नहीं, शोर शोर शोर।

0: but do remember that we don't address stock or company specific queries. You can call us on our telephone numbers 2331-4444, 2331-0481 and 2371-7106. And of course, do not forget to prefix 011 before these numbers if you are calling from out of Delhi or from your mobile phone. Well, my name is Nishit Kumar and with me is my co-anchor in Hindi, Prachi Priya.
1: Namaskar, Market Mantra mein aapka abhinandan. Shrotaon, har somvar ki tarah aaj bhi hum aapke prashnon ko seedhe karyakram mein shamil karenge. Vyapar, arthvyavastha aur share bazaar se juda koi bhi prashn poochne ke liye aap dial kijiye 2331-4444, 2331-0481 aur 2371-7106 पर दिल्ली से बाहर के श्रोता इन नंबरों से पहले दिल्ली का एसटीडी कोड 011 भी डायल करें लेकिन याद रखें कि हम किसी खास शेयर या कंपनी से जुड़े सवालों के जवाब इस कार्यक्रम में नहीं दे पाएंगे श्रोताओं चर्चा के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में आमंत्रित है अर्थव्यवस्था पर विशेष पत्रकारिता करने वाले वरिष्ठ पत्रकार शिशिर सिन्हा शिशिर जी कार्यक्रम में आपका अभिनंदन
2: नमस्कार धन्यवाद
1: आइए श्रोताओं एक नजर डालें आर्थिक सुर्खियों पर
0: The benchmark domestic indices declined, Sensex drops nearly 450 points. Nifty settles at 24,239. India's core industries register growth of 5% in June this year and global crude oil prices decline.
1: प्रमुख घरेलू शेयर सूचकांकों में गिरावट सेंसेक्स 400 अंकों से अधिक बढ़ा निफ्टी 24,239 पर बंद हुआ भारत के प्रमुख उद्योगों में इस साल जून माह में 5% की वृद्धि दर्ज की गई और दुनिया भर में कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट आई

0: Before we proceed, here is a disclaimer. The views and opinions expressed by experts in this program are their own and not that of Akashwani. Akashwani advises its listeners to do their own research or consult a registered professional before taking any investment decision. We further advise all listeners to exercise due diligence and rely on their own judgment for taking any financial decision.
1: And Shrutaon, ab aaiye ruk karte hain ki aur jante hain ki aaj din ke antaral mein hamare gharelu share bazaar ne kaisa प्रदर्शन किया। प्रमुख घरेलू शेयर सूचकांक आज उतार चढ़ाव भरे सत्र के बाद गिरावट के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 443 अंक यानी आधे प्रतिशत से अधिक लुढ़ककर 77,709 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 96 अंक यानी लगभग आधे प्रतिशत की गिरावट के साथ 24,239 पर आ गया। हालांकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के विस्तृत शेयर बाजार में मिड कैप 100 सूचकांक में आधे प्रतिशत से अधिक और स्मॉल कैप 100 सूचकांक में लगभग 0.2% की बढ़ोतरी हुई।
0: The benchmark domestic equity indices ended on a negative note today after a choppy trading session. The Sensex shed 443 points or 0.6% to close at 77,709. The Nifty lost 96 points or 0.4% to settle at 24,239. However, in the broader market on the National Stock Exchange, the mid-cap 100 index rose 0.6% and the small-cap 100 index added nearly 0.2%.
1: सेंसेक्स में शामिल 30 में से 19 कंपनियों के शेयर्स में बढ़त दर्ज की गई। सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाली कंपनियों के शेयर्स में सबसे पहला नाम ट्रेंट 3%, पावर ग्रिड 1.8% और एनटीपीसी तथा भारती एयरटेल 1.5% से अधिक बढ़े। खराब प्रदर्शन करने वाली कंपनियों के शेयरों की अगर बात करें तो एक्सिस बैंक 5.5%, एचडीएफसी बैंक 5% से अधिक और मारुति के शेयर्स में 2% से अधिक की गिरावट आई।
0: And in the sectoral indices on the Bombay Stock Exchange, 15 out of 25 sectors ended in the positive zone. Among the top gainers, PSU banks jumped 3%, utilities rose 1.7% and power added 1.5%. In contrast, private banks dropped 2.1%, top 10 bank index slipped 1.9% and financial services lost 1%. The overall market breadth at the Bombay Stock Exchange was positive as shares of 2,226 advanced, 2,039 companies declined and 249 remained unchanged.
1: और अब जान लेते हैं श्रोताओं रुपए का हाल। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया 17 पैसे कमजोर होकर एक अमरीकी डॉलर की तुलना में 96.45 रुपए पर बंद हुआ। शिशिर, हमने देखा कि बैंकिंग सेक्टर ने

0: ने आज मार्केट में एक निराशा ला दी है और मार्केट अंततः ग्रीन जोन में बंद हुआ।
1: बाजार में देखिए जो सरकारी कंपनियां हैं, सरकारी बैंक है, उनके शेयरों में उछाल देखने को मिला। निजी बैंक जो थे उनके शेयरों में गिरावट देखने को मिली। ये बहुत ही कहते हैं कि रेयर सिचुएशन होते हैं जब ऐसा देखने को मिलता है कि एक ही क्षेत्र में दो अलग अलग तरीके के ट्रेंड देखने को मिल रहे हैं। सरकारी बैंकों के नतीजे काफी अच्छे रहे हैं। अगर अब बीते कुछ दिनों में जो हम प्रमुख बैंकों की बात करें, उन सभी में हमने दोहरे अंकों में मुनाफा बढ़ते हुए देखा है, और सालाना आधार पर एक बैंक का जो मुनाफा था वो लगभग 3 गुना से ज्यादा बढ़ा है, जो देश का तीसरा सबसे बड़ा बैंक है। तो ऐसी सूरत में सरकारी बैंकों में एक उम्मीद बंधी है कि वहां पे नए सिरे से जो है वो खरीदारी की जा सकती है। निजी बैंकों के मुनाफे में भी बढ़ोतरी हुई है, लेकिन उस तरीके की नहीं हुई है जो हमने सरकारी बैंकों में देखा। तो शायद एक ये कारण हो सकता है कि हमने एक तरफ सरकारी बैंक में बढ़ोतरी देखी, लेकिन निजी बैंक और फाइनेंशियल सर्विसेज जो थी उनमें हमने गिरावट देखी। और पूरा बाजार अगर आप देखेंगे 400 पॉइंट के ऊपर जो गिरा, सेंसेक्स गिरा, उसके पीछे सबसे बड़ा जो कारण था
0: जी,
1: वो आप तेल, कच्चे तेल को लेकर के जो स्थिति है
0: जी,
1: उसका योगदान सबसे ज्यादा है। एक अनिश्चितता से बनी हुई है कि वहां पर क्या रहेगा
0: जी।
1: तो ये आज के बाजार में। और दूसरा जो एक महत्वपूर्ण हमने देखा कि दवा कंपनियों के शेयरों में भी आज अच्छी तेजी आई, और ये भी एक तरीके से कह सकते हैं कि चूंकि वो एक तरीके से डिफेंसिव सेक्टर कहा जाता है, तो वहां पर हमने बढ़ोतरी देखी। तीसरा जो हमने चलन आज देखा कि मिड कैप और स्मॉल कैप जो आम तौर पे कहते कि इसमें बहुत तेजी भी आती है और बहुत गिरावट भी आती है, आज के गिरावट के दौर में भी मिड कैप और स्मॉल कैप दोनों आगे बढ़े।
2: राइट शिशिर जी, वी आर टॉकिंग ऑफ द बैंकिंग स्टॉक्स, पीएसयू बैंक्स एंड प्राइवेट बैंक्स, ऑलमोस्ट 5% ऑफ अ डिफरेंस। इफ यू लुक एट द पीएसयू बैंक्स जंप 3% एंड द प्राइवेट बैंक्स ड्रॉप 2.1%, ऑलमोस्ट अ 5% कॉन्ट्रास्ट। What accounts for that?
1: Yeah, the most important reason is the result. I mean, if you go by the financial performance of Q1, that's April to June period, where we have seen all the public sector banks have recorded double digit or even more than double digit growth in the net profit. Even their net interest profit, net interest income has also gone up. Of course, the net interest margin is slightly on the lower side, but hopes are really good for the public sector bank, and that is why we are seeing this kind of increase in there. On the contrary, the private sector banks, we are not seeing the kind of growth in the net profit, and at the same time one of the big private sector bank is also riddled in the controversy that is also giving some kind of negative impression about the private sector banks, and that is why you are seeing a difference of 5% between the public sector bank and the private sector bank.
2: Another point, Shishir ji, you know, given the situation in West Asia, you know, now on, and before we discuss, here is the first caller from Delhi, Premjeet. Premjeet ji.
3: Ji, namaskar, Shishir sahab.
1: Namaskar.
3: आप सिन्हा साहब, आपने पिछली बार मुझे बताया था और मैंने पूरी वर्ल्ड घूमकर जब मैं आया तो मैंने ये एग्जीक्यूट किया। सर मेरा प्रश्न ये है, दूसरा प्रश्न इस बार कि सर ये जो रोबोटिक सिस्टम है वर्ल्ड वाइड, या जिसको आप AI कहते हैं, क्या ये हम पर हावी होगा, हमारे इंडियन यूथ जो इंटेलिजेंट है, या हम उन पे हावी रहेंगे? सर बड़ा छोटा सा प्रश्न है सर, पर विस्तार आप ही दे सकते हैं।
1: प्रेमजीत जी, प्रश्न छोटा नहीं है, प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। और आज के दौर में कहें कि चाहे वो शेयर बाजार की बात करें या पूरे अर्थव्यवस्था की बात करें, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता है, इसको लेकर के बहुत चर्चा चल रही है। और ये दो मुद्दे प्रमुख रूप से छाए हुए हैं। पहला कि क्या लोगों की नौकरियां जाएंगी, और दूसरा जो पारंपरिक सूचना तकनीक कंपनियां हैं, IT सेक्टर्स की जो कन्वेंशनल कंपनीज है, उनका क्या होगा। तो पहले प्रश्न का जवाब मेरे हिसाब से ये है, जो हमने 1991 में देखा था जब कंप्यूटर आया था, तो लोगों ने कहा कि नौकरियां जाएंगी क्योंकि अब कंप्यूटर आ गया है। लेकिन जिन लोगों ने कंप्यूटर के साथ चलना शुरू किया, उनके लिए कौशल्य बढ़ा और उनके लिए मौके ज्यादा बने। यही पक्ष जो है वो आप AI के लिए भी कह सकते हैं कि AI के साथ अगर हम चले तो हमारा कौशल्य बढ़ता है, हमारे लिए मौके बनते हैं। आपका ये है कि कौन हावी होगा, हम हावी होंगे या AI हावी होगा? हम अगर हावी होने देंगे तो AI हम पर हावी होगा, क्योंकि कहते हैं ना कि तकनीक के को हम अपना मददगार बनाएं, तकनीक को अपना मालिक ना बनाएं। तो अगर मददगार अगर आप बनाते हैं, उनसे सहयोग लेते हैं, तो ये आपके लिए बहुत बेहतर रहेगा। और दूसरा जो

0: प्रश्न जो मैंने खुद ही किया कि जो पारंपरिक आईटी सेक्टर की कंपनियां हैं उनका क्या होगा, तो अभी मैं दो जो बहुत प्रमुख व्यक्ति हैं आईटी सेक्टर के, जो इंफोसिस के चेयरमैन हैं नंदन निलेकनी या एनविद्या के जो सीईओ हैं, दोनों ने इस बात पर जोर दिया है कि पारंपरिक कंपनियों का महत्व बना रहेगा। तो मुझे लगता है कि एआई को लेकर के डरने की जरूरत नहीं बल्कि एआई को साथ लेने की जरूरत है। इससे हमारा आपका कौशल्य बढ़ेगा और हम बाजार में एक बेहतर कर्मयोगी कह सकते हैं, आप कर्मवीर कह सकते हैं, उसके तौर पे हम आएंगे।
1: बिल्कुल श्रोताओं, जिस तरीके से प्रेमजीत ने हमसे सवाल पूछा, आप भी हमसे सवाल पूछ सकते हैं। सवाल पूछने के लिए आप डायल कीजिए 2331-4444, 2331-0481 और 2371-7106। आपके सवालों के जवाब लेकर के हमारे साथ शिशिर सिन्हा मौजूद हैं। और ये देखिए, कोलकाता से इस बीच हमारे पास कॉल आ रही है डी आर आचार्य की।
2: हाँ हाँ
1: जी, अपना सवाल पूछिए महोदय।
2: हाँ सर, मैडम, मेरा एनपीएस में कुछ पैसा लगा है, ठीक है, तो बीच में जो लड़ाई चल रहा था इसमें मेरे फंड के डाउन हो गया, इसमें पैसा लगाना ठीक होगा? और
0: देखिए, नेशनल पेंशन सिस्टम जो है वो थोड़े समय की कोई बचत योजना नहीं है, वो आपके लिए एक भविष्य की सुरक्षा, एक सामाजिक सुरक्षा है। जब आप सेवानिवृत्त होंगे वहाँ पर आपके लिए उससे जो भी पैसे आप जमा करेंगे उससे आपको एक पेंशन मिलेगा। आप यदि निजी क्षेत्र में काम करते हैं तो ये आपके लिए बहुत मददगार होगा। सरकारी क्षेत्र में भी 1 जनवरी 2004 के बाद जो भी सरकारी क्षेत्र में आए हैं उनके लिए नई पेंशन व्यवस्था लागू की गई थी। तो मुझे लगता है कि आपको ना ये रोज रोज के उतार चढ़ाव को देख करके घबराने की जरूरत नहीं है। एक जब आपकी मैच्योरिटी जो 60 साल की उम्र में होती है और अब 85 साल तक के लिए ये सुविधा दी गई है, तो आपको घबराना नहीं चाहिए। चूंकि फंड जो है वो ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा शेयरों में लगाया जाता है, आप विकल्प देते हैं, और अगर आपने विकल्प दिया है कि नहीं मेरा ज़्यादा पैसा लगना चाहिए, तब भी आपको मौका मिलता है कि आप उसमें किस तरीके से बदलाव कर सकते हैं। तो मुझे लगता है आप घबराएं नहीं, इसके भविष्य को लेकर के बहुत चिंता अभी नहीं करनी चाहिए।
1: और दिल्ली से हमारे साथ केशव जुड़ रहे हैं। केशव जी, कार्यक्रम में आपका अभिनंदन, कृपया अपना सवाल पूछिए।
3: नमस्कार जी, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि एफडी से बेटर किसी हमें पैसा लगाना चाहिए। और दूसरा एक सवाल मेरा ये है कि जो अभी जो लड़ाई चल रही है तो वहाँ काफ़ी क्षति हो गई है कई देशों में, रूस, ईरान और अदर्स अरब देशों को, तो आने वाले समय में यहाँ काफ़ी जो काफ़ी दिल्ली के द्वारा से भरेगी तो इस क्षेत्र में काफ़ी स्कोप हो जाएगा, तो इसमें क्या बेनिफिट आगे हम
0: केशव जी, आपका जो पहला प्रश्न है कि एफडी का क्या भविष्य है, एफडी को लेकर के क्या करना चाहिए, मेरी हमेशा से राय रही है कि एफडी एक सुरक्षित निवेश है, चाहे वो आप सरकारी बैंक में करें या डाकघर में करें। सरकारी बैंक में ये होता है कि आपको अगर बैंक डूब जाता है तो भी 5 लाख रुपए तक की जो मूल रकम आपको मिलती है डिपॉजिट इंश्योरेंस के तहत। डाकघर में फिक्स डिपॉजिट कराते हैं, 1 रुपया भी आपका डूबने का खतरा नहीं होता है। तो फिक्स डिपॉजिट आपकी पोर्टफोलियो का एक हिस्सा होना चाहिए, वो आपको एक सुरक्षा देता है। दूसरा प्रश्न था कि जगह जगह पर जो नुकसान हुए हैं, भवन नए सिरे से बनाने की जरूरत होगी। देखिए, ये बहुत ही दूर की सोच है, अभी की जो परिस्थिति है उसमें वहां पर उद्योगों की क्या स्थिति होगी, वहां किस तरीके से भवन निर्माण होगा, ये कहना भी बहुत ही मुश्किल है। उम्मीद करनी चाहिए कि ये जल्द से जल्द खत्म हो, युद्ध शांति की स्थिति बने, तो निश्चित तौर पर दुनिया भर की कंपनियों के लिए मौके जो है वो बन सकते हैं।
4: नेक्स्ट कॉलर इज राजीव फ्रॉम दिल्ली। राजीव,
1: लगता है हमारा संपर्क टूट गया है राजीव जी से, आगे बढ़ते
4: yes.
1: हैं निश्चित।
4: या मूविंग ऑन, द अल्ट्राटेक सीमेंट टुडे रिपोर्टेड इट्स फाइनेंशियल रिजल्ट्स फॉर द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ द करंट फाइनेंशियल ईयर। द कंपनीज कंसोलिडेटेड रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस रोज बाय 15.8% ईयर ऑन ईयर to 24,648 crore rupees. However, on a quarter-on-quarter basis, revenue dropped by 4.5%. The company's consolidated net profit grew by 16.8% to 2,599 crore rupees compared with the corresponding quarter of the previous financial year. However, on a sequential basis, the net profit declined by 12.8%.
1: और अब आगे बढ़ते हैं श्रोताओं और जानते हैं कि एशियाई शेयर बाजार और यूरोपीय शेयर बाजार में क्या हलचल है। आज अधिकांश एशियाई शेयर

0: बाजार मिले जुले रुख के साथ बंद हुए। दक्षिण कोरिया का कॉस्पी 4.5%, ताइवान का ताइएक्स 0.5% और सिंगापुर का स्ट्रेट्स टाइम्स इंडेक्स 0.2% लुढ़के। वहीं हांगकांग का हैंगसेंग लगभग 2.5% और चीन का शंघाई कॉम्पोजिट सूचकांक 0.8% बढ़ा। उधर छुट्टी के कारण जापान का बाजार बंद रहा। प्रमुख यूरोपीय शेयर सूचकांकों की अगर बात करें तो मिले जुले रुख के साथ ये कारोबार करते नजर आए। अंतिम समाचार तैयार किए जाने तक फ्रांस का कैक 0.3% और जर्मनी का डैक्स 0.2% बढ़ा। वहीं लंदन का फुटसी 0.3% की गिरावट के साथ कारोबार करता नजर आया। और रवि नारायण जी हमारे साथ श्रोताओं जुड़ रहे हैं भिलाई से। जी महोदय, अपना सवाल पूछिए कार्यक्रम में आपका।
1: मार्केट मंत्रा, जल्दी जल्दी पूछता हूँ, दो छोटे छोटे सवाल हैं
0: जी।
1: पहला तो ये कि आज

0: बैंक के ये जानना चाह रहा था। और दूसरा ये कि ये अभी तो ये फिर से वार बढ़ने के बावजूद भी पेट्रोल मतलब पेट्रोलियम का जो प्राइस है वो कैसे गिर रहा है, ये जानना चाह रहा था। थैंक यू।
1: पहले अगर आपके दूसरे प्रश्न का हम जवाब दे दें, क्योंकि पहले प्रश्न का जवाब इसीलिए नहीं दे सकते क्योंकि वह खास कंपनी और बैंक से जुड़ा हुआ है जिसकी योजनाओं की हम चर्चा यहाँ पर नहीं करते हैं। आपका जो दूसरा प्रश्न है कि कच्चे तेल के भाव गिर रहे हैं, भाव गिरे नहीं, भाव तो बढ़े हैं, 80-85 के ऊपर चले गए हैं, तो वो तो हमारे लिए एक चिंता का विषय ज़रूर बन रहा है क्योंकि बीच में थोड़ी गिरावट आई थी तो एक राहत की उम्मीद बनी थी, अब फिर से बढ़ रहा है तो जाहिर सी बात है उससे रुपये पर दबाव बन रहा है और आपने उसका रुपये का चाल भी देखा है। तो अभी के समय में लड़ाई जैसे जैसे बढ़ेगी कच्चे तेल के भाव में तेजी आने की आशंका है, क्योंकि लड़ाई केवल एक देश तक सीमित नहीं है, वो पूरे क्षेत्र में है और वो क्षेत्र ऐसा है जहां से 20% जो है पूरी दुनिया की आपूर्ति का जो है वहां से गुजरता है, तो जाहिर है उसका असर तो आपके पेट्रोल डीजल या यूं कहें पहले हम कहें कि कच्चे तेल के भाव पर पड़ेगा।
2: आगे बढ़ते हैं। प्रमुख उद्योग सूचकांक सालाना आधार पर जून में 5% बढ़ा, ये बढ़ोतरी पिछले 5 महीनों में सबसे अधिक है। इससे पहले मई में 3.2% की बढ़ोतरी दर्ज की गई थी। जून के आंकड़ों के साथ ही संशोधित श्रृंखला भी पहली बार जारी की गई है जिसमें आधार वर्ष को 2011-12 से बदलकर 2022-23 कर दिया गया है। नई श्रृंखला के अंतर्गत प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र की संख्या 8 से बढ़ाकर 9 हो गई है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी शुरुआती आंकड़ों के अनुसार आयरन ओर के उत्पादन में लगभग 44% की वृद्धि हुई जबकि बिजली उत्पादन और सीमेंट उत्पादन में 9.8% की बढ़ोतरी हुई। वार्षिक आधार पर स्टील उत्पादन में 4.6% और कोयला उत्पादन में 1.4% की वृद्धि दर्ज की गई। हालांकि वार्षिक आधार पर प्राकृतिक गैस उत्पादन में 7.4%, रिफाइनरी उत्पादों के उत्पादन में 4.5% से अधिक, कच्चे तेल के उत्पादन में 4% से अधिक और उर्वरक उत्पादन में 3.3% की गिरावट आई। शिशिर जी, ये एक अच्छी बात है कि ये बढ़ोतरी हुई है, इसे आप कैसे देखते हैं, एक संक्षिप्त टिप्पणी चाहूंगी।
1: देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो जितने भी हमारे आर्थिक सूचकांक हैं, अगर हम बात करें GDP, हम बात करें महंगाई दर की और अब जो है ये प्रमुख उद्योगों की बात करें
2: जी,
1: इसके आधार वर्ष का बढ़ना इसलिए आधार वर्ष का तय नए सिरे से तय होना इसलिए महत्वपूर्ण होता है क्योंकि वो वास्तविकता के करीब होते हैं। अभी जैसा कि आपने कहा कि 2011-12 पहले आधार वर्ष था, अब 2022-23 है, तो अगर आप GDP का भी देखेंगे तो 2022-23 हो गया है, WPI का भी देखेंगे 2022-23 हो गया है, CPI की हम बात करें वो 2024 हो गया है। तो आधार वर्ष का बढ़ना एक, दूसरा दायरा बढ़ गया है, पहले 8 होते थे अब 9 हुआ है। और इस्पात का आना हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इस्पात जो है वो आर्थिक गतिविधियों में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। एक छोटी सी बात इसमें और जोड़ना चाहेंगे कि ये जो प्रमुख उद्योग क्षेत्र है, ये जो आंकड़े आते हैं ये हमारे पूरे औद्योगिक क्षेत्र का एक ट्रेलर है, यानी कि जब 28 तारीख को औद्योगिक क्षेत्र के आंकड़े आएंगे तो एक अनुमान आज हम लगा सकते हैं कि वहां पर स्थिति क्या होगी।
3: Right, and our next caller is Kanta from Gurugram. Kanta.
4: हाँ जी, नमस्ते सर।
1: नमस्ते।
4: मैं ये पूछना चाहती हूँ कि सीनियर सिटीजन स्कीम में मैंने बैंक में पैसे लगाए हैं सर?
1: जी जी।
4: तो इसको जैसे PPF का पैसा तो सरकार देती है, तो इसको बैंक देगा या सरकार देगी? और ज्यादा हो जाए तो बैंक डूब जाए तो फिर वो मर जाएगा पैसा, ज्यादा करवा दिया तो?
1: कांता जी, दो बातें हैं, जो आप बैंक में पैसा रखती हैं वो जाहिर सी बात है वो बैंक ही देता है, उस पर ब्याज भी बैंक ही आपको अदा करता है। यदि सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम अगर आप डाकघर में खोलती हैं वो पैसा वो सरकार के जरिए आता है। दूसरा जो आपका प्रश्न है कि अगर बैंक डूब जाए तो बैंक डूबने की सूरत में प्रति शाखा जो है वो आपको 5 लाख रुपये तक का जो है वो आप प्रति बैंक जो है वो 5 लाख रुपये तक आपको मिलता है एक समय में और बाकी पैसा जो है वो बाद में उसके भुगतान की उम्मीद बनती है। तो बैंकों में जो ब्याज दर है उससे कहीं ज़्यादा ब्याज दर डाकघर में है और वहाँ पर फ़ायदा ये भी है कि वो ब्याज और मूल दोनों ही भुगतान सरकार करती है।
2: शिशिर, दिल्ली से हमारे साथ दिनेश जुड़ रहे हैं। दिनेश जी, कार्यक्रम में आपका अभिनंदन, कृपया अपना सवाल पूछिए।
5: नमस्कार जी।
1: नमस्कार।
5: हाँ सर जी, मेरे पास ये अपने फोलियो नंबर है खाली, हमारे पास शेयर नहीं है, तो वो कहीं ऐसा तो नहीं मतलब हमारे को इशू

0: रहेंगे जी उसके फिजिकल चेयर।
1: दिनेश जी, अब तो फिजिकल शेयर की तो बात होती नहीं है, आपके पास जिस किसी कंपनी के शेयर हैं वहाँ के रजिस्ट्रार से आप संपर्क करें, यहाँ उनके जो रजिस्ट्रार होते हैं उनसे आप संपर्क कर सकते हैं। आपका जो पैन नंबर होगा या जो डीमैट अकाउंट नंबर होगा, इसमें से कोई भी एक जानकारी दे करके आप ये पता कर सकते हैं कि वो शेयर कहाँ है। फोलियो नंबर आम तौर पर म्यूचुअल फंड के लिए ज़्यादा यूज होता है, तो अगर म्यूचुअल फंड के उससे है तो आप जो संबंधित असेट मैनेजमेंट कंपनी है उनसे आप संपर्क कर सकते हैं।
2: शशि जी, one question which we were discussing earlier on, if you look at the market situation, domestic market situation, and also the results which have been pouring in over the past couple of days now, so given the situation the world over, especially in the context of the West Asian crisis, how do you see these numbers stacking up? Especially these numbers are so very encouraging.
1: See, I think we need to understand that the impact was starting in the month of February, from 28th of the February. So the first full month was March, and then we have the first full quarter of April to June. Now the big question we are is there that why there the number is so encouraging, why the numbers, I mean, not indicating the kind of stress which we were apprehending. One of the reason is because of the market situation. Market means the consumer market. If you go by the consumption market, the consumption is good in the domestic sector, that is also helping you. You also need to understand what is happening on the export front. Just on 15th of this month, we were going through the export data, and there we found that both export and import both have gone up. Export has also given a very encouraging sign. That means the companies are able to sell their produce outside. Now the concern here is that the cost of production has slightly gone up, and that is why the profitability is of course on a higher side, but it could have been much higher had the cost of production been the lower because of the fuel prices. And also you need to remember that during that period of April to June, we have seen some curb on supply of fuel to various industries, various sectors. Now that supply has been has been normalized, so all these things are contributing in that. So the number one is export number, and then the consumption number.
3: Right. और इस बीच बिहार से हमारे साथ टिंकू जुड़ रहे हैं। टिंकू जी, कार्यक्रम में आपका अभिनंदन, कृपया अपना सवाल पूछिए।
4: नमस्ते मैम।
3: नमस्ते
4: मैम, मैं पोस्ट ऑफिस गए थे, बेगूसराय कोई गांव है, ठीक है, और मैं उससे पूछे थे संतोष पॉलिसी करना है इंश्योरेंस, तो वो पूछा क्या पोस्ट ऑफिस वाला अधिकारी पूछा
1: कौन सी पॉलिसी आपने, टिंकू जी कौन सी पॉलिसी आपने कही?
4: संतोष
1: पॉलिसी।
4: हाँ, पोस्ट ऑफिस का है, संतोष पॉलिसी इंश्योरेंस है, लाइफ इंश्योरेंस हो या।
1: अच्छा अच्छा, ठीक है।
4: तो मैं वो पूछा आपका उम्र क्या है, तो मैं बोले 41। तो बोला कि 19 साल का पॉलिसी होगा आपको, 60 साल में आपको पूरे रुपया मिल जाएगा। तो सर वो 2 लाख के इंश्योरेंस बता था प्रति, मगर 1300 रुपया मंथली बोला था जमा करने के लिए।
1: okay.
4: 2 लाख से तो ज्यादा पड़ रहा है क्या, जीएसटी वीएसटी वो तो कट रहा है क्या उसमें? पोस्ट ऑफिस में तो कोई एजेंट वगैरह तो है नहीं, उसमें एजेंट चार्ज तो लगता नहीं है, यही मैं जानकारी चाहते हैं। और एक और सवाल है
1: जी।
4: जैसे पीपीएस अकाउंट में पोस्ट ऑफिस में कराते हैं
1: जी,
4: उसको ब्याज दर में क्या फर्क है और बैंक में क्या फर्क है, दोनों में जानकारी चाहिए सर।
1: पहले अगर मैं आपके दूसरे प्रश्न का जवाब दूं कि पीपीएफ आप कहीं भी खोलें, चाहे आप बैंक में खोलें या डाकघर में खोलें, ब्याज की दर एक होती है, क्योंकि पीपीएफ को बैंक नहीं चलाता, बैंक वहां पर एक तरीके से आपके लिए एक सुविधा मुहैया कराता है कि आप हमारे यहां आकर के अकाउंट खोल लीजिए, डाकघर में भी आप खोल सकते हैं, तो उसको लेकर के आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। दूसरी बात है कि जो आपने जिस पॉलिसी की बात की, जीवन बीमा पॉलिसी की बात की, पहली बात की देखिए, व्यक्तिगत तौर पर जब आप जीवन बीमा पॉलिसी की बात करते हैं उस पर कोई जीएसटी नहीं नहीं होता है, तो उसमें जीएसटी को लेकर के अगर कोई कहता है तो वो गलत कहता है, व्यक्तिगत तौर पे नहीं है। हाँ, यदि एक सामूहिक आप किसी कंपनी की तरफ से ले रहे हैं तो वहां पर आपको देना पड़ता है। रहा सवाल कि कितने समय के लिए लेना है, वो हर पॉलिसी की अपनी शर्तें होती हैं, और डाकघर की जो जीवन बीमा पॉलिसीज हैं वो बहुत अच्छी पॉलिसी हैं, उनमें रिटर्न भी अच्छा मिलता है और उसमें सुरक्षा भी काफ़ी ज़्यादा होती है।

0: Moving on to crude now, the global crude oil prices reversed their early gains today after Iran's foreign ministry said negotiations with the U.S. could be pursued based on national interests. Brent crude was trading 0.8% down at $87.35 per barrel in the intraday trade. The West Texas Intermediate crude was trading 1.5% down at $81.23 per barrel when reports last came in. Quick comment, Shishirji, on crude.
1: The problem we are facing at this moment is there's still a lot of uncertainty. Sometime you are finding that the Iran is saying, okay, we are ready to negotiate, but only on the national interest. On the other side, when you hear US president, he has its own way of explaining the thing. So at this moment, today, you will see, I mean, as you just mentioned, that it was down by 8% and it was around 87 barrel.
0: 0.8%.
1: I'm sorry. 0.8% and it was $87 a barrel. For us, from the Indian perspective, it is coming down below 80. Then only there will be some relief. But anything above 80 is not good for rupee as well as for prices of petrol and diesel.
0: Right. And in the Indian bullion market, 24 carat gold was trading 0.5% up at 1,42,390 rupees per 10 grams, while silver was trading 1.2% up at 2,19,670 rupees per kilogram a short while ago.
2: Multi-commodity exchange mein agast anubandh wala sona aadhe pratishat se adhik badhkar 1,41,754 rupaye prati 10 gram par karobar kar raha tha aur sitambar anubandh wali chandi 1.3% ki badhat ke saath 2,19,233 rupaye par chal rahi thi. Shishir ji, sankshipt tippani chahungi aapse sone aur chandi ke bhav par.
1: Dekhiye, ek dilchasp baat ye hai ki ladai ke beech mein sone chandi ke bhav mein giravat aa rahi hai. Ye kai baar log को हैरान भी कर रहा है, लेकिन आप इसको सीधा जोड़िए डॉलर से. जब जब डॉलर मजबूत होगा, सोना उतना ही ज्यादा कमजोर होगा.
2: शशि जी, कार्यक्रम में आने और इतनी महत्वपूर्ण चर्चा करने के लिए आपका धन्यवाद. हमारे तमाम कॉलर भी जुड़े हैं हमारे साथ में, उनके भी सवालों के आपने जवाब दिए, उसका भी बहुत बहुत धन्यवाद.
1: जी, धन्यवाद.
0: थैंक यू सो वेरी मच शिशिर जी. एंड बिफोर वी क्लोज, अ रिमाइंडर ऑफ द हेडलाइंस वंस अगेन. द बेंचमार्क डोमेस्टिक इंडिसीज डिक्लाइन, सेंसेक्स ड्रॉप्स नियरली 450 पॉइंट्स, निफ्टी सेटल्स एट 24,239. इंडियाज कोर इंडस्ट्रीज रजिस्टर ग्रोथ ऑफ 5% इन जून दिस ईयर एंड द ग्लोबल क्रूड ऑयल प्राइसेस डिक्लाइन एंड दैट्स ऑल वी हैव in this edition of Market Mantra. I am Nishit Kumar along with my co-anchor Prachi Priya saying goodbye.
3: इस कार्यक्रम में विशेषज्ञों द्वारा विचार उनके अपने हैं. आकाशवाणी अपने श्रोताओं को सलाह देता है कि निवेश का निर्णय करने से पहले स्वयं रिसर्च करें या किसी पंजीकृत सलाहकार से राय लें.

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। संसद के मॉनसून सत्र के पहले दिन आज नीट परीक्षा पेपर लीक मामले पर विपक्ष के विरोध के बीच दोनों सदनों की कार्यवाही कर कई बार स्थगित किए जाने के बाद कल तक के लिए स्थगित कर दी गई है। इससे पहले दिन में 11 बजे जब लोकसभा की बैठक शुरू हुई तो हाल ही में दिवंगत हुए 6 पूर्व सदस्यों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। सदन ने कतर के फादर अमीर शेख हमद बिन खलीफा अस्सानी को भी श्रद्धांजलि दी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने कहा कि शेख हमद बिन खलीफा अस्सानी ने भारत कतर संबंधों को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अध्यक्ष ने प्रश्नकाल शुरू करने का प्रयास किया तो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी सहित विपक्षी सदस्यों ने नीट परीक्षा के पेपर लीक का मुद्दा उठाया। श्री बिड़ला ने विपक्ष से सदन के संचालन में सहयोग करने और मर्यादा बनाए रखने का आग्रह किया, लेकिन विपक्षी सदस्यों ने अपना विरोध जारी रखा। पीठासीन अधिकारी दिलीप सैकिया ने सदन को सुचारू रूप से चलाने का प्रयास करते हुए कहा कि सदन में स्वस्थ बहस होनी चाहिए। विपक्षी सदस्यों ने अध्यक्ष की सलाह पर ध्यान नहीं दिया। विपक्ष के हंगामे के कारण लोकसभा की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। राज्यसभा की कार्यवाही भी दिन भर के लिए स्थगित किए जाने से पहले कई बार स्थगित की गई। दोपहर 2:30 बजे पांचवी बार स्थगन के बाद जब सदन की कार्यवाही फिर से शुरू हुई तो उपसभापति हरिवंश ने निर्धारित कार्यसूची को आगे बढ़ाने का प्रयास किया, लेकिन विपक्षी सदस्यों ने नारेबाजी की और अपना विरोध

जारी रखा। हंगामे के बीच राज्यसभा को कल तक के लिए स्थगित कर दिया गया। केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज नई दिल्ली में प्रदर्शनकारियों के प्रतिनिधियों से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने बताया कि बैठक में प्रतिनिधि मंडल के साथ विस्तार से चर्चा हुई। श्री नड्डा ने प्रदर्शनकारियों से धरना समाप्त करने और स्थिति सामान्य करने में प्रशासन का सहयोग करने का आग्रह किया। इस बीच दिल्ली पुलिस ने सभी प्रदर्शनकारियों से शांति, संयम और सार्वजनिक व्यवस्था सुनिश्चित करने में पुलिस का सहयोग करने की अपील की है। वीडियो संदेश में दिल्ली पुलिस के अपर आयुक्त और जनसंपर्क अधिकारी राजीव रंजन ने जनता को किसी भी मंच के माध्यम से अफवाहों, गलत सूचनाओं पर विश्वास न करने और न ही उन्हें फैलाने की सलाह दी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज किशिनो में स्टेफान सेल मारी सीफेंट स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। ये समारोह मोल्दोवा के राष्ट्रपति नायक को सम्मान देने के लिए आयोजित किया गया। राष्ट्रपति मुर्मू ने आज भारत और मोल्दोवा के बीच आर्थिक सहयोग बढ़ाने पर बल देते हुए कहा कि दोनों देशों के बीच तेजी से बढ़ते क्षेत्रों के साथ काम करने की बड़ी संभावना है। राष्ट्रपति मुर्मू ने किशिनोव में प्रतिनिधि मंडल स्तर की वार्ता के बाद संयुक्त प्रेस वक्तव्य में कहा कि ये यात्रा ऐतिहासिक है क्योंकि किसी भारतीय राष्ट्रपति की मोल्दोवा की ये यात्रा पहली राजकीय यात्रा है। विधि विभाग द्वारा आयोजित ब्रिक्स अभियोजन सेवा प्रमुखों की आठवीं बैठक आज से शुरू हो रही है। दो दिन की वर्चुअल बैठक भारत के ब्रिक्स के व्यापक दृष्टिकोण, लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण को आगे बढ़ाती है। विधि और न्याय मंत्रालय ने कहा कि ये बैठक ब्रिक्स में आर्थिक विकास को समर्थन देने वाले स्थिर, निष्पक्ष और पूर्वानुमानित ढांचे को बढ़ावा देने की साझा प्रतिबद्धता को उजागर करती है। ब्रिटेन में लेबर पार्टी के नव निर्वाचित नेता एंडी बर्नहम ने नए प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार संभाल लिया है। किंग चार्ल्स तृतीय ने ग्रेटर मैनचेस्टर के 56 वर्षीय पूर्व मेयर को कीर स्टार्मर के इस्तीफे के बाद नई सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया था। इससे पहले कीर स्टार्मर ने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के रूप में 10 डाउनिंग स्ट्रीट से अपना अंतिम भाषण दिया और फिर औपचारिक रूप से अपना इस्तीफा देने के लिए किंग चार्ल्स से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि वे एंडी बर्नहम को सत्ता सौंप रहे हैं और वे उन्हें पूरा समर्थन देंगे। जम्मू कश्मीर में मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने राजौरी और पुंछ जिलों में बारिश की घटनाओं में मरने वालों के परिजनों को तत्काल सहायता के रूप में 6-6 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने अचानक आई बाढ़, भूस्खलन और बारिश की घटनाओं में हुई जानमाल की हानि पर गहरा शोक व्यक्त करते हुए कहा कि सरकार इस मुश्किल समय में लोगों के साथ है। मुख्यमंत्री ने प्रशासन को प्रभावित परिवारों की तत्काल राहत और पुनर्वास सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: का आग्रह किया। इस बीच दिल्ली पुलिस ने सभी प्रदर्शनकारियों से शांति, संयम और सार्वजनिक व्यवस्था सुनिश्चित करने में पुलिस का सहयोग करने की अपील की है। वीडियो संदेश में दिल्ली पुलिस के अपर आयुक्त और जनसंपर्क अधिकारी राजीव रंजन ने जनता को किसी भी मंच के माध्यम से अफवाहों, गलत सूचनाओं पर विश्वास न करने और न ही उन्हें फैलाने की सलाह दी है। सर्वोच्च न्यायालय ने आज उत्तर प्रदेश से अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावे के कथित गबन की जांच के लिए विशेष जांच दल SIT गठित करने की संभावना के बारे में जानकारी देने को कहा है। न्यायालय ने याचिकाकर्ताओं को इस मुद्दे का राजनीतिकरण न करने की चेतावनी दी है। सर्वोच्च न्यायालय इस याचिका पर 27 जुलाई को फिर सुनवाई करेगा, जब उत्तर प्रदेश सरकार मामले में SIT जांच के बारे में जानकारी देगी। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि यह अपराध का एक साधारण मामला है और न्यायालय का काम केवल उचित जांच सुनिश्चित करना है। विधि विभाग द्वारा आयोजित ब्रिक्स अभियोजन सेवा प्रमुखों की 8वीं बैठक आज से शुरू हो रही है। 2 दिन की वर्चुअल बैठक भारत के ब्रिक्स के व्यापक दृष्टिकोण, लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के निर्माण को आगे बढ़ाती है। विधि और न्याय मंत्रालय ने कहा कि ये बैठक ब्रिक्स में आर्थिक विकास को समर्थन देने वाले स्थिर, निष्पक्ष और पूर्व अनुमानित ढांचे को बढ़ावा देने की साझा प्रतिबद्धता को उजागर करती है। ब्रिटेन में लेबर पार्टी के नव निर्वाचित नेता एंडी बर्नहम ने नए प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार संभाल लिया है। किंग चार्ल्स तृतीय ने ग्रेटर मैनचेस्टर के 56 वर्षीय पूर्व मेयर को कीर स्टार्मर के इस्तीफे के बाद नई सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया था। इससे पहले कीर स्टार्मर ने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के रूप में 10 डाउनिंग स्ट्रीट से अपना अंतिम भाषण दिया और फिर औपचारिक रूप से अपना इस्तीफा देने के लिए किंग चार्ल्स से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि वह एंडी बर्नहम को सत्ता सौंप रहे हैं और वे उन्हें पूरा समर्थन देंगे। जम्मू कश्मीर में मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने राजौरी और पुंछ जिले में बारिश की घटनाओं में मरने वालों के परिजनों को तत्काल सहायता के रूप में 6-6 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने अचानक आई बाढ़, भूस्खलन और बारिश की घटनाओं में हुई जानमान की हानि पर भी गहरा शोक व्यक्त करते हुए कहा कि सरकार इस मुश्किल के समय में लोगों के साथ है। मुख्यमंत्री ने प्रशासन को प्रभावित परिवारों की तत्काल राहत और पुनर्वास सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani. The news read by Anuja Kumar. Both houses of parliament witnessed multiple adjournments on the first day of the monsoon session today, following uproar by opposition parties over various issues including the NEET paper leak case. The Lok Sabha and the Rajya Sabha were later adjourned for the day. The Lok Sabha began with obituary references to 6 former members who passed away recently. The house also paid tributes to Father Emir of Qatar, Sheikh Hamad bin Khalifa As-Sani. However, questionnaire could not be taken up as opposition members from the Congress and the Samajwadi Party raised slogans over the NEET issue. Despite repeated appeals by Speaker Om Birla and later by Presiding Officer Dilip Saikia to maintain order and allow the House to function, the protests continued, leading to adjournment of the House for the day. The Rajya Sabha also witnessed repeated disruptions. The House was adjourned multiple times despite efforts by Chairman C.P. Radhakrishnan and Deputy Chairman Harivansh to conduct business. Later, the Upper House was also adjourned for the day. Earlier, speaking to media ahead of the commencement of the session this morning, Prime Minister Narendra Modi expressed hope that the monsoon session will be as productive as the monsoon itself, saying both play an important role in the nation's progress and the well-being of its people.
2: Monsoon ho ya monsoon sapra, agar dono proactive ho, to bahut hi productive hote hain. और दोनों को प्रवृत्ति होते हैं तो देश का कल्याण होता है, जीव मात्र का कल्याण होता है। साथियों, पिछले 1 महीने में देश ने अनेक सिद्धियां प्राप्त की है, चाहे राष्ट्रीय हो, अंतर्राष्ट्रीय हो और अब तो अंतरिक्ष भी हो, भारत के लिए गर्व के पल रहे हैं।
1: President Draupadi Murmu today called for deeper economic engagement between India and Moldova, saying the two countries have immense potential to expand cooperation in several high-growth sectors. The President was addressing the India-Moldova Business Forum in Chisinau today. Referring to the vision of Viksit Bharat 2047, President Murmu said India seeks partnerships based on trust and shared prosperity.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि चाहे मॉनसून हो या मॉनसून सत्र, दोनों के सक्रिय रहने पर वे अत्यंत उत्पादक सिद्ध होते हैं। संसद के मॉनसून सत्र से पूर्व संवाददाताओं से बातचीत में श्री मोदी ने कहा कि महज एक महीने में देश ने अनेक उपलब्धियां हासिल की हैं जो प्रत्येक नागरिक को गौरवान्वित करती हैं। श्री मोदी ने सभी राजनीतिक दलों से सकारात्मक और सार्थक चर्चा का आग्रह किया।

0: महीने में देश ने अनेक सिद्धियां प्राप्त की है और देशवासी गर्व से भर जाएं, इस प्रकार की सिद्धियों का सिलसिला चला है, चाहे राष्ट्रीय हो, अंतर्राष्ट्रीय हो और अब तो अंतरिक्ष भी हो, भारत के लिए गर्व के पल रहे हैं।
1: केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज नई दिल्ली में प्रदर्शनकारियों के प्रतिनिधियों से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने बताया कि बैठक में प्रतिनिधिमंडल के साथ विस्तार से चर्चा हुई। श्री नड्डा ने सभी प्रदर्शनकारियों से धरना समाप्त करने और स्थिति सामान्य करने में प्रशासन का सहयोग करने का आग्रह किया। इस बीच दिल्ली पुलिस ने सभी प्रदर्शनकारियों से शांति, संयम और सार्वजनिक व्यवस्था सुनिश्चित करने में पुलिस का सहयोग करने की अपील की है। वीडियो संदेश में दिल्ली पुलिस के अपर आयुक्त और जनसंपर्क अधिकारी राजीव रंजन ने जनता को किसी भी मंच के माध्यम से अफवाहों, गलत सूचनाओं पर विश्वास न करने और न ही उन्हें फैलाने की सलाह दी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज किशिनो में स्टेफान सेल मारिसिस फेंच स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की। उनके साथ भारत और मोल्दोवा के कई वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे। ये समारोह मोल्दोवा के राष्ट्रीय नायक को सम्मान देने के लिए आयोजित किया गया। ये दोनों देशों के बीच दोस्ती, साहस और एक दूसरे की आजादी का सम्मान करने की भावना को भी दर्शाता है। राष्ट्रपति ने आज भारत और मोल्दोवा के बीच आर्थिक सहयोग बढ़ाने पर बल देते हुए कहा कि दोनों देशों के बीच तेजी से बढ़ते क्षेत्रों में साथ काम करने की बड़ी संभावनाएं हैं। मोल्दोवा की राजधानी किशिनो में भारत मोल्दोवा बिजनेस फोरम को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि किसी भारतीय राष्ट्रपति की मोल्दोवा की पहली राजकीय यात्रा है।
2: मोल्दोवा की पहली राजकीय यात्रा है। ये हमारे द्विपक्षीय संबंधों में एक ऐतिहासिक उपलब्धि है और हमारे दोनों देशों के बीच बढ़ती मित्रता और आपसी विश्वास को दर्शाती है। भारत और मोल्दोवा तीन दशकों से मधुर और मैत्रीपूर्ण संबंध साझा करते आ रहे हैं। भौगोलिक रूप से दूर होने के बावजूद शांति, विकास और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के प्रति हमारे साझा प्रतिबद्धता के अनुरूप हमारी साझेदारी निरंतर बढ़ती रही है।
1: राष्ट्रपति मुर्मू और मोल्दोवा की राष्ट्रपति माया सांडू ने आज व्यापार, निवेश, कृषि, स्वास्थ्य, नवीकरणीय ऊर्जा, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और नवाचार सहित कई क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने पर सहमति जताई। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने विश्वास व्यक्त किया है कि पनामा के विदेश मंत्री हाइवियर एडुआर्डो मार्टिनेज आचा वास्केज की यात्रा से सभी क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंध और मजबूत होंगे। नई दिल्ली में पनामा के विदेश मंत्री के साथ बैठक में डॉ. जयशंकर ने कहा कि ये यात्रा दोनों देशों के बीच हाल में हुए उच्च स्तरीय आदान प्रदान की गति को और आगे बढ़ाती है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों की सरकारें और उनके नेता भारत पनामा साझेदारी को गहरा और व्यापक बनाने के लिए उत्सुक हैं। वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज नई दिल्ली में संयुक्त अरब अमीरात के अर्थव्यवस्था और पर्यटन मंत्री अब्दुल्ला बिन तौक अल मर्री और उनके प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठक की। श्री गोयल ने बताया कि बैठक में व्यापार, निवेश, पर्यटन और आवाजाही के क्षेत्र में द्विपक्षीय साझेदारी को और मजबूत करने पर चर्चा हुई। सर्वोच्च न्यायालय ने आज उत्तर प्रदेश सरकार से अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावे के कथित गबन की जांच के लिए विशेष जांच दल SIT गठित करने की संभावना के बारे में जानकारी देने को कहा। न्यायालय ने याचिकाकर्ताओं को इस मुद्दे का राजनीतिकरण न करने की चेतावनी दी। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जयमाल्या बागची और वी मोहना की पीठ ने उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता को इस बारे में निर्देश लेने को कहा कि क्या प्राथमिकी दर्ज होने से पहले पूरे मामले की जांच करने वाली SIT को स्थानीय पुलिस के बजाय इस मामले की जांच का जिम्मा सौंपा जा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय इस याचिका पर 27 जुलाई को फिर सुनवाई करेगा, जब उत्तर प्रदेश सरकार मामले में SIT जांच के बारे में जानकारी देगी। विधि और न्याय मंत्रालय ने अधिवक्ता संशोधन विधेयक 2026 का मसौदा हितधारकों और आम जनता के परामर्श के लिए जारी कर दिया है। ये मसौदा बार काउंसिल ऑफ इंडिया के परामर्श से तैयार किया गया है। इसे टिप्पणियां और सुझाव आमंत्रित करने के लिए बार काउंसिल की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध कराया गया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट डब्ल्यू

0: newsonair.gov.in और हमारे newsonair ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। ब्रिटेन में लेबर पार्टी के नवनिर्वाचित नेता एंडी बर्नहम ने नए प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार संभाल लिया है। किंग चार्ल्स तृतीय ने ग्रेटर मैनचेस्टर के 56 वर्षीय पूर्व मेयर को किर स्टार्मर के इस्तीफे के बाद नई सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया था। श्री एंडी बर्नहम ने कहा कि हम ब्रिटेन के लिए बड़े बदलाव लाएंगे।
1: हम ब्रिटेन के लिए पिछले 40 सालों में सबसे बड़े बदलाव लाएंगे, एक नया राजनीतिक और आर्थिक मॉडल बनाएंगे। 1980 के दशक में ब्रिटेन ने कुछ गलत कदम उठाए थे, देश के बड़े हिस्सों में उद्योग खत्म हो गए और वे अब तक उससे उबर नहीं पाए हैं, इसीलिए हम राजनीति को बदलेंगे।
0: इससे पहले किर स्टार्मर ने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के रूप में 10 डाउनिंग स्ट्रीट से अपना अंतिम भाषण दिया और फिर औपचारिक रूप से अपना इस्तीफा देने के लिए किंग चार्ल्स से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि वे एंडी बर्नहम को सत्ता सौंप रहे हैं और वे उन्हें पूरा समर्थन देंगे। जम्मू कश्मीर में बारिश से जुड़ी घटनाओं में आज जम्मू संभाग में 4 और लोगों की मौत हो गई। इसके साथ ही पिछले 2 दिन में मरने वालों की संख्या बढ़कर 16 हो गई है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: तेज बारिश के कारण पुंछ और रजौरी जिले में बचाव और राहत कार्य आज प्रभावित हुआ। कल आए विनाशकारी बाढ़ और भूस्खलन में 12 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि कई अन्य अब भी लापता हैं। प्रशासन ने संवेदनशील क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल, राज्य आपदा मोचन बल, जम्मू कश्मीर पुलिस और सेना के दल प्रभावित क्षेत्रों में तैनात हैं तथा संवेदनशील इलाकों में हाई अलर्ट पर हैं। पुंछ, रजौरी, रियासी और उधमपुर के प्रमुख मार्गों को यातायात के लिए खोल दिया गया है। मौसम विभाग ने 23 जुलाई तक राज्य में मूसलाधार बारिश की चेतावनी जारी की है। जम्मू से एन गुलशन रैना की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शशांक कुमार।
0: केंद्र शासित प्रदेश के कई जिलों में तेज बारिश, अचानक आई बाढ़ और भूस्खलन के बाद उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने स्थिति की समीक्षा की। वहीं मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने राजौरी और पुंछ जिलों में बारिश से हुई मौतों पर मृतकों के परिजनों को 6-6 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। उत्तराखंड में रुक रुक कर बारिश का सिलसिला जारी है। पहाड़ी इलाकों में बारिश और भूस्खलन के कारण कई राष्ट्रीय राजमार्गों, प्रमुख सड़कों और ग्रामीण संपर्क मार्गों पर यातायात प्रभावित हुआ है। इस बीच मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों में राज्य के कई जिलों में मूसलाधार वर्षा की संभावना व्यक्त की है।
3: तेज बारिश के चलते देहरादून मसूरी मुख्य मार्ग पानी वाले बैंड के पास क्षतिग्रस्त हो गया है। लोगों की सुरक्षा को देखते हुए प्रशासन ने इस मार्ग पर आवाजाही अगले आदेश तक पूरी तरह प्रतिबंधित कर दी है। आमजन से मार्ग के खुलने तक मसूरी आने जाने के लिए वैकल्पिक मार्ग का प्रयोग करने का अनुरोध किया गया है। वहीं गढ़वाल आयुक्त आनंद स्वरूप ने चारधाम यात्रा मार्गों के बंद होने की स्थिति में तीर्थयात्रियों को सुरक्षित स्थानों पर ठहराने और मार्ग पूरी तरह सुरक्षित होने के बाद ही यात्रा शुरू करने के संबंधित जिलाधिकारियों को निर्देश दिए हैं। तीर्थयात्रियों से अफवाह पर ध्यान न देने और प्रशासन की आधिकारिक सलाह मानने के लिए अपील की गई है। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, देहरादून।
0: हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा, मंडी और सिरमौर जिलों में मौसम विभाग द्वारा जारी रेड अलर्ट के मद्देनजर कल सभी शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे। चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी और सिरमौर जिलों में तेज बारिश की चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग ने दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, झारखंड, ओडिशा और उत्तर प्रदेश में अगले 2 दिन में तेज बारिश की संभावना व्यक्त की है। मध्य प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर क्षेत्र में भी अगले 2-3 दिन तक ऐसा ही मौसम रहेगा। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय कमजोर और वंचित वर्गों के सामाजिक और आर्थिक पुनर्वास के लिए स्माइल योजना लागू कर रहा है। इस योजना का उद्देश्य जरूरतमंद लोगों को सम्मानजनक जीवन जीने और स्थायी आजीविका के अवसर उपलब्ध कराना है। सरकार ने कहा है कि इस वर्ष जून तक लगभग 55 करोड़ 49 लाख उपयोगकर्ता यूपीआई से जुड़ चुके हैं। लोकसभा में एक लिखित उत्तर में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने बताया कि वित्त वर्ष 2025-26 में 24,162 करोड़ यूपीआई लेन देन में 314 लाख करोड़ रुपए का आदान प्रदान हुआ। यूनिफाइड डिजिटल इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन प्लस 2025-26 के आंकड़ों के अनुसार देश भर में स्कूलों में नामांकन बढ़कर लगभग 25 करोड़ हो गया है। लोकसभा में लिखित जवाब में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि प्राथमिक, प्रारंभिक, मध्य और माध्यमिक स्तर की शिक्षा में वर्ष 2025-26 में नामांकन अनुपात वर्ष 2024-25 की तुलना में बेहतर हुआ है।

उन्होंने कहा कि सभी स्तरों पर स्त्री पुरुष समानता सूचकांक एक या उससे अधिक है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग रात 9:30 फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में आज आयकर रिटर्न भरना, जागरूकता, सुविधा और समय से अनुपालन विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। सनदी लेखाकार और कर विशेषज्ञ शरद कोहली तथा बैंकिंग विशेषज्ञ अश्विनी राणा परिचर्चा में हिस्सा लेंगे। श्रोता स्टूडियो में उपस्थित विशेषज्ञों से विषय से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। पीवी सिंधु कल से शुरू होने वाले चाइना ओपन 2026 बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारतीय दल की अगुवाई करेंगी। महिला सिंगल्स में सिंधु के साथ देविका सिहाग और उन्नति हुड्डा शामिल हैं। पुरुष सिंगल्स में लक्ष्य सेन, आयुष शेट्टी और एच एस प्रणॉय टीम का हिस्सा हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद के मानसून सत्र के पहले दिन की शुरुआत हंगामे से हुई। दोनों सदनों की कार्यवाही विभिन्न मुद्दों को लेकर बार बार बाधित। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने नई दिल्ली में प्रदर्शनकारियों से बातचीत की, धरना समाप्त करने और स्थिति सामान्य करने की अपील की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत और मोल्दोवा के बीच मजबूत आर्थिक सहयोग तथा तेजी से बढ़ते क्षेत्रों में सहयोग का आह्वान किया। जम्मू संभाग में मूसलाधार वर्षा से 4 और लोगों की मौत, पिछले 2 दिन में मरने वालों की संख्या 16 हुई। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कई जिलों में बाढ़ की स्थिति का जायजा लिया। हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में कल तेज बारिश का रेड अलर्ट। और ब्रिटेन में लेबर पार्टी के एंटी बर्नहम ने नए प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार संभाला। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: आकाशवाणी एफएम गोल्ड खांटी सोना
1: मन की बात जनगणर कथा सकल निजे कथा कि लड़ाइर कहनी कि साफल्य आख्यन अब्यक्त ऐतिह्यर गाथा नतून भारतवर्षर आशा मासर शेष रविवार अपेक्षा थका मलय पर्वतर कोल थेके बिंध्याचल पादेश पर्त ब्रह्मपुत्र नदर तीर थेके हिमालय पर्वतमाला पर्त पौछे जाए माननीय प्रधानमंत्री मन कथा मन की बात। मन की बात अनुष्ठानटी शोना जाबे आकाशवाणी कोलकातार सब कटी प्रचार तरंग सह प्रसार भारतीर ओटीटी प्लैटफर्म वेवसे 26 जुलाई ठीक सकाल 11:00। माननीय प्रधानमंत्रीर मूल अनुष्ठानटी सम्प्रचारेर ठीक परेई मन की बात अनुष्ठाने प्रदत्त बेतार भाषणेर बांगला रूपान्तर शोना जाबे आकाशवाणी कोलकातार गीतांजलि संचयिता मैत्री एफएम रेनबो एफएम गोल्ड विविध भारती प्रचार तरंगे ओ डीटीएच बांगला परिसेवाय एवं पुनःसम्प्रचार शोना जाबे सेई दिन रात 8:00 आकाशवाणीर गीतांजलि संचयिता मैत्री एफएम रेनबो एफएम गोल्ड विविध भारती प्रचार तरंगे एवं डीटीएच बांगला परिसेवाय एछाड़ाओ आकाशवाणी ओ दूरदर्शनेर यूट्यूब चैनेले एवं प्रसार भारतीर न्यूज ऑन एआईआर एप सह प्रसार भारतीर ओटीटी प्लैटफर्म वेवसे सरासरि सम्प्रचार करा हबे लाइव स्ट्रीमिंग एर माध्यमे। आरो एकबार मने करिये दी मन की बात अनुष्ठानटी शोना जाबे 26 जुलाई ठीक सकाल 11:00।
2: गाने कथाए गोल्डेन समय आपनी सुनछेन 100.1 एफएम गोल्ड 100.1 एफएम गोल्ड एफएम गोल्ड।
3: कथाय आछे सत्य किन्तु कठिन हय जे कथाय मन भोले ना मन भेंगे जाए जे देखाय रंगीन चश्मार चोख खुले जाए बास्तवेर।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। संसद के मॉनसून सत्र के पहले दिन की शुरुआत हंगामे से हुई। आज विभिन्न मुद्दों सहित नीट परीक्षा पेपर लीक मामले पर विपक्ष के विरोध के बीच दोनों सदनों की कार्यवाही कई बार बाधित हुई। हंगामा जारी रहने पर कार्यवाही बार बार स्थगित किए जाने के बाद कल तक के लिए स्थगित कर दी गई। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: विपक्ष के विरोध के चलते लोकसभा की कार्यवाही 7 बार और राज्यसभा की कार्यवाही 6 बार स्थगित की गई। इस व्यवधान के कारण दोनों सदनों में प्रश्नकाल नहीं चल सका। वहीं विपक्ष के हंगामे के बीच लोकसभा में विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश संख्या संशोधन विधेयक 2026 पेश किया। इस विधेयक का उद्देश्य उच्चतम न्यायालय न्यायालय संख्या अधिनियम 1956 में संशोधन कर न्यायाधीशों की संख्या को मौजूदा 33 से बढ़ाकर 37 करना है। इसमें भारत के मुख्य न्यायाधीश शामिल नहीं है। वहीं राज्यसभा में जब सदन की कार्यवाही सुबह 11 बजे शुरू हुई तो 9 नवनिर्वाचित सदस्यों ने उच्च सदन के सदस्य के तौर पर शपथ ली। आनंद कुमार के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि चाहे मॉनसून हो या मॉनसून सत्र, दोनों के सक्रिय रहने पर वे अत्यंत उत्पादक सिद्ध हो सकते हैं। संसद के मॉनसून सत्र से पूर्व संवाददाताओं से बातचीत में श्री मोदी ने कहा कि महज 1 महीने में देश ने अनेक उपलब्धियां हासिल की हैं, जो प्रत्येक नागरिक को गौरवान्वित करती हैं। श्री मोदी ने सभी राजनीतिक दलों से सकारात्मक और सार्थक चर्चा का आग्रह किया।
2: मॉनसून हो या मॉनसून सत्र, अगर दोनों प्रोएक्टिव हो तो बहुत ही प्रोडक्टिव होते हैं, और दोनों को प्रोडक्टिव होते हैं तो देश का कल्याण होता है, जीव मात्र का कल्याण होता है। साथियों, पिछले 1 महीने में देश ने अनेक सिद्धियां प्राप्त की है, चाहे राष्ट्रीय हो, अंतर्राष्ट्रीय हो, और अब तो अंतरिक्ष भी हो, भारत के लिए गर्व के पल रहे हैं।
0: केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज नई दिल्ली में प्रदर्शनकारियों के प्रतिनिधियों से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने बताया कि बैठक में प्रतिनिधिमंडल के साथ विस्तार से चर्चा हुई। श्री नड्डा ने सभी प्रदर्शनकारियों से धरना समाप्त करने और स्थिति सामान्य करने में प्रशासन का सहयोग करने का आग्रह किया। इस बीच दिल्ली पुलिस ने सभी प्रदर्शनकारियों से शांति, संयम और सार्वजनिक व्यवस्था सुनिश्चित करने में पुलिस का सहयोग करने की अपील की है। वीडियो संदेश में दिल्ली पुलिस के अपर आयुक्त और जनसंपर्क अधिकारी राजीव रंजन ने जनता को किसी भी मंच के माध्यम से अफवाहों तथा गलत सूचनाओं पर विश्वास न करने की सलाह दी। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने विश्वास व्यक्त किया है कि पनामा के विदेश मंत्री हावियर एडुआर्डो मार्टिनेज आचा वास्केज की यात्रा से सभी क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंध और मजबूत होंगे। नई दिल्ली में पनामा के विदेश मंत्री के साथ बैठक में डॉ. जयशंकर ने कहा कि यह यात्रा दोनों देशों के बीच हाल में हुए उच्च स्तरीय आदान प्रदान की गति को और आगे बढ़ाती है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों की सरकारें और उनके नेता भारत पनामा साझेदारी को गहरा और व्यापक बनाने के लिए उत्सुक हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने आज केंद्र सरकार को निर्देश दिया है कि वह 2 सप्ताह के भीतर एक समिति का गठन करे जो देश भर के उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों और न्यायाधीशों को सेवानिवृत्ति के बाद दी जाने वाली सुविधाओं के लिए एक समान दिशा निर्देश तैयार करेगी। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने निर्देश दिया कि समिति के गठन के 3 महीने के भीतर केंद्र सरकार और सर्वोच्च न्यायालय दोनों को अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करें। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल को इस वर्ष के लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चुना गया है। उन्हें यह प्रतिष्ठित पुरस्कार लोकमान्य तिलक की 106वीं पुण्यतिथि के अवसर पर 1 अगस्त को पुणे में प्रदान किया जाएगा। लोकमान्य तिलक स्मारक ट्रस्ट के अध्यक्ष डॉ. रोहित तिलक ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसकी घोषणा की। मौसम विभाग ने दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, झारखंड, ओडिशा

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। संसद के मॉनसून सत्र से पहले दिन शुरुआत हंगामे से हुई। विभिन्न मुद्दों सहित नीट परीक्षा पेपर लीक मामले पर विपक्ष के विरोध के बीच दोनों सदनों की कार्यवाही कई बार स्थगित हुई। हंगामा जारी रहने पर कार्यवाही स्थगित की गई और ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: विपक्ष के विरोध के चलते लोकसभा की कार्यवाही 7 बार और राज्यसभा की कार्यवाही 6 बार स्थगित की गई। इस व्यवधान के कारण दोनों सदनों में प्रश्नकाल नहीं चल सका। वहीं विपक्ष के हंगामे के बीच लोकसभा में विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश संख्या संशोधन विधेयक 2026 पेश किया। इस विधेयक का उद्देश्य उच्चतम न्यायालय न्यायालय संख्या अधिनियम 1956 में संशोधन कर न्यायाधीशों की संख्या को मौजूदा 33 से बढ़ाकर 37 करना है। इसमें भारत के मुख्य न्यायाधीश शामिल नहीं है। वहीं राज्यसभा में जब सदन की कार्यवाही सुबह 11 बजे शुरू हुई तो 9 नवनिर्वाचित सदस्यों ने उच्च सदन के सदस्य के तौर पर शपथ ली। आनंद कुमार के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि चाहे मॉनसून हो या मॉनसून सत्र, दोनों के सक्रिय रहने पर वे अत्यंत उत्पादक सिद्ध होते हैं। संसद के मॉनसून सत्र से पूर्व संवाददाताओं से बातचीत में श्री मोदी ने कहा कि महज एक महीने में देश ने अनेक उपलब्धियां हासिल की हैं, जो प्रत्येक नागरिक को गौरवान्वित करती है। श्री मोदी ने सभी राजनीतिक दलों से सकारात्मक और सार्थक चर्चा का आग्रह किया। केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने नई दिल्ली में प्रदर्शनकारियों के प्रतिनिधियों से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने बताया कि बैठक में प्रतिनिधिमंडल के साथ विस्तार से चर्चा हुई। श्री नड्डा ने सभी प्रदर्शनकारियों से धरना समाप्त करने और स्थिति सामान्य करने में प्रशासन का सहयोग करने का आग्रह किया। इस बीच दिल्ली पुलिस ने सभी प्रदर्शनकारियों से शांति, संयम और सार्वजनिक व्यवस्था सुनिश्चित करने में पुलिस का सहयोग करने की अपील की है। वीडियो संदेश में दिल्ली पुलिस के अपर आयुक्त और जनसंपर्क अधिकारी राजीव रंजन ने जनता को किसी भी मंच के माध्यम से अफवाहों तथा गलत सूचनाओं पर विश्वास न करने की सलाह दी है। सर्वोच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश सरकार से अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावे के कथित गबन की जांच के लिए विशेष जांच दल SIT गठित करने की संभावना के बारे में जानकारी देने को कहा है। न्यायालय ने याचिकाकर्ताओं को इस मुद्दे का राजनीतिकरण न करने की चेतावनी दी। सर्वोच्च न्यायालय इस याचिका पर 27 जुलाई को फिर सुनवाई करेगा, जब उत्तर प्रदेश सरकार मामले में SIT जांच के बारे में जानकारी देगी। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कल नई दिल्ली में पनामा के विदेश मंत्री हावियर एडुआर्डो मार्टिनेज आचा वास्केस से मुलाकात की। बैठक के दौरान डॉक्टर जयशंकर ने दक्षिण अमेरिका और कैरेबियन क्षेत्र में पनामा के साथ भारत की भागीदारी को महत्वपूर्ण बताया। दोनों नेताओं ने व्यापार, समुद्री साझेदारी, स्वास्थ्य, कृषि, शिक्षा और डिजिटल सहयोग को बढ़ाने पर व्यापक चर्चा की। उन्होंने बहुपक्षीय मंचों पर भागीदारी के बारे में भी बात की। विश्व व्यापार संगठन WTO में भारत की 8वीं व्यापार नीति समीक्षा बैठक 21 और 23 जुलाई को आयोजित की जाएगी। भारत के आधिकारिक प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल करेंगे। समीक्षा के दौरान WTO के 40 से अधिक सदस्य देशों के अपने अपने वक्तव्य देने की संभावना है। भारतीय प्रतिनिधिमंडल विभिन्न मुद्दों पर अपना पक्ष रखेगा। सिक्किम के नामचे जिले में NHPC द्वारा निर्माणाधीन एक सुरंग में कम से कम 25 लोग फंस गए हैं। उन्हें बचाने में के प्रयास जारी हैं। नामची SSP ने बताया कि NDRF और स्थानीय एजेंसियां उन्हें बचाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। हालांकि गैस रिसाव के कारण फंसे हुए लोगों को अभी तक निकाला नहीं जा सका है। सुरंग ढहने के बाद गैस रिसाव की सूचना मिली थी। यह घटना मिमरंग पुलिस चौकी के अंतर्गत हुई। और खेलों में पीवी सिंधु आज से शुरू होने वाले चाइना ओपन 2026 बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारतीय दल की अगुवाई करेंगी। महिला सिंगल्स में सिंधु के साथ देविका सिहाग और उन्नति हुड्डा शामिल हैं। पुरुष सिंगल्स में लक्ष्य सेन, आयुष शेट्टी और HS प्रणॉय टीम का हिस्सा हैं। मौसम विभाग ने दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश में अगले 2 दिनों में तेज बारिश की संभावना व्यक्त की है। मध्य प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर क्षेत्र में भी अगले 2 दिनों तक ऐसी ही मौसम बनी रहेगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is